साथ साथ जपनीत, कहां भी साथ साथ देह का बिलम न करे उम्मीत। नह बारक नह जोब नह वृद्धि कश बंद, ओ बेरा नह बुझिया जो आए पर जम फंद। ज्ञानी त्यानी चतरपेख रहन नहीं ए ठाए, शाड़ शाड़ सगली गई मूर्त हां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग, नानक आए सफलते जाको प्रै सुहाग। सलोक कोखे शास्त्र वेद सब आन कहतो कोए, आजुग आदि हुण होवत नानके कै सोए। पौड़ी कग्गा कालो मना एह बिन हर दूसर नाहे, नह होवा नह होवना जत का तो ही समाहे। कूले तौ मन जवा वै सरना, नाम तत् कल मैं पुनः चरना। काल काल अनक पछतावै, बिन हर भगत कहां थित पावै। कोल महारस अमृते पिया, नानक हर गुर जां कौ दिया। सलोक घन काले सब दिवस सास, नह बढ़न कटन तिलसार। जीवन लोरे पर मोह, नानक तेउ गवार। पौड़ी गंगा ग्रासै काल तेह, जो सागत प्रभ कीन। अनक जोन जन्मै मरे आत्म राम न चीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए, कर कृपा जे आप देवाए। गणती गणी नहीं को छूटे, काची गागर सर पर फूटे। सो जीवत जह जीवत जपया, प्रगट पाए नानक ने छपया। सलोक चित चितवो चरण अरबिंद, ऊंद कवल बिग सांत। प्रगट पाए आपै गोबिंद, नानक संत मतात। पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा, तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा। चार कुंट दै दिस भ्रम आयो, पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ, सा संगमन निर्मल हुआ। चिंत बिसारी एक दृष्टेता, नानक ज्ञान अंजन जेने तरा। सलोक छाती शीतल मन सुखी, संत गोबिंद गुण गाए। ऐसी कृपा करो प्रभ, नानक दास दसाए। पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे, दास दासन के पानी हारे। शशा शार हो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। शार स्यान बहु चतराई, संतन की मन टेक टिकाई। शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई।

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं तेरे भवन प्रभ तारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पा ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना।

पर हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जां कै सदा बबेक। हे अपरंपर हर हरे, हैपी होवन हार। हे संतें कै सदा संग, निधाराय आधार। हे ठाकर हौं दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजै नाम दान, राखो ही है परोए। सलोक। गुरदेव माता गुरदेव पिता, गुरदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरदेव बंधप सहोदरा। गुरदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरदेव मंत निरुदरा। गुरदेव सांत सत बुद्ध मूर्त, गुरदेव पारस परस्परा। गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरदेव करता सब पाप हरता, गुरदेव पतत पवित्र करा। गुरदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरदेव मंत हर जप उदरा। गुरदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लगतरा। गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरदेव नानक हर नमस्कारा। एहो श्लोक आद अंत पढ़ना। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां। श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद गुर ए नमै, जुगाद गुर ए नमै, सतगुर ए नमै, श्री गुरुदेव ए नमै। अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ, कल कलेश तन माहे मिटावौ। सिमरौ जास विषम पर एकै, नाम जपत अगणत अनेकै। वेद पुराण सिमरत सुधाखर, कीने राम नाम एक अखर। किनका एक जिस जी बसावै, ताकी महिमा गनी ना आवै। कांखी एकै दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै, प्रभ कै सिमरन अंदर जागै। प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्ब निधान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जपता पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभ कै सिमरन दरगै मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सफल फला। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक तां कै लागौ पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सबके सुझै।
प्रब कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रब कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रब कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। प्रब जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरै से पर उपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कौ ना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहि समानी। प्रभ कै सिमरन निःचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुतमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाभयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंद ना परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आगावै। जेह मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तै पार पराही। अनक बिगन जाय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौं मैला मल कबो न धोवै, हर का नाम कोट पाप होवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाईऐ साध कै संग। जेह मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। जेह पैंडै महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा।
जहां पंथ तेरा को ना सिंहानू

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग।

हर का नाम जनकार उपरंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वड़ियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रकट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पीसर थीवै। अगन माहे होमत पुराण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्यौली कर्म करै बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ पी होमै मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहू ना बिखिया टरै। जल धोवै बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सना ही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए मैं शोरे, जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताक बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान, आपस कहो जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तन कड़ कड़ चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा।

जो ठाकर सा सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो पूल नहार नानक राख नहारिया पार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्तर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप्यो तारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए अंधकू मैं पतत बिकराल नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्स नाहे कश करे।

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई है ध्यावन जोग जे प्रसाद

रखै जेह प्रसाद करै पुन बहु दान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जेह प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभ को साह साह चितारी जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर उसदा अनूप जेह प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जेह प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जसक है जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेखे बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फले जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कहो जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जब जपै जब सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मति उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हू लया जित जित लावो तित लगे हरनाथ नानक इनके कछु ना हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत साध संग मर सगली खोत साध कै संग मिटै अवमान साध कै संग प्रगटै सुगयान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होतन बेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ महे सुमानी साध कै संग गोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग नकत हूं तावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग के सो नहीं बैर साध कै संग ना बींगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हौ ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बसता गोचर ल।

साधु कै संग अजरसा है, साध कै संग बसे थान उच्चे, साधु कै संग मैल पहुंचे, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है, साधु कै संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कश काल, दर्शन भेट तो होत निहाल, साध कै संग कलुख तहरै, साध कै संग नरक प्रहरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग ना मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा।

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्ब कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, ज्यो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नारक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगहेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का उसका आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सज जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक। और तारै जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान।
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸੋ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਪਰਤਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰਹਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਸ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ। ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ। ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਚੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ।

नानक हो वैष्णो परमगत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मनते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत कहो पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै, राम नाम आत्म मैं सोधै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन ना आवै। वेद पुराण

बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहवरना में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासंग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उतारै, पस प्रेत मुग्ध पाथर को उतारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। काहू जूत कते ना पाइए धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निगट निगट हर जान, सो दास दर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै, सगल संग आत्मयो दास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोउ कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखे तैसा तिन नाओ, आपे करन करामन जोग, प्रभ पावे सोई फुन होग, पसरियो आप होए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत ना पारा वार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट

कई कोट पय अवमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब कौ हिरै, कई कोट पर दुख ना करै, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश पर माहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प्यो पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत रसास्त, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर प्रसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरै सबहू ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया परपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवै मरै, कई कोट बौजोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट कालै थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगति लवलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिल्यो प्रभ बनास, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनका होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जूत कीनो विस्तार, कई बार पसरे पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने

ज्यों प्रभु राखै तिवहि रहै। गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मौन धारी लावै ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिध साधु मो ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमै परमिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभु भावै तिवै नचावै, ज्योत पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संगत हो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मान तन नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राजा मान, सो नरक पाती होवत समान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आप स्कौ कर्मवंत कहावै, जन्म मरे बह जोन परमावै, तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै, नानक यहां मुक्त आगे सुख पावै, धनवंता हुए कर गर्भावै, तृण समान का संग न जावै, बहु लश्कर मानखी ऊपर करे आस, पल पीतर ताका हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान, सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कौ कैसे गवै, आप कौ जो पला कहावै, तसे पलाई निकट न आवै, सर्व की रेण जाका मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए, तब इसको सुख नाही कोए, जब है जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै, अनक भोग बिखिया के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, वडभागी किसै प्राप्त होए, करण करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ कहां बिचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबहू कै संग, बूझै देखै करै बबेक, आपै एक आपै अनेक, मरै ना बिनसै आवै ना जाए, नानक सदी रहा समाए, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो अपन विस्थार, सब कछ उसका ओह करणहार, उसते पिन कहो किश होए,

संत के दोखी को उद्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा। संत के दोखी की जड़ किश ना है, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दोखी को अवर ना रखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दोखी ओ बिल लाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाप की ईंधन नहीं त्रापे, संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला, संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सद मिथ्या कहत, किरत निंद का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थया। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए, संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दोखी की पूजे न आसा, संत का दोखी उठ चले निराशा, संत के दोख ना तृष्टा कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कीर्तना मेटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उसत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास, सब कश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह बिचार, जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, वडभागी नानक जन से सलोक, तजो सियान पसुरजना सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानु की टेक बिरथी सब जानो, देवन को एक है भगवान, जिसके दिया रह अगाए, बहुरना तृष्णा लग आए, मारे राखे को आप, मानु कह किश नाही हाथ, तिसका हुक्म भू सुखोए, तिसका नाम रा कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, उसदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, सा संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, वड भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे बिचार, सेतन वंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछानै, एत उत कियो सोजी जानै, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपने आप सुजै, जिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत, आंदन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ही ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जसमन भूख, नानक तुसे ना लागे दुख, जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डोलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवको किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बुझिया, जब देखो तब सब किशमूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल, न कि जन्म न किश मरे, अपन चलता आप ही करे, आवन जावन दृष्टि अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप,
अनक जुगत रचथाप उथाप अविनाशी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मंड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगले उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुर का सबजा पै निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करै बड़भागे नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किश करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहि सुभाए होवै सो होए करणै हर पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा साव तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तस्महे समाए ओए सुख निदान उनहु बन आए आप सको आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान

दयालो भगत वचन सदा कृपालो अनाथ नाथ गोबिंद गोपालो सर्व कटा करत प्रतपालो आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुणी आर नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग वडे आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक पर।

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार हो कश ना दृटेता पाप उन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक सह व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म ता मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी ता बंद मोत कौ किस कौ गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डर। आपन चलते आप करने हार नानक ठाकर अगमय पार। अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। आपने आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै शरशिदर लगत कौ कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तै किसै भूख कवन त्रिपतावै। करण करावन करने हार नानक करते का नहि सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला।

आपया फुरतार है तो सगन अब सगन कहां विचार है। जह अपन ऊचे अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप। जय अशाला शेदा भेद।

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो, अपने कर्तव जान आप, अंतर जामी रहो ब्याप, प्रतपाल जियन बहु पात, जो जो रचियो सोत सहत आत, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक एक जानिया, जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए, सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरैतन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख पने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोय सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवा सलोक एक ओवंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो वंदना त्याए गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय
ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕਛ ਹੋਏ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮਿਓ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਨੇ ਬਹੁਬਿਧ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਪਤ ਉਧਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈਏ ਹਰਨੀਤ ਮਿਲ ਭਜੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੇ।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा कर नीत। राम रतन मंतन बसै तज काम क्रो लो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेश। आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत। राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत। नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोए। नानक संत निर्मल पए जिनमन वसिया सोए पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच। नरक सुर्ग ब्रह्म तो घणो सदा संगारै मीच। हरख सोग सहसा संसार हाँ हों करत बिहाए। जिन किए तिसे न जाननी चितवै अन के उपाए। आद ब्याद उपाद रस कबो न टूटै ताप। पार ब्रह्म पूर्ण धनी न बुझै प्रताप। मोह परम बुढ़त कणो महानरक मैं वास। कर कृपा प्रभ राख लिहो नानक तेरी आस। सलोक चतर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजिया अवमान। चार पदार्थ हिट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी। चतुर्थ चारे वेद सुन सो दियो तत विचार। सर्व खेम कल्याण निध राम नाम जप सार। नरक निवारै दुख हरै टूटै अनक कलेस। मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन परवेश। पाओ बिनसै अमृत रसै रंग रते निरंकार। दुख दर्द अपवित्रता नासै नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल। मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवाल। सलोक पंच विकार मन में बसे राचे माया संग। साध संग होए निर्मला नानक प्रभ कै रंग पौड़ी। पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो पर पंच। कुसम बास बहु रंग कणो सब मिथ्या बलबंच। नह जापै न बुझिए न कछ करत विचार। स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक। रचन हार न सिमरियो माना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त नारंच। नानक बिरले पाई जो ना रचै परपंच। सलोक खट शास्त्र उच्चो कह अंत ना पारा वार। भगत सोहै गुण गावते नानक प्रभ कै द्वार पौड़ी। खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ अनेक। उत्तम उच्च पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख। नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद। रसगी दे हर सो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान परम बिनसियो पाई सरन दयाल। चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तोटा हिराए सात संग लिव लाए। खाट खजाना गुण निधारे नानक नाम ते आए। सलोक संत मंडल हर जस कथ बोले सत सुभाए। नानक मन संतोखी है एक शिष्यो लिव लाए पौड़ी। सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार। संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार। आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय। दुख हरै पव जल तरै मन चंदिया फल पाए। आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान। अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण।
सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तस बले हारण हर हर नाम जपे। सलोक आठ पहर गुण गाइए तजिए अवर जंजाल जम कंकर जो है न सकई नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरुद्धर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान समय उच्च बसे ज्ञान हर हर भजन पूरे गुरसंग जप तरिय नानक नाम हर रंग। सलोक नारायण ने सिमरियो मोहयो स्वाद बिकार नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार। पौड़ी नौमी नवे शद्र अपवीत हर नाम न जपै करत विपरीत पारतरे रमै बकै साध निंद कर न सुनही हर जस बिंद हिरै पर दर्ब उदर कै ताई अगन न निवरै तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। सलोक दह जस खोजित मैं फिरयो जत देखौं तत सोए मन बस आवै नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने मन संतोख नाम जप लीने करनी सुनिए जस गोपाल नैनी पेखत साध दयाल रसना गुण गावै बेअंत मन मै चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाई नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। सलोक एको एक बखानी है बिरला जाने स्वाद गुण गोबिंद न जानिए नानक सब बिस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इनविद वर्त संपूर्ण भया तावत मन राखै कठाए मंत्र शुद्ध जपत हर नाए सब मै पूर्ण रहे पार ब्रह्म नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी पेटे साध कृपाल नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान हर की भगत करो तजमान हर अमृत पान करो साध संग मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग कोमल बाणी सब को संतोख है पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख है गुर पूरे ते एह निहचौ पाई है नानक राम रमत फिर जो न आई है। सलोक तीन गुणा मैं व्यापिया पूर्ण होत ना काम पतो धारण मन बसै नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन ना मन मैं आयो सुख सागर प्रभ निमख ना गायो हर सो का दे कर बाध्यो दीर्घ रोग माया आसा देओ दिने बेकार करत श्रम पायो नैनी नींद सुपन बरड़ायो हर बिसरत होवत एह हाल शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन सगल व्याप्त राम नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप सगल भवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रव्या प्रभ एक तरण्य आकाश समय प्रपेख जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तै बसै दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। सलोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोबिंद संत प्रसादी भै मिटे नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावसे आत्म सुखी पहे संतोख दिया गुरुदेव
मंतन शीतल शांत सहज लागा प्रभु की सेव टूटे।

देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिने अपने जोर सब आण निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टां के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई निचड़ै सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंध नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभु वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवै तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे है कोई ना लगै नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वज्जै कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मुकट न सके उसदा काला भया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस ना होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक ओ सब सो जी पाई हर दर किया बातां आख सुनाए, महला चौथा, हुंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लेंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे था ओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाय मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिलै तिस कुश्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठकिया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्तिया लोई तिसको खंड ब्रह्मांड।

चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया नरक कोर दुखू है ओथे पकड़ ओह टोया कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया ओन हलत पलत सब गवाया लहा मूल सब खोया ओह तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया हर वेख्या सुने नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया जैसा जैसा बीजै सो लुणे जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा काट संगोया जन नानक नाम ते आए तू जप हर हर नाम सुख होया महला चौथा वड भागिया सोहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राए अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए पौड़ी एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड़े खोत सब आत्म राम पछाणिया ता एक रविया एको ओत पोत एक देखिया एक मन्या एको सुनिया श्रवण सरोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत श्लोक महला चौथा सब रस्तिन के हृदय है जिन हर वसिया मन माहे हर दरगह ते मुख उजले तिन कौ सब देखन जाए जिन निरपो नाम ते आया तिन कौ पौ कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिन कौ तुर लिखिया आहे ते हर दरगह पहनाई है जिन हर वुठा मन माहे ओए आप तरे सब कुटुंब स्यों दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे जन नानक कौ हर मेल जन तिन वेख वेख हम जीवाहे महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत पए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए तन तन गुरु जिन ना मारा दिया आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छाए हर सतगुर मिलो दया कर जन नानक तो वह पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अगम है जिस अंदर हरि उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जां डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मन मुख हारिया श्लोक महला चौथा कर कृपा सतगुर मेलेओन मुख गुरमुख नाम ते आए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुर पूरा करी वसाए सी जिन अंदर नाम निधान है तिनका पौ सब गवाए सी जिन रखण कौ हर आप होए होर केती चख चख जाए सी जन नानक नाम ते आए तू हर हालत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुरसिखा कै मन भाम दी गुर सतगुर की वडियाई हर रख पै सतगुरु की नित चढ़ै सवाई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हार तिन सब आण निवाई जिन्नी डिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई हर दरगह ते मुख उजले बहु शोभा पाई जन नानक मंगै धूड़ तिन जो गुर के सिख मेरे पाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वडियाई सा लाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणत कुसी है, दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा ले ओन तिन्ना दरगे ले छाए। महला तीजा मनमुख अज्ञान, दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निरजास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां।

हर अंदरला पाप पंचानो उगा कर वेखा लिया, धर्म राए जम कंकरा नो आख छड़िया, एस तपे नो तिथे खड़ पायो जिथे महा महा हत्यारिया, फिर एस तपे दे मोहे कोई लगो नाही, एहो सतगुर है फिटकारिया, हर कै दर वर्तिया सो नानक आख सुनाया, सो बुझे जो दिये सवारिया, महला चौथा हर भगता हर आराध्या, हर की वड्याई हर कीर्तन भगत नित गाम दे, हर नाम सुखदाई हर भगता नो नित नामे दी वड्याई, बख्शिया नो नित चढ़ाए सवाई, हर भगता नो थिर करी बहालिया नो अपनी पैज रखाई, निंदका पासो हर लेखा मंगसी बहु दे सजाई, जेहा निंदक अपने जीए कमाम दे ते हो फल पाई, अंदर कमाना सर पर उगड़े पावे कोई बह धरती विच कमाई, जन नानक ते देख विकसिया हर की वड्याई, पौड़ी महला पंजवां भगत जना।

है। हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरी है, नानक प्रीत मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी है। श्लोक महला पंजवा, नानक आए से प्रवान है, जिन हर बुठा चित गाली अल्प लालिया कम न आवै मित। महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया, पूर्ण अगम विस्माद, नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तोहो न चली खसम नाल, लभ मोहे विगुते करतब करन भलेरिया, मद माया सुते फिर जोन पवाईया नु, जा मार्ग मुक्ते कीता पाए ने अपना, दुख सेती जुते नानक नाए विसारे है सब मंदिर उते। सलोक महला पंजवा, उठन दियां बहन दियां सवन दियां सुख सोए, नानक नाम सलाहे आए मन तन सीतल होए। महला पंजवा, लालच अटिया नित फरै स्वार्थ करे ना कोए, जिस गुर पेटै नानका तिस मन वसिया सोए। पौड़ी सबे वस्तु कौड़ियां, सच्चे नाओ मिठा साध आया तिन हर जना, चख साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसै उठा, एक निरंजन रव रहिया पाओ दोया कुठा। हर नानक मंगै जोड़ कर प्रभ देवै तुठा। सलोक महला पंजवा, जाचड़ी सासार जो जा चंदी हेकड़ो, गाली ब्याह विकार नानक तनी में हुनिया। महला पंजवा, नीह जे विद्दा मन पछाणु विरलो थियो, जो नहारा संत नानक पादर पदरो। पौड़ी सोई सेवो जियड़े दाता बख्शिंद, किलविक सब विनाश होन सिमरत गोविंद। हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत, माया स्वाद सब फिकिया हर मन पावंद। त्याए नानक परमेसर है जिन दित्ती जिंद। सलोक महला पंजवा, वत लगी

गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जाने आ, तब लोगे काहे दुख माने आ। हम अपते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई रहाओ। हम मंदे मंदे मन माही, सांझ पात कहू स्यो नाही। पत या पत ताकि नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पत हर परवान, सर्ब त्याग भज केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगर फिरत जाओ पाई है जोग, बनका मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ। मुंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेड़ ना गई आकाई। बिंद राख जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात इशनान कराही, ज्यों पै दादर पानी माही। जाओ पै राम राम रत नाही, ते सब धर्म राय कह जाही रहाओ। काया रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बवागर, साधु सुख पावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महा।

कहो कबीर ए कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई, नैना देखत एहो जग जाई। लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कष्ट तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोवा चंदन मर्दन अंगा, सोतन जले काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सो करी जै, तौ की जै जो अपन जी जै। मैं ना मरो मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जिया वनहारा रहाओ। आ देही परमल मैं कंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज पर है मतहारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म

भिखारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभ कृपा की जय हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले को चूंगै नित भेड़ राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पद ज्यों जर छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तब की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गाज शिव।

हरस्यों तोड़ बिख्या संग जोड़ी रहाओ, सुर नर दादे लागी आग, निकट नीर पस पीवस ना चाग, चेतत चेतत निकस्यो नीर, सो जल निर्मल कथत कबीर। गौड़ी कबीर जी, जेहे कुल पूतना ज्ञान बिचारी, विधवा कसना पई महतारी, जह नर राम भगत ने साधी, जन्मत कसना मोह अपराधी रहाओ। मुच मुच गर्भ गए कीन बचया, बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजया, कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना कैसे कुबज करूप। गौड़ी कबीर जी, जो जन लेहे खसम का नाओ, तिन कै सद बलिहारे जाओ, सो निर्मल निर्मल हर गुण गावै, सो पाई मेरे मन पावै रहाओ। जेह कट राम रया परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर, जात जुलाहा मत का तीर, सहज सहज गुण रवै कबीर। गौड़ी कबीर जी, गगन रसाल चुवै मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, ओवा को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाओ। सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अंदर जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनपव पाया। गौड़ी कबीर जी, मन का स्वभाव मने व्यापी, मने मार कवन से थापी, कवन सो मोन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई, कहो कबीर जो जाने पे ओ, मन मधुसूदन त्रिपवन दे ओ। गौड़ी कबीर जी, ओए जो

सूर चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत भाई सांकत।

कटै टूट न जाई, सा सापन होए जग कौ खाई। हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कै चाबक माराओं। कहत कबीर पले असवारा, बेदक तेवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारै खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया समाए रहाओ। काको जरै काहे होए हान, नटवट खेलै सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, ना मैं जोगते।

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग।

जेते जतन करते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म धर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहि बिचारे ओरे उन्मत मान हिरयो मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगाने काष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गहयो मन बौरा रे मायायो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे त्यों पसरियो उपासार नावन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव गौड़ी अग्न न दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर न आवे राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही ना जावे हमरा तन माधव गोबिंद तरणी तार एह सार तन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पए उदासी मन मकांजे बा नारायण परै न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कपके कर मुष्ट चनन की लुप्त ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो रहाओ ज्यो उद्यान कुसुम पर फुलत कहना ना कराओ लयो तैसे प्रमता नेक जोन मैं फिर काल हयो या तन जोबने अरसत दारा पेखन कहो जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चौदे ठाठ ठयो कह कबीर पै सागर तरन कहो मैं सदगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कश आहे ना मोरा तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ इस माटी मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी खिरमा बिन सजाए हंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जात पावै ता हुक्म नावै इस बेड़े को पार लंगावै गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर पज सारंग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नामी
ਜੋਨ ਛਾੜ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ, ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਬਿਸਰਾਇਓ, ਜੀਅਰਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਗਾਓ। ਰਹਾਓ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤਾ, ਤਉ ਜਠਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ, ਲਖ ਚੌ ਰਾਸੀ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ, ਅਬਕੇ ਛੁਟਕੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਇਓ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪਜ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਨੀ, ਆਪਤ ਦਿਸੈ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਸੁਰਗ ਬਾਸਨਾ ਬਾਂਛੀਐ, ਡਰੀਐ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਹੋਨਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੈ ਨਾ ਕੀ ਜੈ ਆਸ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਰਹਾਓ ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਬ ਲਗ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਨੀਐ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ। ਸੰਪੈ ਦੇਖਣਾ ਹਰਖੀਐ, ਬਿਪਤ ਦੇਖਣਾ ਰੋਏ, ਜਿਉਂ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਬਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਧ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਨਿਆ, ਸੰਤਨ ਹਿਰਦੈ ਮਝਾਰ, ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ, ਜਿਹ ਕਟ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰ। ਗੌੜੀ ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚ ਲੇ ਜਿਨ ਭਾਰ, ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ, ਤੈ ਸੋਇਓ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ ਰਹਾਓ, ਔਰ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਐ, ਜੋ ਆਪਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ, ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਦੁਖ ਕਰ ਰੋਵੈ ਬਲਾਏ। ਜਹ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹ ਰਚੀ, ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤ ਚੇਤਿਆ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਬੈਰਾਗ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕੰਮਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲਿਓ ਸਾਸਾ, ਉਰਨਾ ਪੀਜੈ ਭਗਨਾ ਖਿਸੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਬੇਗ ਮਿਲੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਰਹਾਓ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨੋ, ਹਰ ਕੀ ਪਤ ਕਰੀ ਜੈ, ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣੋ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ, ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ, ਮਾਝ ਬਨਾਰਸ ਗਾਉਂ ਰੇ। ਉਹ ਆਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨੋ, ਮੋਕੋ ਛੋਟ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਊ ਰੇ। ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਗੋ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ, ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਬਡ ਭਾਗੋ, ਰਹਾਓ। ਬਿੰਦਰਾ ਬਾਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ, ਕਿਸਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਰੇ। ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੁਹੀ ਸਾਰਿੰਗ ਧਾਰ, ਮੋਹੇ ਕਬੀਰਾ ਨਾਊ ਰੇ। ਗੌੜੀ ਬਾਰਵੀਂ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਰਵੀਂ, ਬਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ, ਕਿਆ ਬਨ ਮੱਦੇ ਬਾਸਾ, ਕਹਾਂ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇ।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एहो जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारवी मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सनमुख रंते डरप सती के साचे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई ऊपर।

साहेब रोस्तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यो फूल जई है नार, कह कबीर गुलाम कर का, जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं, प्रमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है, भाग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहता हो नंद को नंदनो, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ, संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जा कै माई ना बापोरे। गौड़ी निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन कौ खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी रहाओ, निंदा होए ता बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए, हृदय शुद्ध।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहोरे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसै कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर मैं रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। नौकर देख

माई मोहे अवर न जान्यो अनाना, शिव संकाद जास गुण गावे तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत गगन मंडल मैं ध्याना ना, बिखै रोग पै बंधन भागे मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ दूसर मने ना आना ना, चंदन बास भय मन बासन त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्या जस ठाकर तास प्रभु है थाना ना, तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी कबीर जियो की एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहां बोल तय अक्षर आवा, जह बोल तय मन न रहावा, बोल बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख न कोई, अल लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, बटक बीज में रव रहो, जाको तीन लोक विस्तार, अल लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग अशेद, तुरक तरीकत जानिया, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िया ज्ञान, ओवंकार याद मैं जाना, लेखियार मेटा ताहे ना माना, ओवंकार लख जो कोई, सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ न दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रहे, ता होए निखियाओ अखै पदल है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना, रह बेहंगम कतै ना जाई, अग गह गै गगन रहाई, कग्गा घट घट निवसै सोई, घट फूटे घट कवै ना होई, ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अव कट कत्तावा, गंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह, चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छछा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो उषाड़ के ना आसा, रे मानव मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जर पर जर जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लहै, चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, झगर किए झगर ही पावा, नन्या निकट जो घट रहो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढ आओ, नेरा पायो ताहे, टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देख या टल टल कतै ना जावा, रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर या समाई, जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे, टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

पांचों इंद्री निग्रह करी पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लख जाओ कोई दूर न परे फंक बिचार है ता फल फंक सब तन फार है बब्बा बिंद बिंद मिलावा बिंद बिंद न बिछरन पावा बंदा होए बंदगी गह बंदक होए बंद सुध लह पब्बा पेद पेद मिलावा आपो पान परोसो आवा जो बाहर सो पीतर जानिया पया पेद पुबत पहचानिया मम्मा मूल गहया मन मान मरमी होए सो मन को जाने मत कोई मन मिलता बिलमावे मगन पया ते सो सच पावे मम्मा मन स्यो काज है मन सादे सिद्ध होए मन ही मन स्यो कह कबीरा मनसा मिलिया ना कोए एहो मन शक्ति एहो मन सीओ एहो मन पंच तत् को जियो एहो मन ले जाओ उन मन रह तो तीन लोक की बात कह यैया जाओ जान तो दुर्मत हानो कर बस काया गाओ रण रूतो पाजे नहीं सूरो थारो नाओ रारा रस निरस कर जानिया होए निरस सो रस पहचानिया एहरा छाडे ओ रस आवा ओ रस पिया ए रस नहीं पावा लल्ला ऐसे ले मन लावे अंत ना जाए परम सच पावे आर जाओ तहा प्रेम लेवलावे तो अल लह लै चरण समावे ववा बार बार बिसन सुमार ना आवे हार बल बल जे बिसन तना जस गावे बिसन मिले सब ही सच पावे वाह वाह वाही जानिए वाह जाने एहो होए एहो आरे ओहो जब मिले तो मिलत ना जाने कोए ससा सोनी का कर सो दो घट परचा की बात न रो दो घट परचा जो उपजे पाओ पूर रया तैंतर भवन राओ खखा खोज पर जो कोई जो खोजे सो बहुर ना होई खोज बूझ जो करे बिचारा तो भव जल तरत न लावे बारा ससा सो सह सही सवार सोई सही संदेह निवार अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा तब एह त्री

है मन माना है तो सही लखे जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग ता कारण व्यापे बहु सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोगे कौ व्यवहार ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जा कह जी जैसी बुध होई कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थिती कबीर जी की। श्लोक पंद्रह थिती सात वार कह कबीर उरवार ना पार। साधक सिद्ध लखे जो पे ओ आपे करता आपे दे ओ। थिती अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोबिंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मलो। हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो विचार घट में खेल अकट अपार। काल कल्पना कदे ना खाए आदि पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग माया ब्रह्म में सब संग। ना उबड़े न करता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे

दसवीं दैद सहय आनंद छूट परम मिलै गोबिंद ज्योत स्वरूपी तात्यानूप अमल ना मलन शाह नहीं धूप। एकादशी एक दिस्तावै तो जोनी संकट बहुर न आवै शीतल निर्मल पया शरीरा दूर बतावो पाया नीरा। बारस बारह उगवै सूर अहनिस बाजे अनहद तूर देख्या तिहू लोक का पियो अचरज पया जीव ते सीओ। तेरस तेरा अगुंब खान अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम में बसै मुरार सासन तो कातरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुन्यो पूरा चंद आकाश पसरे कला सहज प्रगास आद अंत मद होए रहया थीर सुख सागर में रमै कबीर। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ। आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज मह वाए। सोमवार सस्य अमृत चरै चाखत बेख सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मन मत वारो पीवन हार। मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसै है राए। बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का बास। गुरमिल दो एक समतरै उर्द पंक लै सूदा करै बृहस्पत बिखिया दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वै नाहे। सुकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अनदिन आप आप स्यों लड़ै। सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै। थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वट्टी कट मैं जोए। बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास। जब लग कट मैं दूजी आन तौ तो लो मह न लाभै जान। रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग। राग गौड़ी चेती बाणी नाम देव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। देवा पाहन तारी अले राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन तेऊ मुक्त भये हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहां खैर सदा मेरे भाई रहाओ। कायम दायम सदा पातशाही, दोम ना सेम एक सोवाही। आबा दान सदा मसहूर, उहां गनी बसै मामूर। त्यों त्यों सैल करे ज्यों भावे, महरम महल ना को अटकावे। कह रविदास खलास चुमारा,

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण। संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बिबद बेकार। शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार। राव प्रगास रजनी जथा गत, जांत सब संसार। पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट। उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी, परम बंधन काट बेकार। सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार। अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरे परम फास।

तो आसा महला पहला जे दर मांगत पूक करे महली खसम सुने भावे तीर्क भावे तके एक वडाई दे जानो जोत ना पूछो जाति आगे जात ना हे रहाओ आप कराए आप करे आपो लामे चित धरे जा तू करन हार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप यो पाए आपे दे आपे दुरमत मने करे गुर प्रसाद वसे मन आए दुखा नेरा विच्चों जाए साज प्यारा आप करे अवरी को साज ना दे जे किसे दे वखाणे नानक आगे पूछना ले आसा महला पहला ताल मदीरे कटके काट दोलक दुनिया वाजे वाज नारद नाचे कलका पाओ जति सती कह रखे उपाओ नारक नाम विटों।

कहन कथन वारा नहीं आवै, क्या देखा सूझ बूझ ना पावै, बिन नावै मंत्र पित ना आवै। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमें माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राख अमृत चाख, सतगुर सेव अमृत शब्द भाख, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हिरदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

हर वार जिन पाया धन नारी, हर सिउ राती शब्द विचारी, आप तरै संगत कुल तारै, सतगुर सेव तत् विचारै, हमरी जात पत सच नाओ, कर्म धर्म संजम सत पाओ, नानक बख्से पूछना होए, दूजा मेटै एको सोए, आसा महला पहला, एक आवै एक जावै आई, एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठावर ना पावै, से कर्महीन हर नाम ना त्यावै, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत भौ जल, गुर सबदी हर पार लंघाई रहाओ, जिन कौ आप लय प्रमेल, तिन कौ काल न साकै पेल, गुरमुख निर्मल रहै प्यारे, ज्यो जल अंब ऊपर कमल निरारे, बुरा भला कहो किसनो कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लहिए, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठसठ मज्जन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागै, नानक हिरदै नाम वड्डे तुर भागै, आसा महला पहला, निम्न उपाय लगो।

दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई भीखक भीख्या खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टाहयो सारे धरे ध्यान। तुते

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेख तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहार ता कह जाओ, नानके करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावें जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जुगत नाही, कह नानक जीवा ले जिया, जय पावे तै राख तुही, आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुसपाती, हर नामा जा जाचो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ, पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चज्याचार रहाओ, बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम समाल, एथे उथे निभी नाल, विन्ना वै होर कर्म ना पाल, पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार, भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलकल लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े ने कीमत पाए, अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचा दरबार रहाओ, सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने साबास, सच्चे तख्त

क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व डाणी, नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण, आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली, उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है, बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है, तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे, फिर से मिलना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा, हर गुर कृपा ते नदर तरी, आप विचार मार मन देखिया, तुम साम इतना यवर कोई, जो तू राखै तिवि रहना, दुख सुख देवे करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त, त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है, संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता,

मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नवनिध पाई, रोवै पूत न कल्पै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जंपुर जाहे, गुर दीख्या ले जब तब कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए, आसा महला पहला। आप करे सच अलाख्या पार, हम पापी तू बख्शन हार, तेरा पाणा सब किश होवै, मन अठकीचै अंत विगोवै रहाओ। मनमुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाह किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई, सगली सौंदी तोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला, चौपदे विद्या विचारी, ता पर उपकारी, जा पंचरासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै, तौ जम कहां करे मोह स्यो वागै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी, दया दिगंबर।

एक ना परिया गुण कर पोवा मेरा सौ जग हो निष्परसोवा इं क्यों कंत प्यारी होवा सौ जग हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हर दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बन तन पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ हौ मैं खोए करे सिंगार तव कामन से ज रवे पतार तव नानक कंते मन पावे छोड़ वडाई अपने खसम समावे रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी ए

साहुरडै तन सच पिछाणिया सहज सुभाए अपना पिर जाणिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवै ता कामण कंतै मन भावै कहत नानक पै भाव का करे सिंगार सधी से जै रवै पुतार आसा महला पहला ना किसका पूत ना किसकी माई झूठे मोहे भरम भुलाई मेरे साहेब हाँ कीता तेरा

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तेरे मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेसर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे

अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं रहाओ शिव नगरी में आसन बैसाओ कल्पते आगी बादं सिंगी शब्द सदा तुन सोहै एनिस पूरे नादं पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान बेपूतं हर कीर्त रह रास हमारी गुरमुख पंथ अतीतं सगली ज्योत हमारी समया नाना वर्णा नेकं कहो नानक सुन पार्थर योगी पार ब्रह्म लिवेकं आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै कर करनी कस पाई है पाठी पवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआई है बाबा मन मत वारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया अहनस बनी प्रेम लिवलागी शब्दा नाहद गहया रहाओ पूरा सच प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नदर करे अमृत कावा पारी होवे कैमद शूशे पाओ तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे क्या सिफती रता सद बैरागी जुवे जन्म ना हारे कहो नानक सुन पार्थर योगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया

जे सकता सकते कौ मारे ता मन रोस ना होई रहाओ। सकता सिहो मारे पै वगे खसम सा पुरसाई रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती मुया सार ना काई। आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को ना उतराए वड्डा साध करे मन पाणे। खसमै नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाने मर मर जीवै तक्ष पाए नानक नाम वखाणे। राग आसा घर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर दर्शन पावै वडभाग गुर कै सब सच्चै बैराग। खड़ दर्शन वरतै वरतारा गुर का दर्शन अगमे अपारा। गुर कै दर्शन मुक्तगत होए साचा आवसै मन सोए रहाओ। गुर दर्शन उदरै संसारा जे को लाए पाओ प्यारा। पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार सतगुर सेवै परवार सधार। निगुरे कौ गतकाई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर कै शब्द सुख सां शरीर गुरमुख ता कौ लगे ना पीर। जम काल तिस नेड़ ना आवै नानक गुरमुख साज समावै आसा महला तीजा। शब्द

ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रह थिर नाम समाणै। जमन मरना है संसार, मन मुखा चेत।

इस जुग में निरपो हर नाम है, पाइये गुर विचार, बिन नावे जम के वस है, मन मुख अंध गवार, हर कै पाणे जन सेवा करे, बूझे सच सोई, हर कै पाणे सा लाही है, पाणे मन्या सुख होई, हर कै पाणे जन पदार्थ पाया, माति उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू, गुरमुख गत होई। आसा महला चौथा, घर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, तू करता सचियार मंडा साई, जो तौ पावे सोई थिसी, जो तू देहे सोई हौ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहै तिन्ना वर्तन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जान आए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवे

जन नानक गुरमुख प्रगट होए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर स्यों तड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हों हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ। जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे, थिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है। एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कलयुग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा भाव तड़े बह पावै, प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानका हर तड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवै। आसा महला चौथा, हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर लख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना, एको रव रहया कट अंतर, मुख बोलो गुरे अमृत बैना रहाओ। मैं मंतन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग, दूजे पाए पवै बिख माया, भागहीन नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पियाया, गुरपुरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सैना।

खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोवो हर सिंचव गुरमत जेहत जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल आसा महला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हौं तब लग सुमारो नाम मेरे मानो ऐसी भगत बने आई हौं हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुने उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुन गावे कब को नाचे पाप पसारे कब को हाथ फसारे हाथ पाप पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम सुमारे कब को लोगन को पति आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हृदय सत्य आवो ता जय जय करे सब कोए आसा महला चौथा सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कड़ चानन अज्ञाना दे राजाए हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे भाई हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जपो।

राग यासा कर अठवें के काफी महला चौथा। आया मरण तो राहो हम मैं रोई है, गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है। गुरपूरे साबास चलन जानिया, लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया। रहाओ पूर्व लिखे डेहे से आए माया, चलन अज के कल तुरों फुरमाया। बिरथा जन्म तिन्ना जिन्नी नाम विसारिया, जुए खेलन जग के हो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा, जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी बुझ सच समाया। जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर सच्चे सच्यार महल बुलाया। रहाओ अंतर नाम निदान गुरमुख पाई है, अंदर नाम ते आए हर गुण गाई है। अंतर वसजा नेक मनमुख नहीं पाई है, हम मैं गर्भ है गर्भ आप खुआई है। नानक आपे आप खुआई है, गुरमत मन पर गास सच्चा पाई है। राग आसावरी कर सोलवें के दो, महला चौथा सुधंग। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हाँ आंदिन हर नाम कीर्तन कराऊं। सतगुर मोको हर नाम बताया, हाँ हर बिन खिन पल रह ना सकाऊं। रहाओ हमरे श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हाँ हर बिन रह ना सकाऊं। हाँ एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हू प्रीत लाई दूजा पाओ रिद तार, किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद, नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी महला चौथा, माई मोरो प्रीतम राम बतावो री माई। हाँ हर बिन खिन पल रह ना सकाऊ, जैसे कर हल बेल रिजाई। रहाओ हमरा मन बैराग बरगत पायो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह ना सके, तैसे मोहे हर बिन रह ना जाई। राग शरण जगदीशर प्यारे, मोहे सरदा पूर हर गोसाई। जन नानक कै मन आनंद होत है, हर दर्शन निमख दिखाई। राग आसा कर दूजा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस पौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे। ऐसा देख बिमोहत होए, साधक सिद्ध सुरदे मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे। रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम वे आपे, एक संचय गृही तिन होए ना आपे। एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुर पावे। तप करते तपसी पूलाए, पंडित मोहे लोभ सवाए। त्रैगुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे दे कर हाथ। ज्ञानी की होए वर्ती दास, कर जोड़े सेवा करे अरदास। जो तू कह है सो कार कमावा, जन नानक गुरमुख नेड़ ना आवा। आसा महला पंजवा, ससू ते

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हूं मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगारीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा मैं।

जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावै सो उतरै पार। जन्म ना मरै ना आवै ना जाए, हर सेती ओरै समाए। आसा महला पंजवा, निज भगती सीलवंती नार। रूप अनूप पूरी आचार, जित ग्रह वसै सो ग्रह शोभावंता। गुरमुख पाई किनै विरलै जनता, सुकरणी कामन गुरमिल हम पाई। जज काज पर थाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता के साथ। तिचर कंत बो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया। गुरयाणी घर मैं ता सर्ब सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुगुण स्वरूप। इच्छ पूरे मनकंत स्वामी, सगल संतोखी देर जेठानी। सब परिवार है माहे श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ। धन सो ग्रेहो जित प्रगटी आए, जन नानक सुखे सुख विहाए। आसा महला पंजवा, मता करो सो पकन ना देई। सीर संयम कै निकट खलोई, वेस करे बहुरूप दिखावै। गृह बसन ना देई वख वख परमावै। घर की नायक घर वास ना देवै, जतन करो और जाए परे वै रहाओ। तुर की पेजी आई अमर, नौ खंड जीते सब थान थनंतर। तड़ तीर्थ ना छोड़ै जोग सन्यास, पढ़ था के सिमृत वेद अभ्यास। जह बैसों तह नाले बैसै, सगल भवन में सबल परवेसै। होछी शरण पया रहन ना पाई, कहो मीता हों कै पह जाई। सुन उपदेश सतगुर पै आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वसिया गुण गाए अनंता, प्र मिलियो नानक पै अचिंता। कर मेरा एह नायक हमारी, एह अमर हम गुर की ए दरबारी। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, प्रथमे मता जे पत्री चलावो। द्वितीय मता दोय मानख पहुंचावो। तृतीय मता किश करो उपाया, मैं सब कि छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सहजाया, दुश्मन दूत मोहे सुख पाया। रहाओ सतगुर मौका दियो आ उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश। जो किश करी सो तेरा तान, तू मेरी ओट तू है दीवान। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै तार, आन ना भिया तेरी समसर। तेरे सेवक को किसकी कान, सगत पूला फिर बेबान। तेरी वड्याई कही ना जाए, जह कह राख लह गल लाए। नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ राखी पैज वजी वाधाई। आसा महला पंजवा, परदेस चाग सब देखो आया। वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले यानी। देख रतने मन लपटानी, सावा पारी द्वारे आए। वखर काडो सौदा कराए रहाओ, साहे पठाया साहे पास। अमोल रतने अमोला रास, विष्ट सुभाई पाया मीत। सौदा मिलिया निश्चल चीत, पौ नहीं तस्कर पौ ना पानी। सहज विहाजी सहज लै जानी, सत कै खटिया दुख नहीं पाया। सही सलामत कर लै आया, मिलिया लाहा पै आनंद। तन सा पूरे बख्शिंद, एहो सौदा गुरमुख किने विर लै पाया। सहली खेप नानक लै आया। आसा महला पंजवा, गुण अवगन मेरो कछ ना बिचारो। नै देखियो रूप रंग सिंगारो, चज आचार किश बिद नहीं जानी। बहा पकर परे से जयानी, सुन बो सखी कंत हमारो। की अलो खसमाना, कर मस्तक धार राख्यो कर अपना। क्या जाने हो लोका जाना। रहाओ
सुहाग हमारो अब हुण सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो। आंगन मेरा सोभा चंद, निस्बासर प्रे संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगलिया भरण सोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दृष्ट पाए सगल निदान, दुष्ट दूकी चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने, नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने, कहो नानक जो परै सिंगारी, थिर सुहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा। दान दे कर पूजा करना, लैत देत उन मुकर परना, जित दर तुम है ब्राह्मण जाना, तित दर तू ही है पछताना, ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई, निरापराध चितवै बुरियाई रहाओ, अंतर लोभ फिरै हलकाए, निंदा करै सिर पार उठाए, माया मूठा चेतै नाही, भरमे पूला बहुती राही, बाहर बेख करै कनेरे, अंतर बिखिया उतरी घेरे, अवर उपदेसै आप ना बूझै, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजै, मूर्ख बामण प्रभु समाल, देखत सुनत तेरा है।

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर सबदी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब नहीं चल थाए जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दोख परे मेरे पछ है अब पकड़े निश्चय।

तीन सेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान। बिष्टा अस्त रक्त परे टेचाम, इस ऊपरले राख्यो गुमान। एक वस्त बुझे ता होवै पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर कौ कुरबान, जिसते पाइय हर पुरख सुजान। आसा महला पंजवा, एक तुके चौपदे। एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, माना रह कैसे मिलो प्यारे। एक पल दिनस मोको कवो ना बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मोको परे मिलावे रहाओ। चार पहर चौ जुगे समाने, रहन पई तब अंत ना जाने। पंच दूत मिल परो विछोड़ी, भ्रम भ्रम रोवे हाथ पिछोड़ी। जन नानक हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। आसा महला पंजवा, हर सेवा मैं परम निधान। हर सेवा मुख अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई। दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहां डराई रहाओ। हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माहे दीबान। हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन खट्टी हर मेरा सा हो। गुर कृपा ते एह मत आवै, जन नानक हर कै अंक समावै। आसा महला पंजवा, प्रभ होए कृपाल ता एहो मन लाई। सतगुर सेव सवै फल पाई, मन क्यों बैराग करेंगा। सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृत सरसद ही पर पूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर धारे, प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैण में हानि सह सुभाए। आसा महला पंजवा, कर कृपा हर प्रगटी आया। मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिए पाई। पाहे न जाले जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई रहाओ। तोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रया गाए। सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग वरसाना। तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लहना, जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाड़ परानी। जो जन्मै सो जानो मुआ, गोविंद भगत असर है थिया रहाओ। दिन

जो तू कर सोई प्रवान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरा कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवा, निकट जी कै सद ही संगा। कुदरत वरतै रूप रंगा, करै ना चुरै ना मन रोम नहारा। अवनासी अवगात्या गोचर, सदा सलामत खसम हमारा रहाओ। तेरे दास

वे मो ताजा वे प्रवाहो, नानक दास कहो गुरवाहो, आसा महला पंजवा, हर रोड़ होशै रसमाता, घर मैं वस्त बाहर उठ जाता, सुनी ना जाई सच अमृत काथा, रार करत झूठी लग गाथा, रहाओ वजो साहेब का से बिरानी, ऐसे गुनैशा देव प्राणी, तेस्यों लूक जो सद ही संगी, कामना आवै सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभ दीन दयाला, ज्यो पावै त्यों कर प्रतपाला, आसा महला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहां उहां उन संग काम, बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा, रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यों लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक कहो गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन, आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद भरे पुरतारिया, अपना कार्ज आप सवारिया, पूर समगरी पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही सोभ जा की, रहाओ नाम निधान।

साथ पूरा गुर पूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड़ियाई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो एहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरे हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ त्रिपत गावन साचे नाए अठ सठ मजन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंध कू मैं निकस्यो मेरे भाई रे रहाओ महा अगाह अग्न का सागर गुर बोहिथ तारे रतनागर दुत्तर अंध बिख मेह माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जाप ताप कश युगत न मोरी गुर नानक सरणागत तोरी आसा महला पंजवा ते पदे दो हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन मैं ले जाता हर रस के माते मन सदा आनंद आन रसा मैं व्यापै चिंद हर रस पीवै अल मस्त मतवारा आन रसा सब हो चेरे रहाओ हर रस की कीमत कही ना जाए हर रस साधु हर सुमाए लाख करोरी मिले ना के हे जिसे प्राप्त तिस ही दे हे नानक चाख पए बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कत छोड़ ना जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटकै दुरमत अपनी तारी होए नमाणी सेव कुमावै ता प्रीतम होवै मन प्यारी सुन सुंदर साधु बचन उधारी दुख भूख मिटै तेरो सहसा सुख पावै तू सुख मन नारी रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा आत्म सुध बिख त्यास निवारी दासन की होए दास दासरी ता पावै सो बाहर द्वारी इही आचार इही ब्योहारा आग्या मान भगत होए तुम्हारी जो एहो मंत्र कमावै नानक सो भौजल पार उतारी आसा महला पंजवा दो पदे पही प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै नाकाम मिल साध संगत पज के

सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। आसा महला पंजवा, तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही, तू साजन संगी पर मेरा काहे जी डराही। तुमरी ओढ़ तुम्हारी आसा, बैठत उठत सोबत जागत, विसर नाही तू सास गिरासा रहाओ। राख राख सरन प्रभ अपनी, अग्न सागर विकराला, नानक के सुखदाते सतगुरु, हम तुमरे बाल गोपाला। आसा महला पंजवा, हर जन लीने प्रभु छड़ाए, प्रीतम स्यो मेरो मन मान्या, ताप मुआ बिख खाए रहाओ। पाला ताऊ कछु ना व्यापै, राम नाम गुण गाए, डाकी कोचत कछु ना लागै, चरण कमल शरणाए। संत प्रसाद भय कृपाला, होए आप सहाय, गुण निदान नित गावै नानक, सहसा दुख मिटाए। आसा महला पंजवा, औख दिखायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिन सिया थाओ। ताप गया बचन गुरपूरे, अंध पया समटे विसूरे रहाओ। जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा महला पंजवा, बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मै क्यों बुझै बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओहना बाला बूढ़ा भाई। रहाओ नानक दास शरणाई, गुरप्रसाद पौ पार पराई। आसा महला पंजवा, सदा सदा आया तुम परगास, सास संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांस सदा सुख पावै, किल विख जाहे सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूर्ण कर्म, सतगुर पेटे पूर्ण पार ब्रह्म, दूजे करके चौतीस। आसा महला पंजवा, जाका हर स्वामी प्रबेली, पीड़ गई फिर नहीं दुहेली रहाओ। कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली, साध संग गुण गाया तोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मत मद सर, ए खेलत सब जुवै हारे, सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह भीतर वारे। जन्म मरण चुके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल, गुरपूरै लैखन मैं तारे रहाओ। सब की रेन होए रह मनुआ, सगले दिसै मीत प्यारे, संबदे रव्या मेरा ठाकर, दान दे सब जी सुमारे। एको एक आप एक एक, एक है सगला पा सारे, जप जप होए सगल साज जानो, एक नाम ते आए बहुत उधारे। गहर गंभीर बेअंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे, तुमरी कृपा ते गुण गावै नानक, त्याए त्याए प्रभ को नमस्कारे। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत या गोचर, एहो सब तेरा आकार, क्या हम जंत करै चतराई, जा सबके तुझै मजार। मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार, देह सुमत सदा गुण गावा, मेरे ठाकर अगम अपार रहाओ। जैसे जनन जठर मैं प्राणी, ओरे ता नाम आधार, आनंद करै सास सास सुमारै, ना पो है अगनार। पर तन पर दारा पर निंदा, इन स्यो प्रीत निवार, चरण कमल सेवी दे दयंतर, गुरपूरे कै आधार। गृह मंदिर महला जो दिसै, ना कोई संगार, जब

राज मिलक जोवन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्भ हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगे काम न आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई है रहाओ। महा विचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशाने, संत सज्जन सुनो समीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन महामोहनी मगन, प्रे प्रीत प्राण को त्यागे विरला। चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग वड़भागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई। तेरे जानो रस

साध संग रस पाया तृप्त गाए सही जन पूरे सुख निदान हर गाया। जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई से सह पले भगवंता। परम मोह त्रोह सब निकसे जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना कीता पावे इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जंपुर जाए पचावे। निंदक अहला जन्म गवाया पहुंचना साके काहू बाते, आगे ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का क्या ओ करे बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना राखे ओ किस पै करे पुकारा। निंदक की गत कत हू नाही खसमै एवे भाणा, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना। संतां टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रोड़ाई। आसा महला पंजवा बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साफ न मरे नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्रन को तरकन लागा तत् योग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचा आप निवारे पंच जनाले वसगत रखे मन में एक अंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावे रहाओ। प्रथमे मन प्रबोधय अपना पाछे अवर रिजावे, राम नाम जप हृदय जापे मुक्ते सगल सुनावे। कर संग साधु चरण पुखारे संत तूर तन लावे, मंतन अर्प तरे गुरु आगे सत पदार्थ पावे। जो जो सुने पेखे लाए सरदा ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे नानक गुरमुख जागे। आसा महला पंजवा आदम चंडाली पई ब्राह्मणी, सूदी ते श्रेष्ठ आई रे पाता लिया काशी सखनी, लहबर बूजी खाई रे। घर की बिलाई अवर सिखाई मूसा देख डराई रे, आज कह वस गुर की नोके हर कुकर तने लगाई रे रहाओ। बाई थूनिया छपरा

कोरी। रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो, संयम कौन छुट्योरी। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया, सगलो पवन लुट्योरी। दावा यगन बहुत तृण जाले, कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समर्थ वर्ण ना साका, ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ में पई नकारी, निर्मल वर्ण बने ओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसेओ, अचरज नाम सुनेओरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन, अपने चरण लगाई। प्रेम भक्त नानक सुख पाया, साधु संग समाई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर सतवा महला पंजवा। लाल चोलना तै तन सोहया, सुरजन पानी ता मन मोहया। कमन बनीरी तेरी लाली, कमन रंग तू पई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग, तुम कर लालन तुम कर भाग। तू सतवंती तू प्रधान, तू प्रीतम पानी तू ही सुरग्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल, कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल। सुन री सखी ए हमरी काल, प्रभ आप सिंगार सुवरण हार। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, दुख कनो जब होते दूर। अब मसलत मोय मिली हदूर, चुका निहोरा सखी सहेरी। परम गया गुर पिर संग मेरी। रहाओ निकट आन प्रे से तरी, कान कड़न ते छूट परी। मंदिर मेरा सब दो जारा, आनंद बिनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं पिर घर आया, थिर सुहाग नानक जन पाया। आसा महला पंजवा, साच नाम मेरा मन लागा। लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला। अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत पीहाला, सगल चरण की हो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया। नाम बिना माटी संगरलिया, कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया। से सुखलिया मन गर्बलिया। रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिनाले तरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया। माया शलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया। आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया। अमृत नाम तहां मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी। जाते पाइय पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंटा। बीच अमृत है पाई रे। रहाओ सिंचन हारे एक है माली, खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत यान जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई। अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन माया।

सो स्थान बतावो मिता, जाके हर हर कीर्तन नीता रहाओ। शास्त्र वेद पापुन विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार। प्रभ कृपा ते मन वसे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया। साध संग हर कीर्तन गाइए, एहो अस्थान गुरु ते पाइए। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बहर फन सुखा। हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै। सो नाम जपै जो जन तुद पावै। रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत टहै दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान, साध सब जा का निशान। गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई। जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गोसाई। तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई। रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई। मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला और अंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सो जन एत उत कत न डोले, कहो नानक जो राचे नाए, हर माला ता कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करे सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा, जौ सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम कहो कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोहे निर्गुण को लेहो उधारी रहाओ, मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओह करमा, जा कै मन वसिया हर नामा, आसा महला पंजवा, काम क्रोध अहंकार विगूते, हर सिमरन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागर भगत सिमरत हर राते रहाओ, मोह परम बहुजोन पवाया, अस्थिर भगत हर चरण ते आया, बंदने अंधकूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुजै हर नेरा, कहो नानक जो प्रभ शरणाई, इहां सुख आग्या गत पाई, आसा महला पंजवा, तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकर हम तेरे द्वारे, तू मेरा करता हों सेवक तेरा, शरण गही प्रभ गुनी गहेरा रहाओ, तू मेरा जीवन तू आधार, तुझे पेख बिकसै कौलार, तू मेरी गत पत तू प्रवान, तू समर्थ मैं तेरा तान, अनदिन जपो नाम गुणतास, नानक की प्रपै अरदास, आसा महला पंजवा, रोवन हारै झूठ कमाना, हासा सो करत बेगाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवै को हासा सपावन रहाओ, बाल व्यवस्था ते बरदाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहु गुण मैं वरतै संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ता का परवान, आसा महला पंजवा, सोए रही

तू चित आवै तेरी मया, सिमरत नाम सगल रोखया रहाओ। अनक दुख देवै अवरा कौ, पहुँच ना सकै जन तेरे कौ। दर्स तेरे की प्यास मन लागी, सहजानंद बसै बैरागी। नानक की अरदास सुनी जै, केवल नाम हृदय मैं दीजै। आसा महला पंजवा, मन तृप्तानो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल। संत प्रसाद भली बनी, जा कै गृह सब किश है पूर्ण। सो भेटिया निरपै धनी रहाओ। नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिट गई भूख महा बिकराल। ठाकुर अपने किन्नी दात, जल बुझी मन होई सांत। मिट गई पाल मन सहज समाना, नानक पाया नाम खजाना। आसा महला पंजवा, ठाकुर स्योजा की बनियाई। भोजन पूर्ण रहे अगाई, कछु ना थोरा हर भगतन कहो। खात खर्चत बिलशत देवन कौ रहाओ। जाका तनी अगम गुसाई, मानुख की कहो के चलाई। जा की सेवा दस अष्ट सिधाई।

दासन दासी की पनिहार, उनकी रण बसै जी नाल, माथै भागता पावो संग, मिलै स्वामी अपने रंग, जाप ताप देवो सब नेमा, कर्म धर्म

संगा लश्कर जोड़े किया संबाहा निक्षा फूकता हुए गयो सुवाहा ऊंचे मंदिर महल अर रानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत यार तिया मोहे पचे पच अंधा मुआ जिने उपाहा तिने बिनाहा रंग रसा जैसे सुपनाहा सोई मुक्ता तिस राजमाल नानक दास जिस खसम दयाल आसा महला पंजवा इन स्यो प्रीत करी कनेरी जो मिली है तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ नाही लाग छटो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह बाट काट करे बन बन जो है मन तन लागे हुए कै मीठी गुरप्रसाद में खोटी डीठी अगर उसके वड़े ठगाऊ छोड़े नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन पया आनंद पहु चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा माने एक नाम संतन आधार होए रहे सब की पगसार।

वर्तन जाकै केवल नाम, अनद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाकै एक समान, प्रभ अपने बिन अवर ना जानै। कोट कोट अग काट नहारा, दुख दूर करन जी के दातारा। सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली। ताका संग बांछै सुरदेव, अमोग दर्श सफल जा की सेव। कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजै गुणतास। आसा महला पंजवा, सगल सुख जप एक नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम। महापवित्र साधका संग, जिस पेड़त लागे प्रभ रंग। गुरप्रसाद ओ आनंद पावे, जिस सिमरत मन हो प्रगासा। ताकि गत में तो कहन ना जावे, रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा। वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा। महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाकै हर हर नाम। प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतित पुनीत ताकी पगरेन। जाको पेट्यो हर हर राय, ताकी गत में तो कथन ना जाए। आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ। मोहे गरीब को लिहोर लाए, नानक आए पै सरनाए। आसा महला पंजवा, आठ पहर उद किस नानी। सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़ै नाही। बहुर बहुर तिस लागै पाई, साल ग्राम हम

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सब ऊपर झूलै, ताँ का धूप सदा प्रफुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है साधा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिस ही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गिराम, कहो नानक गुर की नोदान। आसा महला पंजवा पंचपदा, जे पेंड लूटी पनिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रहियो जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लिखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ताँ कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवा दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक तां की परम गत होए, आसा कर सतवा महला पंजवा। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवा, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ। जा कै मस्तक लिखिया भाग, कहो नानक ता का थिर सोहाग। आसा महला पंजवा, मीठी आग्या पिर की लागी। सौकन कर की कंत त्यागी, प्रे सोहागन सिंगार करी। मन मेरे की तपत हरी, भलो भयो प्रे कहया मानिया। सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार, ओह अविनाशी अगमे अपार। ले पखा प्रे चलो पाए, पा गए पंच दूत लावे।

ईरानी जब मुख प्रीतम साजन लागा सूख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना माया मोहे सबो जग बादा हमें पचाए मनमुख मुख मूराखा गुरु नानक बहा पकड़।

संत तृप्तासे हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर, सोजन मरता नित नित चूर, जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे, महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरौ एक, गत पाई है गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा, नाम जपत मन तन सब हरिया, कल मल दोग सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर, मिटे उपद्रय मन ते बैर, गुर पूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वसगत आया, जिस मन वसिया हर का नाम, नानक ते सुपर कुर्बान, आसा महला पंजवा, गाव लेहे तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जा की सेवा सर्व सुख पावे, अवर काहू पह भौ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिय रहाओ। जा का दान निखूटे नाही, भली भांत सब सहि समाही, जा की बख्शना मेटै कोई, मनवा साई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण, प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण, ओट गही निरपौ पद पाई है, सास सास सो गुणित गई है, दूर ना होई कतहू जाई है, नजर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुरपास, नानक मंगे हर तन रास, आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सल का होवा सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल ते सतगुर को जाओ, गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख विनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अग्न बुझी

मान बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वड़े भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवां, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग। उदरै माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत बिगास। जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया तुर का रहाओ। दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावै, साचे साहेब कै मन भावै। वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु देवाया, पय अचिंत एक लिव लाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोलै गुर कै पाण। गुज्जी शनी नाही बात, गुर नानक तुठा कीनी दात। आसा महला पंजवां, गुर पूरे राख्या दे हाथ। प्रगट भया जन का प्रताप, गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई। जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक सेव। जियो पिंड जोबन राखे प्राण, कहो नानक गुर कौ कुर्बान। आसा घर अठ

जिस गुर पूरा भेट सी सो चलै रजाए। चतराई सियाण पा कितै कामना आई है, तुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवां सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सद कुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना। रहाओ पागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा गुर बिबेक सतसार, ओह आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवां साई अलख्या पार पोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाँ वन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंध घणा मन तन जापने। रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेख सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

मन तन होए निहाल तुम संग भेटिया, सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मिटिया रहाओ। जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिन खे, जिन मन उठा आप पूरे भगत से। जिसनो मन्ने आप सोई मानिए, प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए। दिन सरैण आराध संभाले साह साह, नानक की लोचा पूर सचे पातशाह। आसा महला पंजवा पूर रया सर्व ठाए, हमारा खसम सोए एक साहेब सिर छत दूजा नाहे कोए। ज्यों पावै त्यों राख राखण हारिया, तुझ बिन अवर ना कोए नदर निहारिया रहाओ। प्रतपाले प्रव आप कड़कड़ सारी है, जिस मन उठा आप तिसना विसारी है। जो किश करे सो आप अपन भाणिया, भगता का सहाई जुग जुग जाणिया। जप जप हर का नाम कदे ना झूरी है, नानक दर्स प्यास लोचा पूरी है। आसा महला पंजवा क्या सोवै नाम विसार, गाफल गहलिया किती इत दरियाए वंजन महिंदिया। बोहे थड़ा हर चरण मन चढ़ लंगी है, आठ पहर गुण गाए साधु संगी है रहाओ। भोगे भोग अनेक विणना मैं सुनिया, हर की भगत बिना मर मर रुनिया। कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मलना, बिन सिमरन तन शार सर पर चलना। महा बिखम संसार विरले पेखिया, छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया। आसा महला पंजवा कोई न किसी संग काहे गरबी है, एक नाम आधार पौजल दरबी है। मैं गरीब सच टेक तू, मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन धीरे रहाओ। राज माल जंजाल काज ना कित गनो, हर कीर्तन आधार निहचल एहो तनो। जेते माया रंग तेत पछावया, सुख का नाम निदान गुरमुख गावया। सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे, आस भरोसा खसम का नानक के जी अरे। आसा महला पंजवा जे सिमरत दुख जाए सह सुख पाई है, रैन दिनस कर जोड़ हर हर त्याई है। नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए, सर्व रहया भरपूर सच्चा सच सोए रहाओ। अंतर बाहर संग सहाई ज्ञान जोग, तिसे अराध मना विनाशै सगल रोग। राखन हारिया पार राखै अगन माहे, शीतल हर हर नाम सिमरत तप्त जाए। सूख सहज आनंद घना नानक जन तूरा, कार्ज सगले सिद्ध पए भेटिया गुरपूरा। आसा महला पंजवा गोबिंद गुणी निधान गुरमुख जानिए, होए कृपाल दयाल हर रंग माणिए। आवो संत मिला हर कथा कहानियां, अंदर सिमरो नाम तजलाज लुकानियां रहाओ। जप जप जीवा नाम होवे अनद कणा, मिथ्या मोह संसार झूठा विणसना। चरण कमल संग ने हो किने विरले लाया, तन सुहावा मुख जिन हर त्याया। जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई, नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवा आवहो मीत एकत्र होए, रस कस सब पुंच है। अमृत नाम हर हर जप है, मिल पापा मुंच है। तत विचारो संत जनो,
ਤਾਂ ਤੇ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਖੀਨ ਭਏ ਸਭ ਤਸਕਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਾਗੈ ਰਹਾਉ ਬੁੱਧ ਗਰੀਬੀ ਖਰਚ ਲੈ ਹੋ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾ ਰਹੋ ਸਾਚਾ ਹਟ ਪੂਰਾ।

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वण जारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सतगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हों चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहेब की मनिया, नाम जिसे कह उजली तिस दासी गनिया रहाओ। वे प्रवाहो आनंद में नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकर सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ। परता कह सो मानिए एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिय एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिछायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तो पेटे हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तऊ लो जो मन के परमा, प्रम काटे गुरे अपने पाए विश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे रहाओ। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लाग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ रहाओ। सगन अप सगन तिस कौ लग है जिस जीत ना आवै,
तिस जम नेड़ न आवई जो हर प्रभु पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगै पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक, दूसर कह पह जावो। हाउ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकर, कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो, ताकि शरण सतपुरख की सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर, काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी। संग चलन कौ तोसा दीना, गोविंद नाम के व्यवहारी। अवर बिसारी बिसारी ना

तुम बसता संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ। मेरी मेरी कर तो दिल रहन बिहावे पलखन छीजे अरजादे। जैसे मिठे साध लुबाए झूठ तन दुर्गा दे। काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे। दीप वारी पुरख बिदाता बहुर बहुर जन्मा दे। जो भयो किरपाल दीन दुख भंजन तो गुरमिल सब सुख ला दे। कहो नानक दरैन त्यावो मार काढ़ी सगलियो पा दे। इओ जपियो पाई पुरख विधाते भयो किरपाल दीन दुख भंजन जन्म मरण दुख लाथे रहाओ। दूजा आसा महला पंजवां निमुख काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावै करी मोहत रंग माणै फिर बहुर बहुर पछतावै। अंधे चेत हर हर राया तेरा सो दिन नेड़ै आया रहाओ। पलक दृष्ट देख भूलो आग नीम को तूमर जैसा संग बिसियर स्यों है रे तैसे ही एहो पर ग्रहो। बैरी कारण पाप करता बस्त रही अमाना छोड़ जाए तिन ही स्यों संगी साजन स्यों बैराना। सगल संसार एह बिद व्याप्यो सो उबरियो जिस गुर पूरा। कहो नानक भव सागर तरियो पए पुनीत शरीरा आसा।

गोविंद गावो आन दिनो प्रभ त्यावो भ्रम पीत जीत मिटावो निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया जप राम राम राम मन संतना कै चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतत पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवा हरख सोग बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ खिनहू पै निरपै खिनहू खिनहू उठतायो खिनहू रस भोगन खिनहू खिनहू तजायो खिनहू जोग ताबो पूजा खिनहू परमायो खिनहू कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो राग आसा महला पंजवा कर सतारवा आसावरी एक ओंकार सतगुर प्रसाद गोबिंद गोबिंद कर हां हर हर मन प्यार हां गुर कया सोचित धर हां अनस्यो तोर।

तौ चूकी सगल कान लैनो जिस मथान हा पै पाव को पार प्राण हा निज कर तिस थान हा हर रस रसै मान हा लाथी तिस पुखान हा नानक सह समायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुनीहा जपिय सह तुनिहा साधु रसन पनीहा शूटन बिद सुनिहा पाइये वडपुनी मेरे मना रहाओ खोजे जन मुनिहा सर्व का प्रभ तनिहा दुलभ कल दुनिहा दुख बिनासनी हा प्रपूर्ण आसनी मेरे मना मन सो सेविय हां अलख अपेविय हां ता स्यो प्रीत कर हां बिनस ना जाए मर हां गुरते जाने हां नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आग्या सत सहो हां मने निधान लहो हां सुख समाइये मेरे मना रहाओ जीवत जो मरे हां दुत्तर सो तरे हां सब की रेन होए हां निरपो कहो सोए हां मिटे अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सबको तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रपाया मेरे मना आसावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइये हां परम पद पाइये हां वा रस जो बिदे हां ताको सगर सिद्धे हां अन दिन जागया हां नानक वट भागया मेरे मना रहाओ संत भगत होइए हां दुरमत खोइए हां दस रेन होए हां व्यापै दुख ना कोए हां भगतां शरण पर हां जन्म ना कदे मर हां अस्त्र से भय हां हर हर जिन जप लए मेरे मना साजन मीत तू हां नाम दृढ़ाए मूह हां तिस बिन नाहे कोए हां मने अराध सोए हां निमख ना विसरे हां तिस बिन क्यों सरे हां गुर को कुर्बान जाओ हां नानक जपे नाओ मेरे मना आसावरी महला पंजवा कारण करन तू हां अवर न सुजे मूहा करे सो होइए हां सह सुख सोइए हां धीरज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ साधु संग में हां पूर्ण संज में हां जब ते छुटे आप हां तब ते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पत रख बनवारिया मेरे मना एहो सुख जानिए हां हर करे सो मानिया हां मंदा नाहे कोए हां संत की रेन होए हां आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहे कोए हां तिसका प्रभु सोए हां अंतरगत बुझे हां सबके सब के तिस सुजे हां पतत उधार ले हो हां नानक अरदास एहो मेरे मना आसावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया हां सुनत संदेसिया हां रहाओ जां स्यो रच रहे हां सब को तज गए हां सुपना ज्यों पए हां हर नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन्मे मर भगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल होए हां नानक भगत।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन सच पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले ते जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता। मेरा प्रभ लाए ता को लागे हम मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखिया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मनमुख मैला शब्द ना पछाण। गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। किल विख दो काटे हर नाम परगास कर विचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम अनुराता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मोहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोजल है घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मल अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बगसे सदगुर मिले काल कंटक मारे सच पेले। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा साक्त लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिपवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपतापै गुरमुख चीने हर प्रभ आपै। मन बैरागी हो मैं त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखै। दर कर महली हर पत राखै एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम। मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास एक तथा किए। गुरमुख राग स्वाद्यन त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे। अनहद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई। अह निसो हर जस गुर प्रसाद घट घट सो प्रभ आ जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला ज्यो भावे त्यो रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देखै विण गुर शब्द जन्म के लेखै देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भरपुर तार रहे मन माही तुम संसार अवर को नाही जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि ध्यान छूटै गुरमुखार गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग। आसा महला पहला एक तुगी गुर सेवे सो ठाकर जाने दुख मिटे सत शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पुत कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान। हों मैं डन सह राजा मंगे दान। बंधन सौदा अण विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी। बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद हंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर। से सरकाती मुनियां, गल विच आवै धूड़। महला अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया। कर कर देखै वेस रहाओ। जदों सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास। ही डोली चढ़ आईयां, दंद खंड कीते रास। उपरो पानी वारी है, चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया। गरी शुहारे खांदियां, मान से जड़िया। तिन गल सिलका पाईया, टुटन मोसरिया। तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए। जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए। अगों दे जे चेती है, ता कायत मिले सजाए। साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमा सह चाहे। बाप रवानी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए। इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए। चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड्डे नाए। राम न कबहू चेते, हुण कहण न मिले खुदाए। एक घर आवै अपने, एक मिल मिल पुछे सुख। एक ना एहो लिखिया, बैबै रोवै दुख। जो तिस पावै सो थीऐ, नानक क्या मानुख। आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े। कहां पेरी सहनाई, कहां सो तेग बंद गाढ़ेरड़। कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मोबंके। ऐथे दिसै नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई। एक कड़ी मैं थापो थापे, जर वंड देवै पाई रहाओ। कहां सो करदार मंड मैला, कहां सो बंकसराई। कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान तंबोली हरमा, होइया शाही माई। इस जर कारण कणी विगुती, इन जर कणी खुवाई। पापा बाजो होवै नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनो आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई। कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया। थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किनना परचा लाया। मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस चढ़ाई। जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिन्ना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी। एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वस मसाणी। जिनके बंके करी ना आया, तिनक्यो रैण विहानी। आपे करे कराए करता, किसनो आख सुनाई है। दुख सुख तेरा पाना होवै, किसथे जाई रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाई है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा काफी महला पहला। कर अठवां अष्टपदिया, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। कूड़ कमावे आदमी, बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ। नीत नीत कर बांधी है, जे रहना होई। पिंड पवै जियो चल सी, जे जाने कोई। ओही ओही क्या करो, है होसी सोई। तुम रोवोगे ओसनो, तुम कहो कौन रोई। धंधा पिटो पाई हो, तुम कूड़ कमावो। ओह ना सुनई कतही, तुम लोग सुनावो। जिसते सुता नानका, जागा ए सोई। जे कर बुझे अपना, तानी दना होई।
ਜੇ ਚਲਦਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਕੇ ਸੰਪੈ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤਨ ਸੰਚੋ ਦੇਖ ਕੇ ਬੂਝੋ ਵਿਚਾਰੇ ਵਣਜ ਕਰੋ ਮਕਸੂਦ ਲੈ ਹੋ ਮਤ ਪਛੋ ਤਾਵੋ ਔਗੁਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਰਹੋ ਐਸੇ ਤਤ ਪਰਾਵੋ ਧਰਮ ਭੂਮ ਸਤ ਬੀਜ ਕਰ ਵੈਸੀ ਕਿਰਸ ਕਮਾਵੋ ਤਾਵਾਂ ਪਾਰੀ ਜਾਣੀਓ ਲਾਹ ਲੈ ਜਾਵੋ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ਸੁਣੇ ਨਾਮ ਨਾਮੇ ਵਿਵਹਾਰਾ ਜਿਉ ਲਾਹਾ ਤੋਟਾ ਤਿਵੈ ਵਾੜ ਚਲਦੀ ਆਈ ਜੋਤਿ ਸਪਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਟੁੰਡੀਆਂ ਕੋ ਨਿਮੀ ਮੈਂਡਾ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸਾਹਿਬਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੈਂਡਾ ਦਰ ਬੀਬਾ ਮੈਂ ਨਿਮ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੀ ਸਲਾਮ ਹੇਕੋ ਮੈਂਡਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਨਾਮ ਰਹਾਓ ਸਿੱਧਾ ਸੇਵਨ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਮੰਗੈ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸਾਚੇ ਗੁਰਬੁੱਧ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਕਾਪੜੀ ਕਿਆ ਭਵੈ ਦਸੰਤਰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਚੀ ਨਹੀਂ ਤਤ ਸਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪੰਡਿਤ ਪਾਂਦੇ ਜੋ ਇਸੀ ਨਿਤ ਪੜੈ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਤਰ ਵਸ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਘੜ ਬ੍ਰਹਮ ਲੁਕਾਣਾ ਇੱਕ ਤਪ ਸੀ ਬਨ ਮੈਂ ਤਪ ਕਰੈ ਨਿਤ ਤੀਰਥ ਵਾਸਾ ਆਪ ਨਾ ਚੀਨੈ ਤਾਮਸੀ ਕਾਹੇ ਪਏ ਉਦਾਸਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖ ਦੇ ਸੇ ਜਤੀ ਕਹਾਵੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੁੱਟ ਹੀ ਭ੍ਰਮ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਇੱਕ ਗਿਰਹੀ ਸੇਵਕ ਸਾਧਕਾ ਗੁਰਮਤੀ ਲਾਗੇ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹਰ ਭਗਤ ਸੋ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਤੇ ਦਰ ਕਰ ਜਾਣੀਐ ਸੋ ਜਾਏ ਸਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸਾਚੇ ਮਨਮਾਨੈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸਮਾਏ ਲੇ ਭਉ ਜਲ ਸਜ ਧਰਣਾ ਆ ਜੁਗਾ ਦਿਆਲ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ਤੂੰ ਦਾਤੋ ਹਮ ਜਾਚਕਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੰਦਰ ਪੀਜੈ ਰਹਾਓ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੋਡੀਐ ਤੋ ਸਾਚ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥ ਜਾਣੈ ਇਹੋ ਮਨ ਰਾਜਾ ਲੋਭੀਆ ਲੁਭਤੋ ਲੋਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਭ ਨਿਵਾਰੀਐ ਹਰਸਿਉ ਬਣਿਆਈ ਕੱਲਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀਐ ਕਿਉ ਲਾਹਾ ਪਾਵੈ ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚ ਨਾ ਪੀਜਈ ਕੂੜ ਕੂੜ ਗੜਾਵੈ ਲਾਲਚ ਛੋਡੋ ਅੰਧੇ ਹੋ ਲਾਲਚ ਦੁਖ ਭਾਰੀ ਸਾਚੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖਮਾਰੀ ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਕੁਵਾਟੜੀ ਮੂਸੋ ਗੇ ਭਾਈ ਅਹਿਨਸ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਮਨਮੁਖ ਪੱਥਰ ਸੈਲ ਹੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਫੀਕਾ ਜਲ ਮੈਂ ਕੇਤਾ ਰਾਖੀਐ ਅਬ ਅੰਤਰ ਸੂਕਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੱਲੇ ਚਲਣ ਹਾਰ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ਤੰਦ ਪਿਟੇ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਆ ਭਵੀ ਹੈ ਕਿਆ ਢੂੰਡੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਵਿਸਰਜੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਆਇਆ ਰਹਾਓ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤਲਾਏ ਬਹੁ ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਮੋਇਆ ਕਹੋ ਕਿਆ ਰੋਵੋ ਰੋਏ ਨਾ ਜਾਣ ਹੂੰ ਰੋਵੋ ਸੱਚ ਸਲਾਏ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਹੂੰ ਹੁਕਮੀ ਵਜੋ ਲਿਖਾਏ ਆਇਆ ਜਾਣੀਐ ਲਾਹਾ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹੁਕਮ ਸਿਆਣੀਐ ਹੁਕਮੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਦਰਗਹਿ ਪਾਣੀਐ ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਰਵਾਰ ਬਾਂਦਰ ਬਾਣੀਐ ਲਾਹਾ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਮਨ ਵਸਾਈਐ ਲਿਖਿਆ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਗਰਵ ਵਜਾਈਐ ਮਨ ਮੁਖੀਆ ਸਿਰ ਮਾਰ ਵਾਧਖ ਪਾਈਐ ਠੱਗ ਮੁੱਠੀ ਕੂੜਿਆਰ ਬਨ ਚਲਾਈਐ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਨਾ ਪਛੋ ਤਾ ਵਹੀ ਗੁਨਹਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਵਹੀ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲੀਐ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਆ ਜੰਗਲ ਢੂੰਡੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਰ ਬਨ ਹਰੀ ਆਵਲਾ ਸੱਚ ਟਿਕੈ ਕਰ ਆਏ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਵਲਾ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੀਐ ਰਹਾਓ ਆਪ ਮਿਲਾਵੈ ਸੱਚ ਤਾ ਮਨ ਭਾਵਈ ਚੱਲੈ ਸਦਰ ਜਾਏ ਅੰਕ ਸਮਾਵਈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਈ ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿਉ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਪੱਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜੈ ਪਰ ਨਾਲ ਬੁਡਾਵੈ
ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚੀਐ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪਛਾਣੀਐ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਲੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਆਖੀਐ ਤਿਨ ਕਰਤੈ ਕੀਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਮਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਥੀਆ, ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਫੁਰਮਾਈ, ਜੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲੈ ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਸੋ ਧਣੀ ਤਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਨੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਮੂਲ ਛੋੜ ਡਾਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਪਾਵੈ ਸ਼ਾਈ।

पूरी मत भाई, आद जुगाद निरंजना जन हर शरणाई। साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साचे परथाई। गुरबिन किने ना पायो, केती कह कहाए, आप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत रड़ाए। मानमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए, बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए। जन्म मरै प्रमाई है हर नाम ना लेवै, ता की कीमत ना पवै बिन गुर की सेवै। करनी सेव कराई है करनी पीसाई, आप करे किसे आखिए वेखे वड़ियाई। गुर की सेवा सो करे जिस आप कराए, नानक सिर दे छुटिया दरगै पत पाए। आसा महला पहला, रूड़ो ठाकर महरो रूड़ी गुरबाणी, वड़े पाग सतगुर मिले पाइय पद निर्बाणी। मैं ओ लगिया ओ लगी हम शोरू थारे, जो तू राखे त्यो रहा मुख नाम हमारे। रहाओ दर्शन की प्यासा कणी, भाणे मन पाई है मेरे ठाकर हाथ वड्याईया। भाणे पद पाई है साचो दूर ना जानिए, अंतर है सोई जै देखा तै रव रहे किन कीमत होई। आप करे आपे हरे वेखे वड्याई, गुरमुख होए निहाली है इं कीमत पाई। जीवंदियां लाह मिले गुरकार कमावै, पूर्व होवै लिखिया तां सतगुर पावै। मनमुख तोटा नित है परमै परमाए, मनमुख अंध ना चेतई क्यों दर्शन पाए। ता जग आया जानिए लाच साचै लिवलावै, ता जग आया जानिए साचै लिवलाए। गुर पेटे पारस पए ज्योति ज्योत मिलाए। अहनिस रह निरालमो कार तुर की करनी, नानक नाम संतोखिया राते हर चरणी। आसा महला पहला, केता अखने आखिए ताके अंत ना जाना। मैं नितरिया तर एक तू मैं तान सताना, नानक की अरदास है सच नाम सुहेला। आप गया सोजी पई गुर शब्दी मेला। रहाओ हाँ मैं गर्व गवाई है पाई है विचार, साहब से मन मान्या दे साचा धार। अहनिस नाम संतोखिया सेवा सच साई, ता कहो बिघन ना ला गई। चल हुक्मर जाई हुक्मर जाई, जो चल सुपवै खजान। खोटे ठवर ना पाए नी रले जूठान, नित नित खरा संभालिया सच सबदा पाई। खोटे नजर नयावनी ले अगन जलाईए, जिन्नी आत्म चीनिया परमात्मा सोई। एको अमृत बिरख है फले अमृत होई। अमृत फल जिनी चाखिया सच रह गाई, तिन्ना परम ना भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदा रजाई, अवगुणियारे कौ गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा महला पहला, मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जत भाणिया। जो लग जियो प्राण सच ते आई है, लाह हर गुण गाए मिले सुख पाई है। रहाओ सच्ची तेरी कार दे दयाल तू, हों जीवा तुद सा लाहे मैं टेकया धार। तू दर सेवक दरवान दर तू जानही, भगत तेरी हैरान दर्द गवा वही। दरगै ना महदूर गुरमुख जान सी, वेला सच प्रवान शब्द पछाण सी। सत संतोख कर पाओ तोसा हर नाम से, मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे। सच्चे सच्चा

नानक सब दुख मिटे प्रभेटे परमानंद। आसा महला पंजवा बिरहड़े कर चौथा संता की जात एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म प्रभ सिमरिए प्यारे दर्शन को बल जाओ, जिस सिमरत दुख बिसरै प्यारे सो क्यों तजना जाए। एहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए, सुख सिंगार बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए। काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरणी पाए। जो जन राते राम सिंह प्यारे अंतना काहू जाए, हर जिन्नी चाखिया प्यारे तृप्त रहे गाए। अंचल गहया साधका ना

सोपला प्यारे तेरी अमर रजाए, नानक रंग रते नारायण प्यारे, माते सहि सुभाए साबे तुम ही जानते प्यारे, किस पे कहो सुनाए।

करै जे हौ किछ जानदा गुरमुख निमाणा हो अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मलखो हो निमाणा सतगुरु अगै मत किछ आप लखावहे अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावहे सतगुर कै पाणे करह कार सतगुर कै पाणे लाग रहो इउ कह नानका विछड़ सुख पावै मन निमाणा होए रहो तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सहु चित आया महा आनंद सहज भया मन तन सुख पाया सो सहु चित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे जा तिस पाणा गुण प्रगट होए सतगुर आप सवारे से जन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दिड़िया दुतिया पाओ चुकाया इउ कह नानक तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सहु चित आया एक जंत भरम भुले तिन सहया भुलाए दूजे पाए फिरे हम मैं कर्म कमाए तिन सहया भुलाए कुमार्ग पाए तिन का किश नाम वसाई तिन की गत अवगत तू है जाने जिन एह रचन रचाई हुक्म तेरा खरा पारा गुरमुख से बुझाए इउ कह नानक क्या जंत विचारे जा तुद परम भुलाए सच्चे मेरे साहेबा सच्ची तेरी वड्याई तू पार ब्रह्म बेअंत स्वामी तेरी कुदरत कहन ना जाई सच्ची तेरी वड्याई जा को तुद मन वसाई सदा तेरे गुण गावहे तेरे गुण गावै जा तुद पावै सच्चे सिउ चित लावहे जिसनो तू आपे मेलै सो गुरमुख रह समाई इउ कह नानक सच्चे मेरे साहेबा सच्ची तेरी वड्याई राग आसा शंत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवनो मैं जीवन पाया गुरमुख पाए राम हर नामो हर नाम देवै मेरा प्राण वसाए राम हर हर नाम मेरा प्राण वसाए सब संसार दुख गवाया अदिष्टया गोचर गुरबचन ते आया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाजै नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाता ज्योति जो समाणी मन मुखा मन मुख मोए मेरी कर माया राम खिन आवै खिन जावै दुर्गंध मड़ै चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़ै चित लागा ज्यो रंग कुसुंब दिखाया खिन पूर्व खिन पछम छाए ज्यो चक कुम्हार पवाया दुख खावै दुख संचय भोगै दुख की बिरद वधाई नानक बिखम सोहेला तरियै जा आवै गुर सरनाई मेरा ठाकरो ठाकर निका अगम अथाह राम हर पूंजी चाही मेरे सतगुर सहा राम हर पूंजी चाही नाम विसाही गुण गावै गुण पावै नींद भूख सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावै वणजार एक पाती आवै लाहा हर नाम लै जाहे नानक मंतन अर्प गुर आगै जिस प्राप्त सो पाए रतनारतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोल करतनिया पारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद विरोल श्री राम देखिया एक वस्ता नूप दिखाई गुर गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद ना पाई आसा महला चौथा चिम चिमे चिम चिम वरसै अमृत तारा राम गुरमुखे गुरमुख नदरी राम प्यारा राम नाम प्यारा जगत निस्तारा राम नाम वड्याई कलयुग राम नाम बोझता गुरमुख पार लंघाई हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी नानक दात दया कर देवै राम नाम निस्तारी रामो राम नाम जपया दुख किल विख नास गवाया राम गुर परचय त्याया मैं हृदय राम रवाया राम रव्या राम हृदय परम गत पाई जा गुर सरनाई आए लोभ विकार नाव डुबदी निकली
ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦੜਾਏ।

अनंत अथा ठाकरो सगल मंजे बाहरा सर्व जाच के एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी एहो दान मानो नानक पाए शीस साधै धर चरणी आसा महला पंजवां सलोक उद्यम करहो वडभागी हो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवै दुख दर्द भ्रम जाए शंत नाम जपत गोबिंद न अलसाई है पेट साधु संग जमपुर न जाई है दुख दर्द ना पौवे आपै नाम सिमरत सद सुखी सास सास आराध हर हर त्याय सो प्रभ मन मुखी किरपाल दयाल और साल गुणनिध कर दया सेवा लाई है नानक पयम पै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद न अलसाई है पावन पतत पुनीत नाम निरंजना परमा देर विनाश ज्ञान गुर अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जाकर वसया मिटे तसै विसूरिया आगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नानक पयम पै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिद्धे हर चरण कारण करण स्वामी पतत उदरन हर हरे सागर संसार भवोतार नाम सिमरत बहुतरे आदि अंत बेअंत खोजै सुनी उदरन संत संग बिदे नानक पयम पै चरण जंपै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे भगत वछल हर बिरद आप बनाया जय जय संता राधा तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाए सह सुवाए भगत कारज सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगा दै दस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जंपै भगत वछल हर बिरद आप बनाया आसा महला पंजवां थिर संतन सुहाग मरै ना जावे जा कै गृह हर ना हो सो सद ही रावे अवनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवता निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकर दैद पूर्ण सदा प्राण पात गत मत जाते प्रे प्रीत प्रीतम भावे नानक बखाण गुर भजन जाने थिर संतन सुहाग मरै ना जावे जा कौ राम पतार ता कै अंध घना सुखवंती सा नार शोभा पूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निध तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मदर बानी प्रहमानी थिर सुहागता का बना नानक बखाण गुरबचन जाने जा को राम पतार ता कै अंध कणा आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताज आप मिटा संताप आप न जान आई है शरण ही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास दासी ताजो दासी कर जोड़ दिन रहन जागी है नानक बखाण गुरबचन जाने आओ सखी संत पास सेवा लागी है जा कै मस्तक भाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जनसा संग पाया साध संग हर कै रंग गोबिंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सगल तिनै त्यागया मन सांस है सुभाव गूठा आनंद मंगल गुण गाया नानक बखाणै गुरबचन जाने जा कै मस्तक भाग से सेवा लाया आसा महला पंजवां सलोक हर हर नाम जपंतिया कछ न कह जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल शंत मिलो संतन कै संग।

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवै, बंता विनोद आनंद माया ज्ञानता लपटावै। खिसै जोबन बदै जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहयो तहे संग मीठे भोग सोन। भ्रमत पार अगांत आयो बहु परदेसैत आयो, आवे ओढ़धारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हरनायो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुझते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कौ जे होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकि शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंध पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाई या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम हो बेकार बिनसे जोने अमन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जय देखो तय संग एको रव रहया, घट घट वासी आप वर लैकने लहया। जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिद जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत कर मलट पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग देखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद आंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत शंत। पिनी रैनड़िए चमकन तारे जागे संत जना, मेरे राम प्यारे राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरै आंदेनो चरण कमल ध्यान हिरदै प्रभ सिर नाही एक खिनो। तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जिड़िया आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखैगामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तर सब हरे। मन ए छपाई प्रभ तिहाई संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछै कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸੁਮਾਣੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਆੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਭਾਗੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਬਨਵਾਰੀਆ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਤਾਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠ ਮੰਜ ਵਟਾਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੜੀਆ ਕਿਤਕੂਲ ਲਵਾਇਆ।

नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुर कने ना पायो, बिन सतगुर कने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नु कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला, हों विच आया हों विच गया, हों में जमया हों विच मुआ, हों में दिता हों विच लया, हों विच खटिया हों विच गया। हों विच सचियार कूड़ियार, हों विच पाप पुन विचार, हों विच नरक सुरग अवतार। हों विच हसै हों विच रोवै, हों विच भरी है हों विच धोवै, हों में जाति जनसी खोवै। हों विच मूर्ख हों विच सियाणा, मोख मूत की सार ना जाना। हों विच माया हों में छाया, हों मैं कर कर जन तो पाया। हों मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिया लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। महला दूजा, हों मैं यहा जात है, हों मैं कर्म कमाहे। हों मैं एही बंदना फिर जोनी पाहे। हों मैं किथों उपजै कित संजम एह जाए। हों मैं एहो हुक्म है पया किरत फिर आहे। हों मैं दीर्घ रोग है दारू पिए समाहे, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। नानक कह सुनो जन इत संजम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिनी सचो साहित्य आया। उन्नी मंदै पैर न रखियो, कर सुकिरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला, नित देवै चढ़ै सवाया। वड्याई वड्डा पाया। श्लोक महला।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करै प्यार, धर्मी धर्म करै गावावै मंगै मुख द्वार, जति सदावै जुगत न जाणै छड़ बह करबार, सबको पूरा आपे होवै घटना कोई आखै, पथ प्रवाणा पिछे पाईऐ ता नानक तोलिया जापै, महला पहला वदी स्वजग नानका सच्चा वेखै सोए, सबनी छाला मारियां करता करे सोहे, अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे, जिनकी लेखे पत पवै चंगे से ही के पौड़ी, तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया, एना जनता कै वस किश नाही तुद वेकी जग तो पाया, एक नानो तू मेल लै एक आपो तुद खवाया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदया बुझाया, सहजे ही सच समाया। सलोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाही जाह करी ना होई, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ, जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहेब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया, महला दूजा जोग सबदं ज्ञान सबदं वेद सबदं ब्राह्मण खत्री सबदं सूर सबदं सूद्र सबदं प्राकृत, सर्व सबदं एक सबदं जे को जाने पेओ, नानक ताका दास है सुई निरंजन देओ, महला दूजा एक कृष्णं सर्वदेवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पेओ, नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ, महला पहला। कुंभे बद्दा जल रह जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रह गुर बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी पढ़िया होवे गुनहगार ता ओमी साधना मारी है, जिहा कहले कहलना ते वे हो ना उपचारी है, ऐसी कला ना खेडी है जित दरगह गया हारी है, पढ़िया अत ओमिया विचार अगै विचारी है, मोह चल सो अगै मारी है। सलोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ वाह हो, जो जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझै ताहे, सत युग रथ संतोख का धर्म अगै रथवा हो, तेरे तै रथ जतै का जोर अगै रथवा हो, द्वापर रथ तपै का सत अगै रथवा हो, कलयुग रथ अगन का कूड़ अगै रथवा हो, महला पहला। साम कह से तंबर स्वामी सच मैं अच्छा साच रह, सबको

जुज मैं जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादुम भया पार जाद गोपी लै आया बिंद्रावन मैं रंग किया। काल मैं बेदा थरबण हुआ नाव खुदाई अलहो भया नील बसर ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया। चारे वेद हुए

पौड़ी सतगुर विटों वारिया जित मिले खसम समालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोए था विरलै कने विचारिया कर कृपा पार उतारिया। सलोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवे आस कर जाहे निरासे कित फल फिके फुल बक बके कम न आवह पत मिठत निवी नानका गुण चंगियाईया तत सब को निवै आप कहो पर कहो निवै ना कोए तर तराजू तोली है निवै सो गौरा होए अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गा हे शीस निवाया क्या थी है जा हृदय सुदे जाहे महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समादं मुख झूठ विपुखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लिलाटं दोय धोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोक निश्चो कर्मं कहो नानक नह चौ त्यावै विण सतगुर वाट ना पावै पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाम दे राहे पीड़ै अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसै खरा डरावना करे औगण पछोतावना। सलोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एहो जने उजी का है ता पांडे कत ना एहो टुटै ना मल लगै ना एहो जलै ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौकै पाया सिखा कण चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ गुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन सजी नाल तग कपाहो कती है बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिया पी फिर पाईए होर नानक तग न टुटई जे तग होवै जोर। महला पहला नाए मन्ने पातू पजै साला ही सच सूत दरगे अंदर पाईए तग ना टूट सपूत। महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेहवा तग ना अखी वे तगा आपे वत्तै वड़तागे अवरा कत्तै लै पाड़ करे वी आहो कड़ कागल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडाण मन अंधा नाओ सुजान। पौड़ी साहेब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या होवे परवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै पावै सो करे मनहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगै पैंदा जाए सी। सलोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरन ना जाई धोती टिका तै जप माली धन मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कतेबा संयम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम लै जाए तरंदा। महला पहला मानस खाने करे निवाज शुरी वगाए नो तिन गल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद उना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मथे टिका तेड़ तोती का खाई हथ छुरी जगत कसाई
नील वस्त्र पहर होवे प्रवान, मलेश तान ले पूजे पुराण, अपाखिया का कुठा बकरा खाना, चौके उपर किसे ना जाना, देखे चौका कड्डी कार, उपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन्ना साडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है, पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा, आपे दे वड़ियाईया आपे ही कर्म कराएंदा, वड हो वड़ा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा, नदरों पठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा, दर मंगन पेख ना पाएंदा, सलोक महला पहला, जे मोहा का कर्म है कर मोहे पितरी दे, अगे वत सियाणी है पितरी चोर करे, वड़ी है हाथ दलाल के मुस्पी एह करे, नान के अगे सो मिले जे खट्टे का ले दे, महला पहला, ज्यों जोरू सिर नावनी आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख वसै नित नित होए खुवार, सूचे एह ना आखी है बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए, पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग, हर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कृपा सारिया, चीज करन मन भावदे हर बुजन नाही हारिया, कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरण विसारिया, जरे आई जो बनहारिया, सलोक महला पहला, जेकर सूतक मनी है सब तै सूतक होए, गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए, सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवै रसोए, नानक सूतके अपना उतर है ज्ञानो तारे तोए, महला पहला, मन का सूतक लोभ है जेहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना परतरिया परतन रूप, कन्नी सूत कन पै लाए तबारी खाहे, नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे, महला पहला, सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए, जमण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए, खाना पीना पवित्र है दितो न रिजक संबाहे, नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाहे, पौड़ी सतगुर वड्डा करसा लाही है जिस विच वड्डियां वड्याईया, सह मेले ता नदरी आईया, जा तिस पाणा ता मन वसाईया, कर हुक्म मस्तक हथ धर विचो मार कड्डियां बुरियाईया, सह तुठै नौ निद पाईया, सलोक महला पहला।

को निर्जास वस्तु अंदर वस समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगा।

नानक सेवक कांडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ता के पारा वार आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार नानक करना जिन किया।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग आसा बाणी भगतां की। कबीर जियो, नाम देव जियो, रविदास जियो, आसा श्री कबीर जियो। गुरचरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया। कवन काज जग उपजै, बिन सह कहो मोहे समझाया। देव करो दया, मोहे मार्ग लावो। जित पै बंधन टूटै, जन्म मरण दुख फेड़ कर्म सुख। जी जन्म ते छूटै रहाओ। माया फास बंद नहीं फारै, आर मन सुन ना लूके। आपा पद निर्वाण ना चीके चीनिया, इन बिद अप्यो ना चूके। कही ना उपजै उपजी जाणै, भाव अभाव बिहूणा। उदय अस्त की मन बुद्ध नासी, तो सदा सहज लिवलीणा। ज्यों प्रत बिंब बिंब कौ मिली है, उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा, तौ मन सुन समाना। आसा गज साडे तै तै तोतियां, तेहरे पायन तग। गली जिना जप मालियां, लोटे हथ ने बग। ओए हर के संतना आखी है, बानारस के ठग। ऐसे संत नामो को पावै, डाला स्यों पेडा गटकावै। रहाओ बसन मांज चरावै, उपर काठी तोय जलावै। बसदा खोद करै दोए चूले, सारे मान सखावै। ओए पापी सदा फिर अपराधी, मुखवा परस कहावै। सदा सदा फिर अभिमानी, सगल कुटम डुबावै। जित को लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावै। कहो कबीर जे सतगुर भेटै, पुनरप जन्म ना आवै। आसा बाप दिलासा मेरो कीना, से सुखाली मुखे मृत दीना। तिस बाप कहो क्यों मनो विसारी, आ गया गया ना बाजी हारी। मुई मेरी माई हों खरा सुखाला, पैरो नहीं दगली लगे ना पाला। रहाओ बल तिस बापै जिन हों जाया, पंचा ते मेरा संग चुकाया। पंच मार पावा तल दीने, हर सिमरन मेरा मन तन पीने। पिता हमारो वड गोसाई, तिस पिता पह हों क्यों कर जाई। सतगुर मिले ता मार्ग दिखाया, जगत पिता मेरा मन पाया। हों पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठाहर दुहा बसेरा। कहो कबीर जन एको बुझिया, गुरप्रसाद मैं सबके सूझिया। आसा एकत पत्र पर उरकट कुरकट, एकत पत्र पर पानी। आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नगट दे रानी। नगटी को ठनगन बाडाडू, किना बबे की काटी तू। रहाओ सगल माहे नगटी का वासा, सगल मार अवहेरी। सगलियां की हों बहन भाण जी, जिने बरी तिसचेरी। हमरो परता बड़ो बबेकी, आपे संत कहावै। ओह हमारे माथे कायम, और हमरे निकट न आवै। नाको काटी कानो काटी, काट कूट कै डारी। कहो कबीर संतन की बैरनो, तीन लोक की प्यारी। आसा जोगी जति तपि सन्यासी, बहुत तीर्थ भ्रमना। लुंजत मुंजत मोन जटा तार, अंत तऊ मरना। ताते सेवी अले राम ना, रसना राम नाम हित जाकै। कहां करै जमना। रहाओ आगम निर्गम ज्योतक जानै, बहु बहु ब्याह करना। तंत मंत्र सब औखद जानै, अंत तऊ मरना। राज भोग अरशदर सिंहासन, बहु सुंदर रमना। पान कपूर सुबासक चंदन, अंत तऊ मरना। वेद पुराण सिमरत सब खोजे, कहू ना उबरना। कहो कबीर एओ रामे जंपो, मेट जन्म मरना। आसा फीलर बाबी बल्द पखावज, कौआ ताल बजावै। पहर चोलना गधा नाचै, पैसा भगत करावै।

बैठ सिंह कर पान लगावे, कीस गलौरे लियावे, कर कर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, बंस को पूत बियाहन चलिया, सोयने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए। कहत कबीर सुनोरे संतो कीटी पर्वत खाया, कशुआ कह अंगार पे लोरो लूकी शब्द सुनाया। आसा बटुआ एक बहत्तर आधारी, एको जिसे द्वारा नवे खंड की प्रथमी मांगे, सो जोगी जगसारा ऐसा जो

आओ तन कर मटकी मन माहे बिलोई इस मटकी मैं शब्द संजोई हर का बिलोवना मन का बिचारा गुर प्रसाद पावे अमृत धारा कहो कबीर नदर करे जे मीरा राम नाम लग उतरे तीरा आसा बाती सूकी तेल निखूटा मंदल ना बाजै नट पै सूता बुझ गई अगन नानक सो धुआं रव रहया एक अवर नहीं दुआ रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब भूल बिगाड़ो अपना काज कथनी बदनी कहन कहावन समझ परी तो बिसरो गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिनते नाही परम पर दूरे आसा सुत अपराध करत है जेते जननी चीत ना राख स्थेते रा मैया हो बारक तेरा काहे ना खंड से अवगन मेरा रहाओ जे अत क्रोप करे करताया ता पी चीत ना राख समाया चिंत पवन मन परयो हमारा नाम बिना कैसे उतर सपारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा आसा हज हमारी गोमती तीर जहां बसै पीतंबर पीर वाहो वाहो क्या खूब गावता है हर का नाम मेरे मन पावता है रहाओ नारद सारद करैखवासी पास बैठी बीबी कबला दासी कंठे माला जेवा राम सहंस नाम लै लै करो सलाम कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुर्क दऊ समझावो आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो पूली मालनी है ओ सतगुर जागता है दे ओ रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी फूल शंकर दे ओ तीन देव प्रतख तोरै करै किसकी से ओ पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गण नहारे खाओ पात पहत यार लापसी कर करा का सार भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार मालन पूली जग पुलाना हम पुलाने नाहे कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आसा बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कष्टप ना कियो तीस बरस कष देवन पूजा फिर पछताना बिरद पयो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलियो रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथ वार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुक्त फिरे चरण सीस कर कंपन लागे नैनी नीर आसार बह जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करै हर जियो कृपा करै लिव लावै लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चलद्या नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछुऐ लै ना गयो आई तरब गोपाल राय की माया मंदिर छोड़ चलियो आसा काहू दीने पाठ पटंबर काहू पलंग निवारा काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा अहे रखवाद ना कीजै रे मन सो किरत कर कर ली।

आओ बजाम नहारो कहां गयो जने हो मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिगल पाए संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत धर रमते मृतक पय दसै बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव शलिया मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभुवन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा एह सरपनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुरप्रसाद सही तरे कबीरा आसा कहां स्वान कौ सिमरत सुनाए कहां सागत पै हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही है सागत स्यो भूल नहीं कहिया रहाओ कौआ कहां कपूर चराए कह बिसियर कौ दूध पी आए सत संगत मिल बिबेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई सागत स्वान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत लै लै नीम सिंचाई कहत कबीर ओआ को सहज ना जाई आसा लंका सा कोट समुंद सी खाई तेह रावण कर खबर ना पाई क्या मांगो कि थिर ना रहाई देखत नैन चल्यो जग जाई रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती तेह रावण कर दिया ना बाती चंद सूरज जाके तप्तर सोई बैसंतर जाके कपड़े धोई गुरमत रामै नाम बसाई आश्चर रह ना कथू जाई कहत कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त ना होई आसा पहला पूत पिछैरी माई गुर लागो चेले की पाई एक अचंबो सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा लै गई बिलाई तले रे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल फूला कोरे चार पैस चरावन जाई बाहर बैल गोन कर आई कहत कबीर जो इस पद बूजै राम रमत ते सबके सूजै बाईस चौपदे तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जियो के ते पदे अठ दो तुके सत एक तुका एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उदर राखिया बहुर लागी माया प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया पूर्व जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया रहाओ बारक ते बिरद पया होना सो होया जा जम आए चोट पकड़ै तबै काहे रोया जीव ने की आस करे जम ने हारे सासा बाजी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा आसा तन रैनी मन पुनरप करहो पांचो तत बराती राम राय सो पावर लहो आत्म तेह रंगराती गाओ गौरी दुलहनी मंगल चारा मेरे गृह आए राजा राम पतारा रहाओ नाब कमल मैं बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलो पायो अस बड़ भाग हमारा
ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕੌਤਕੇ ਆਏ ਕੋੜ ਤੇ ਤੀਸਿਓ ਜਾਨਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਇ ਬਿਆਹ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ ਆਸਾ ਸਾਸ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮ ਡਰਾਓ ਰੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨੰਦ ਗਹੇਲੀ ਦੇਵਰ ਕੈ ਬ੍ਰਹਿ ਜਰਾਓ ਰੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੌਰੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ ਕਿਨ ਬਿਦ ਰਹਿਣ ਰਹੋ ਰੇ ਸੇਜੈ ਰਮਤ ਨੈ ਨਹੀਂ ਪੇਖੋ ਇਹੋ ਦੁਖ ਕਾ ਸੋ ਕਹੋ ਰੇ ਰਹਾਓ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਕਰੈ ਲੜਾਈ ਮਾਇਆ ਸਦਮਤ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕੈ ਜਬ ਸੰਗ ਹੋਤੀ ਤਬੋ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗੜਾ ਝਗੜਤ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਜਗ ਬਾਂਧਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਆਸਾ ਹਮ ਕਰ ਸੂਤ ਤਨੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ ਕੰਠ ਜਨੇ ਉਤ ਮਾਰੇ ਤੁਮ ਤੋ ਬੇਦ ਪੜੋ ਗਾਇਤਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹਿਰਦੈ ਹਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਬਿਸਨੈ ਨਾਰਾਇਣ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਬ ਪੂਸ ਬਵਰੇ ਤਬ ਕਿਆ ਕੈਸ ਮੁਕੰਦਾ ਰਹਾਓ ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਰੋ ਤਾਰ ਚਰਾਇਓ ਕੈਸੇ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ਤੂੰ ਬਾਮਨ ਮੈਂ ਕਾਸ

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी, सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पय राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे अल्लाओ, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे को चख मार है, काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ, साज कते बखाने अल्लाहो, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई, अल्लाहो गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी, हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

की एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र बिमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो। जतर जाओ तत बीठल पहला महा

आनीले दूध रिदाईले खीरं। ठाकर कहो न वेद करो, पहले दूध बिटा रहे हो बछरा है, बीठल पहला काय कराओ। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थांथन अंतर नामा प्रणव पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी। कहां करो जाती, कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। हर अंग नरंगो सीमन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांड। काहे कहो की जय ध्यान जपन्ना, जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ। सिंह च भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीनसी, आसा ते ना भावसी, रामा भगत चेती अले अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरै गारे, संसार सागर बिखै को बना, झूठी माया देख कै भूला रे मना रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुरु उपदेश पहला, संता कै प्रसाद नामा हर पेटला। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन प्रेंग पतंग कुंचर, एक दोख बिनास, पंच दोखया साध जा मैं ताकि केत कयास। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन रहाओ। त्रिगत जोन अचेत संभव, पुन पाप्या सोच, मानुखा अवतार दुर्लभ, तिही संगत पोच। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए, काल फासा बद लागे, कछ ना चलायो पाए। हर अवदास दास उदास, तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ। संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगनी, और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लिखावो असंत पापी सन। रविदास भण जो जाने सो जान, संता नंता यंत्र नाही। आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊच पय है, गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधव, जैसे मदप मखीरा। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। आसा कहां पयो जो तन पयो छिन छन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन। तुझे चरण अरबिंद पवन मन, पान करत पायो पायो रामैया तानो रहाओ। संपत विपत पटल माया तानो, ता मैं मगन होत ना तेरो जानो। प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जानो, कह रविदास शूट बो कमन गुनो। आसा हर हर हर हर हर हर हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागरो, जन्म जन्म के काटे कागर।
ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦੇਉ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਇਆ, ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ।

देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहाओ। जब कश पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसै लुभाना, बिरस गया जाय कहूं समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजी गर स्यो मोहे प्रीत बने आई। आसा बाणी भगत धन्य जी की, एको अंकार सतगुर प्रसाद। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे। लालच बिख काम लुब्ध राता, मन बिसरे प्रभीरे रहाओ। बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया। गुणते प्रीत बड़ी अनपाती, जन्म मरण फिर तान्या। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जल जम फंद परे। बिख फल संच भरे मन ऐसे, परम पुरख प्रमाण बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरै धन दिया, ध्यान मान मन एक मय। प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्ता गाने मुक्त पए। जोत समाए समानी जाके, अछली प्रपहचानिया। धन है तर पाया तरनी तर, मिल जा संत समानिया। महला पंजवां गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग, नाम देओ मन लीना। आड़ दाम कोशी परो, होयो लाखीना रहाओ। बुनना तनना त्याग कै, प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जोला हरा, पयो गुनी गहीरा। रविदास टोवंता टोर नीत, तिन त्यागी माया। प्रगट होवा साध संग, हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया, ओहो कर कर सुनिया। हिरदे वसिया पार ब्रह्म, भगता मैं गनिया। एह बिद सुन कै जट रो, उठ भगती लागा। मिले प्रतख गुसाइया, तन्ना वड भागा। रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर, बिबै ना जान सकोई। जे तावै ब्रह्मंड खंड कहो, करता करे सो होई रहाओ। जननी केरे उदर उदुक मह, पिंड किया दस द्वारा। दे आहार अग्न में राख, ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर, समय देख मन माही। पाखण कीट

आसा सेख फ्री जियो की बाणी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीय रहाओ। आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। पर्वत

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभाई। जित कारे काम हम हर लाए, सो हम करे जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता का रिजका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़े उड़िया वैसा कोसा। तिस पाछे बचरे शरिया, उन कमन खलावे कमन चुगावे। मन में सिवरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइए। तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करे खट करमा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरे हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा तारी, कोट

सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कै वासा ऊहा छोड़ धरन मैं आया चित्रसाल सुंदर बाग मंदर संग न कछू जाया अवर सब मिथ्या लोभ लभी गुरपुरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाओ इष्टमीत बंद पसुत पाई संग मंता रच हसया जब अंति अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोइना रूपा दामा पहाड़ी को ओह पहाड़ा मिलया होर सगल पयो बेराना हैवर गैवर रथ संबाहे गहो कर कीने मेरे जब ते होई लामी ताई चले नाही एक पैरे नाम तानो नाम सुख राजा नाम कुटम सहाई नाम संपत गुरु नानक कौ दी ओह मरे ना आवै जाई गुजरी महला पंजवां ते पदे कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निधान सतगुरु दरड़ाया बिनसना आवै जाई हर जप माया बंधन टूटे भय कृपाल दयाल प्रभ मेरे साध संगत मिल छूटे रहाओ आठ पहर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हर सोग दोह माहे निराला करण हर पिछाता जिसका साथ इन्हीं रख लिया सगल जुगत बन आई कहो नानक प्रभु पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवां दो पदे कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए कर अपने सगल करत नमस्कारो वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल श्रेष्ठ को तनी कही जय जन को अंग निरारो रहाओ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो नाम देव त्रिलोचन कबीर दास रो मुक्त पयो चमियारो गुजरी महला पंजवा है नाही को बूझन हारो जाने कवन पता शिव बिरंच यार सगन मोहन जानो गह ना सकाहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिया अवर अवर बिद बुचिया बकन कथन रहता रहाओ आपे भगता आप स्वामी अपन संगरता नानक को प्रभ पूर रहे हुए पेख्यो जतर कथा गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु ना आयो जह जह अवसर आए बनयो है तहां तहां हर त्यायो प्रभ को भगत वच्छल बिरदायो करे प्रतपाल बार की न्याई जन को लाड लड़ायो रहाओ जप तप संजम कर्म धर्म हर कीर्तन जन गायो शरण पर्यो नानक ठाकर की अपैदान सुख पायो गुजरी महला पंजवा दिन रातियां रादो प्यारो निमख ना की जय ढीला संत सेवा कर भावनी लाई है त्याग मान हा ठीला मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो ही रह कै संग पेख मोहयो मन लीला रहाओ जिस सिमरत मन होत आनंदा उतरे मनोह जंगीला मिलबे की महिमा वर्ण ना साकौ नानक परे परीला गुजरी महला पंजवा मन जोगी शास्त्रक कहावत सब कीने बस अपन ही तीन देव अर कोड़ते तीसा तिन की हैरत कश ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जान सको मरमा गुर कृपा ते लही रहाओ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साते भागी ओए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा
दोए कर जोड़ करी बेनंती, ठाकरे अपना त्याया। हाथ दे राखे परमेश्वर, सगला दुर्त मिटाया। ठाकर होए आप दयाल, पई कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल रहाओ, मिलवर नारी मंगल गाया। ठाकर का जयकार कहो नानक, तिस गुर बलिहारी, जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवा, मात पिता भाई सुत बंदप, तिनका बल है थोरा। अनक रंग माया के पेखे, किछ साथ ना चल है पोरा। ठाकरो तुझ बिन आहे ना मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आहयो तुमरा तोरा। रहाओ बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा। साध संग नानक दर्स पायो, बिन सो सगल निहोरा। गुजरी महला पंजवा, आल जाल प्रम होत जावै, प्रभ सेती रंग लाई। मन को एह उपदेश दरड़ावै, सह सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई, जिस पेटे टूटे माया बंद, बिसरना कब हूं जाई। रहाओ करत करत अनक बहु भांति, नीकी ए ठहराई। मिल साधु हर जस गावे, नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा, खिन मैं थापो थापनहारा, कीमत जाए ना करी। राजा रंक करै खिन पीतर, नीचे जो तरी। त्याई अपनो सदा हरी, सो जन देसा ताका कहां करिए। जा मैं करी रहाओ तुमरी टेक, पूरे मेरे सतगुर, मन सरन तुम्हारे परी। अचेत याने बारक नानक, हम तुमरा खोतार करी। गुजरी महला पंजवा, तू दाता जिया सबना का, बसो मेरे मन माही। चरण कमल रिदमाए सुमाए।

सास सास तेरा नाम सुमारा तुम ही को प्रव्याही, नानक टेक पई करते की होर आस बेडानी लाही। गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर केस संग दास पगचारो एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हर रस न्यारा दो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो उदर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए साध संगत को जोहे ना सकै मल मल धोवे तो पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए, गुहज पाव को बहुत पर जा रे मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करता जा कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा आप जस मिटै होवै जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाई है जम की त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंध सेती कर जाई है जाते काल न बिरथी जाइए। आठ पहर सिमरो प्रभ अपना मंत्र सदा त्याइए रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन तू देह सोई प्रभ पाइए, चरण कमल नानक रंग राते हर दास पैज रखाइए। गुजरी महला पंजवा विश्वंपर।

चरण कमल संगराज सगल जी जा को वारा दै ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू रख तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा जन की पै सवारी आप हर हर नाम दियो गुरे अवखद उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा धार मिटी ब्याद सर्व सुख होए हर गुण सदा विचार। अंगीकार कियो मेरे करता

रहाओ। मात पिता सुत मीत भाई तिस बना नहीं कोए, ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रव्या सोए। कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवै काम, शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ कै नाम। आगम दयाल प्रभु ऊचा शरण साधु जोग, तिस प्राप्त नानका जिस लिखिया तुर संजोग। गुजरी महला पंजवा आपना गुर सेव सधी, रमह गुण गोबिंद सास सास या राध हर हर।

जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण। गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण योग। मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोबिंद लोचा पूर रहाओ। आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोबिंद रमण काटी है जमजाल। काम क्रोध लो मोह मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन। मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हरजन संत। सर्ब बेद भ्रम ते पुकार कतै नाही छोट हर चरण सरण या पार प्रभ के दृढ़ गही नानके ओट। गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आराध श्री धर सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरण अरबिंद उपास काल कलेस मिटंत सिमरन काढ़ जमदूत फास रहाओ। सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुवाओ। गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राए जाहे क्लेश मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए। गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ पहरो हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ सरन परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावै त्रह दस माल रखै जो नानक मोख मुक्त सो पावै। चेताओ बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ। उर्द मूल जिस साख्त लाहा चार बेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर आंगन मेरा पुहप पत्र तत डाला सर्ब जोत निरंजन संभू छोडो बहु जंजाला। सुन सिखवंते नानक बिनवै छोडो माया जाला मन विचार एक लिव लागी। पुनरप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कथियाले सो वै जे जाने रोगी। तिस कारण कामना तंदा नाही तंदै गिरही जोगी। काम क्रोध अहंकार तजियाले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत ते आया गुरप्रसादी पाया। ज्ञान ध्यान सब दात कथियाले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मदत तासर साधं जगत नाही सूता। महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनै ना गर्म बेख तज अमृत पी आया। गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभ दाते ताके अंत न परै सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरासा देवनहार। ऐ जी जप तप संयम सच आधार हर हर नाम दे सुख पाई है तेरी भगत परे पंडार रहाओ। सुन समाद रह लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल तरण गगन तह नाही आपे आप किया करतार। ना तद माया मग ना छाया ना सूरज चंद ना जोत्या पार
ਸਰਬ ਲੋਚਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਚਨ ਅਭਿਯੰਤਰ ਏਕਾ ਨਦਰ ਸੋਤਰ ਭਵਨ ਸਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨ ਤਿਨਕੀਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਆਕਾਰ ਸਰਬੇ ਜਾਜਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਟ ਤੇ ਤੀਸ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਇਕ ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾਹੀ ਭੰਡਾਰ ਉਂਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਛ ਨਾ ਸਮਾਵੈ ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰੈ ਨਿਹਾਰ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਤਰ ਜਾਚੈ ਅਰਿਧ ਸਿੱਧ ਜਾਚ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰ ਜੈਸੀ ਪਿਆਸ ਹੋਏ ਮਨ ਅੰਤਰ ਤੈਸੋ ਜਲ ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਨਾਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਰਾਰ ਤਾਂ ਕਉ ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜਮ ਜੋ ਹੈ ਬੂਝੈ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅਬ ਤਬ ਅਵਰ ਨਾਮਾ ਗਉ ਹਰ ਪਹਿ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਜੈ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਚਾਤਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੰਗੈ ਹਰ ਜਸ ਦੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਐ ਜੀ ਜਨਮ ਮਰੈ ਆਵੈ ਫੁਨ ਜਾਵੈ ਬਿਨ ਗੁਰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਤ ਪਾਈ

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया हरि उत्तम पद पाया सतगुर सेव हर नाम मन वसाया अंदर नाम प्याया विचे ग्रह गुरबचन उदासी हो मैं मोह जलाया आप तरिया कुल जगत तराया तन जने दी माया ऐसा सतगुर सोई पाए जिस तुर मस्तक हर लिख पाया जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटों जिन भ्रम पुला मार्ग पाया महला तीजा त्रै गुण माया वेख पुले जो देख दीपक पतंग पचाया पंडित पुल पुल माया वेख दिखा किने केहो आन चढ़ाया दूजे पाए पड़े नित बिखया नाम दईये खुआया जोगी जंगम सन्यासी पुले ओना अंकार बहु गर्भ वधाया शादन भोजन ना लही सत पिखया मन अठ जन्म गवाया एतड़िया विचों सो जन समदा जिन गुरमुख नाम ते आया जन नानक किसनो आख सुनाई है जा कर दे सब कराया पौड़ी माया मोह प्रेत है काम क्रोध अहंकारा एह जम की सिरकार है इना उपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाईयन जिन दूजा पाओ प्यारा जम पर बदे मारियन को सुने ना पुकारा जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले गुरमुख निस्तारा श्लोक महला तीजा हौ मैं ममता मोहनी मनमुखा नो गई खाए जो मोहे दूजे चित लाएं दे तिन्ना व्याप रही लपटाए गुर कै शब्द पर जाली है ता एह विच्चों जाए तन मन हो वै उजला नाम वसै मन आए नानक माया का मारन हर नाम है गुरमुख पाया जाए महला तीजा एहो मन केतड़िया जुग भरमिया थिर रह न आवै जाए हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेलो पाए जा हर बख्से ता गुर मिले अस्थिर रह समाए नानक मन ही ते मन मानिया नाक्ष मरे न जाए पौड़ी काया कोटिया पार है मिलना संजोगी काया अंदर आप वस रहया आपे रस भोगी आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाहे विजोगी श्लोक महला तीजा वाह वाह आपा खाइंदा गुर शब्दी सच सोए वाह वाह सिफत सलाह है गुरमुख बूझे कोए वाह वाह बाणी सच है सच मिला वाह होए नानक वाह वाह करत्या प्रपाया कर्म प्राप्त होए महला तीजा वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई पूरे शब्द प्रमिलया आई वडभागिया वाह वाह मोह कढ़ाई वाह वाह करे सही जन सोहणे तिनको परजा पूजने आई वाह वाह कर्म प्राप्त होवै नानक दर सच्चै सोभा पाई पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी परम पूले नजर नायावनी मनमुख अंध ज्ञानी उपाय कता न लभनी कर पेख तखे पेखवानी गुर शब्दी खो लाई अनु हर नाम जपानी हर जीव अमृत बिरख है जिन पिया ते त्रिपतानी श्लोक महला तीजा वाह वाह करत्या रैन सुख विहाए वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए वाह वाह करत्या हर सिउ लिव लाए वाह वाह करमी बोले बोलाए वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत्र जाए महला तीजा वाह वाह बाणी सच है

आप दया कर दे नानक वाह वाह गुरमुख पाई है अंधन नाम लाए महला तीजा बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई दूजी नाही जाए जे बहु तेरा लुची है बिन करमै ना पाया जाए जिन्ना अंतर लो विकार है दूजे पाए खुवाए जमन मरण ना चुकई हमें विच दुख पाए जिन्ना सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सहाहे नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समाहे पौड़ी ढाडी तिसनों वाखी है जे खसमै

पंजवा जा तू तुसै मेहरवान वचिंत वसै मन माहे जा तू तुसै मेहरवान नौनिध कर मैं पाहे जा तू तुसै मेहरवान ता गुर का मंत्र कमाहे जा तू तुसै मेहरवान ता नानक सच समाहे महला पंजवा किती बहन बहने मुच वजायन वज नानक सच्चे नामण किसै ना रहिया लज पौड़ी तुद त्यायन बेद कते बासन खड़े गणती गणी ना जाए तेरा दर्पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना संकर बिसन अवतार हर जस मुख पणा पीर पैगंबर शेख मसाय के औलिए उत्पोत निरंकार कड़कड़ मौलिए कूड़ो करे विनाश धर्मे तगी है जित जित लाहे आप तित तित लगी है सलोक महला पंजवा चंगयाई आलक करे बुरयाई होए सेर नानक अज कल आपसी गफल फाही पेर महला पंजवा कितिया कुटंग गुजा थिया ना हित नानक तैं सै टकिया मन मैं सच्चा मित पौड़ी हाउ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया नौनिद पाई राज जीवा बोलिया अमृत नाम निधान दासा कर कणा तिन कै संग निहाल श्रवणी जा सुना कमावा तिन की कार शरीर पवित होए पखा पानी पीस बिगसा पैर धोए आपो कशुना होए प्रभ नजर निहाली है मोहे निर्गुण जितै मोहे निर्गुण दिचै थाओ संत धर्मशाली है श्लोक महला पंजवा साजन तेरे चरण की होए रहा सद तूर नानक शरण तुहारिया पेखों सदा हजूर महला पंजवा पतत पुनीता संख हो हे हर चरणी मल लाग आठ साठ तीर्थ नाम प्रभ जिस नानक मस्तक भाग पौड़ी नित जपिय सास विरास नाव पर्वत गारदा जिसनो करे रहम तिस ना विसारदा आप पावन हार आपे ही मारदा सबके जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनो लाए सच तिसै उधारदा जिसद होवै वल सो कदे ना हारदा सदा अपग दीबाण है हाँ तिस नमस्कारदा श्लोक महला पंजवा काम क्रोध लोभ छोड़ीऐ दीजै अगन जलाए जीवन दे अनक जापीऐ नानक साचा नाओ महला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना सफल पाए आहे नानक नाम आराध्या गुरपुरै दिया मिलाए पौड़ी सो मुक्ता संसार जे गुरु उपदेसिया तिसकी गई बुलाए मिट अंदेसिया तिसका दर्शन देख जगत निहाल होए जन कै संग निहाल पापा मैल तोए अमृत साचा नाओ उथै जापीऐ मन को होए संतोख भुखा तरापी है जिस कट वसिया ना तिस बंधन काटी है गुरप्रसाद किनै विरलै हर तन खाटी है श्लोक महला पंजवा मन मैं चितवाओ चितवनी उद्यम करो उठ नीत हर कीर्तन काया हरो हर देहो नानक के मीत महला पंजवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मंत्र रत्ता मूल नानक जो प्रभानिया मरो विचारी सूल पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाण पसगल मन तन अर्पित हर पूजो गुर के पैर दुरमत जाए जर साजना कै संग भवजल बिखम तर सेवो सतगुर देव अगे न मरो डर खिन मैं करे निहाल ऊने सुबर पर मन को होए संतोख त्याई सदा हर सो लगा सतगुर सेव जाको करम तोर सलोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हारे जोड़िया नानक लहरी लक्ष्य आन डुबन दे ना मापरी महला पंजवा बन पी हावलै
ਹਿਕ ਸਾਥੀ ਲਦਮ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਰਨਾਮਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ ਪੌੜੀ ਪਾਈਅਨ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਛੋਤਾਓ ਤੁਧਨੋ ਜਪਤਿਆ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਜਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੁਖ ਲਹਾ ਚਿਤਾਰ ਮਨ ਗੁਰ ਪੈ ਸਿਫਤ ਭੰਡਾਰ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਬਹੁ ਨਾ ਧਾਈਐ ਰੱਖੈ ਆਪ ਦਿਆਲ ਕਰ ਦਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀਵਾਂ ਸੁਣ ਸਣੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸਹਿ ਦਿੱਤਾ

तोरे, बिसम भय बिसम आद देह कुदर तेरिया, शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया। तेरे हथ निदान पावे तिस देहे, जिसन होए दयालु हर नाम से लेहे। आगम्या गोचर ब्यंत अंत ना पाईए, जिसनो होहे कृपाल सो नाम तिहाईए। सुरुक महला पंजवा, कड़शिया फिर अन्न सुआव न जान सुनिया, सेई मुख दिसानो नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा, खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़, तै सह दित्ती वाड़ नानक खेत न छिजई पौड़ी। आराध्य हो सच्चा सोए सब केशो जिस पास, दुहा सरियां खसम आप खिन मैं करे रास। त्यागो सगलियो पाप तिसकी ओट गहो, पौ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो। कर्म धर्म तत् ज्ञान संता संग होए, जपिया अमृत नाम बिघन लगे कोए। जिसनो आप दयालु तिस मन उठिया, पाईन सब निधान साहेब तुठिया। श्लोक महला पंजवा, लदम लबन हार कर्म करन दो मां पिरी, इको सृजन हार नानक ब्याह ना पसीऐ। महला पंजवा, पापड़िया पाशाड़ बाण सचावा सन कै, गुरमंत्रा चितार नानक दुख ना थी वई पौड़ी। वाह वाह सृजन हार पाईन ठांड आप, जी जंत मेहरवान तिसनो सदा जाप। दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप, नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप। कीतियां ने अपनी रख गरीब निवाई थाप, आपे लयन छड़ाए बंधन सगल काप। तिसन बुझी आस पुनी मन संतोख त्राप, वड्डी हूं वड्डा पार खसम जिसले अपना पुन पाप। श्लोक महला पंजवा, जा कौ पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात। नानक प्रीत लगी तन राम सिंह, पेटत साध संगात। महला पंजवा, राम रमो वडभागी हो जल थल मैयर सोए, नानक नाम आराध्य बिघन लागे कोए पौड़ी। भगता का बोलिया प्रवान है, दरगह पवै थाए भगता तेरी टेक रते सच नाए। जिसनो होए कृपाल जिसका दुख जाए, भगत तेरे दयाल ओना मेहर पाए। दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए, भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए। सदा सदा दिन रहन इको एक त्याए, पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। सलोक महला पंजवा, कोट बिघन तिस लागते, जिस

कड़ी मोहत न विसरै नानक रवि है नित पौड़ी सूर बीर वरियाम किने ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जिन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवां किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवां नानक सतगुर भेटे है।

पौड़ी सो सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निदान या खुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजानिया, जिता जन्मया पार आप पछानिया, महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंद्या जियो तू, कमावद्या सुख पुंच, त्याय द्या तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। महला पंजवा, शुभ चिंतन गोबिंद रमण, निर्मल साधु संग, नानक नाम न विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए। आया चित निहाल साहेब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार। सब किश तिसकै वस ना कोई बाहरा, सो भगता मन उठा सच सुमहरा। तेरे दास त्यायन तुद तू रखण वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। सलोक महला पंजवा, काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार। राख ले हो प्रभु अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा, खांद्या खांद्या मोह कठा, पै नंद्या सब अंग, नानक त्रिगत ना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग। पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा

प्रभदास का दुख ना खप सकै, फड़ जो नी जुते मथे वाल पछाड़िया नू जा मार्ग मुक्ते। दुख लगै बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखिया नू नानक हर सते। श्लोक महला पंजवां। राम जपो वड भागी हो, जल थल पूर्ण सोए, नानक नाम ते आए बिघन लागै कोए। महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते, जिसनो विसरै नाओ, नानक अन दिन बिलपते, ज्यो सुनै कर काओ। पौड़ी। सिमर सिमर दा तार मनोरथ पूरिया, इच्छ पुन्नी मन आस गए विसूरिया, पाया नाम निदान जिसनो पालदा। जोत मिली संग जोत रहया कालदा, सुख सहज आनंद उठे तित कर, आवन जान रहे जन्म ना तहां मर। साहेब एवक साहेब सेवक एक एक दृष्टाया, गुर प्रसाद नानक सच समाया। सुध राग गुजरी भगतां की बाणी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री कबीर जी ओका। चौपदा कर दूजा दूजा, चार पाव दोए सिंह गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है, उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूंड लुकई है, हर बिन बैल।

भक्त बन महिया अजहो ना पेट अगई है, जन भक्तन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है, रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो एहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बहई है, कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा

आओ जब लग तागा बाहो बेही तब लग विसरै राम स्नेही ओछी मत मेरी जात जुलाहा हर का नाम लयो मैं लाहा कहत कबीर सुनो मेरी माई हमरा इनका दाता एक रगराई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जौ राज देहे ता कमन वडाई जौ भीख मंगावै ता क्या कट जाई तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण बहुर ना होए तेरा आवन जान रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई जिस तू देवै तसै बुझाई सतगुर मिलै ता से सजाई किस हो पूजो दूजा नजर न आई एक पाथर की जय पाओ दूजे पाथर धरिए पाओ जे ओह देओ ता ओह पी देवा कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो परम लियो बैठो री आई आवत किने ना पेखियो कमने जाने री बाई कौन कहे किन बुझिया रमैया या कुल री बाई रहाओ ज्यो आकाश पंखिया लो खोज निरखियो ना जाई ज्यो जल माजे मछलो मार्ग पेखणो ना जाई ज्यो आकाश कड़ुवलो मृग तृष्णा भरिया नामे चे स्वामी बीठलो जंती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दूता बछरे थनो बिटारियो फूल पावर जलमीन बिगारियो माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो अवरना फूलिया नूपन पावो रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा बिख अमृत बसे एक संगा धूप दीप नहीं बेदै बासा कैसे पूज करें तेरी दासा तन मन अर्पाओ पूज चरावो गुर प्रसाद निरंजन पावो पूजा अर्चा आहे ना तोरी कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलो

काहे भया सन्यासी भरमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत नाम पाया। काए जपोरे काए तपोरे काए बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडल कापड़ी आरे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर।

अंतकाल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमं सत आद भाव रतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छस जमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं भाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तार शरणं हर भगत निज नेह केवला हृद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं भवभूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सपागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्रभ

प्रेम रसाने जाको उपजी, छोड़ न कतहूं जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर, हर रस भोजन खाता। अठसठ तीर्थ मज्जन कीनो, साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया, जन कीनो सौत बेदाता। सगल समूह लै उदरे नानक, पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा, माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है। अनक प्रकार फिलत बिललाते, मिलत नहीं गोसाई है। रहाओ मोह रोग सोग तन बांधो, बोझो नी परमाई है। टिकट ना पावै बिन सतसंगत, किसी आगे जाय रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा, साध चरण चित लाई है। संकट घोर कटे खिन पीतर, नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा, ठाकर होए आप दयाल। पई कल्याण आनंद रूप होई है, उबरे बाल गोपाल। रहाओ दोए कर जोड़ करी बेनंती, पार ब्रह्मन त्याया। हाथ दे राखे परमेसर, सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया, ठाकुर का जयकार। कहो नानक जन को बल जाइए, जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, देव गंधारी महला पंजवा। अपने सतगुर पै बिनो कहया, पै कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया, रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी। हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया, कर मस्तक तार साज निवाजे, मोए दुष्ट जो खया। पार उपकारी सर्व सुधारी, सफल दर्शन सहजया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता, चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा, अनाथ नाथ।

तब तुहारे, उन समार मेरा मन साधारे, सुन गावो गुर बचनारे, बल बल जाओ साध दरसारे, मन में राखो एक या सारे, नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवां, प्रभ यह

लागो जन चरणी निस्बासर दर्स पावां। तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावां। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिया। एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लईऐ। राग देव गंधारी महला पंजवा घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सधी संगे अंदन गुर मिल गाए। रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कत हूं जाए। अनक अनक भांत बहु पेखे प्रेरोम ना समसर लाए। मंदर भाग शोभ द्वारे अनहद रोण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग माणे गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन आचै। भ्रम आयो है सगल थान रे आहे पर्यो संत पाछै। रहाओ किस हम सेवी किस आराधी जो दिष्टै सो गाचै। साध संगत की सरणी परियै चरण रेन मन बांचै। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छ। आए पयो नानक गुर चरणी तो उतरी सगल दुराछ। देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे। सबहू मद निरारे रहाओ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण पर्यो संत हारे। कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारियो। दीन दयाल पए प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रत्न जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाए बिखै बंतरिया कुलै समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो। नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार। रहाओ कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार। अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार। मान मोह मेर तेर बिबरजत एहो मार्ग खंडे तार। कहो नानक तिन भव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवा कर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा। आना समसर को लागे ढूंढ रहे हम ऊंचा। रहाओ बहु बेअंत बड़ो बाह गाहरो था नहीं अगहूचा। तोल ना तुलिया मोल ना मुलिया कत पाइय मन रूचा। खोज असंखा अनक तपंथा बिन गुर नहीं पहुचा। कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा। देव गंधारी महला पंजवा मैं बहुविध पेख्यो दूजा नाही री को। खंड दीप सब पितर रव्या पूरयो सब लो। रहाओ अगन अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवै सुन सो। चार या शर्म चार ब्रन्ना मुक्त पय सेव तो। गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया दुति गए सुख हो। कहो नानक भव सागर तरिया हर निध पाई।

अजू न समझत सिख दे हारियो नीत नानक पौजल पार पर जौ गावै प्रभ के गीत एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग बिहागड़ा चौप दे महला पंजवा कर दूजा दूतन संगरिया भयंगन बसरिया अन क्यो परिया तौ मैं हर हर करिया तौ सुख सहजरिया रहाओ मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल पटरिया बिरख एकत्रिया बहु बंद है परिया थिरसाज सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नावा हर की गतने को जाने जोगी जति तपी पचहारे अर बहु लोक सियाने रहाओ छिन में राव रंक कौ करई राव रंक कर डारे रीते परे परे सख नावे जै ता को व्यवहारे अपनी माया आप सारी आपै देखन हारा नाना रूप तरे बहुरंगी सब ते रह न्यारा अगंत अपार अलख निरंजन जेह सब जग परमायो सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहे चितलायो राग बिहागड़ा शंत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम त्याई है मेरी जिंदड़िए गुरमुख नामया मोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम च भोले राम गुरमत मन ठहराई है मेरी जिंदड़िए अंत ना काहू डोले राम मन चिंदियाड़ा फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत उठड़ा मेरी जिंदड़िए मुख अमृत बहण लाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए मन सुनिया हर लिव लाए राम चिरी विछुन्ना हर प्रभ पाया गल मिलिया सह सुभाए राम जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए अनहद शब्द बजाए राम सखी सहेली मेरी आ मेरी जिंदड़िए कोई हर प्रभ आन मिलावे राम हम मन तन देवो तिस अपना मेरी जिंदड़िए हर प्रभ की हर कथा सुनावे राम गुरमुख सदा आराद हर मेरी जिंदड़िए मन चिंदियाड़ा फल पावे राम नानक भज हर शरणागति मेरी जिंदड़िए वडभागी नाम ते आवे राम कर किरपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए गुरमत नाम प्रगासे राम हाँ हर बाज उडीनिया मेरी जिंदड़िए ज्यों जल बिन कमले उदासे राम गुरपुरे मेलाया मेरी जिंदड़िए हर सज्जन हर प्रपासे राम तन तन गुरु हर दस्या मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम बिगासे राम राग बिहागड़ा महला चौथा अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़िए अमृत गुरमत पाए राम हौ मैं माया बिख है मेरी जिंदड़िए हर अमृत बिख लै जाए राम मन सुक्का हरिया होया मेरी जिंदड़िए हर हर नाम ते आए राम हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए ज्यो बालक लग दुध खीरे राम हर बिन सांत ना पाईए मेरी जिंदड़िए ज्यो चात्रक जल बिन टेरे राम सतगुर सरनी जाए पाओ मेरी जिंदड़िए गुण दसे हर प्रभ के रे राम जन नानक हर में लाया मेरी जिंदड़िए कर वाजे शब्द कनेरे राम मन मुख हो मैं विछड़े मेरी जिंदड़िए बिख बादे।

यो पंखी एक पोत आप बनाया मेरी जिंदड़िए, त्यो मनमुख सब वस काले राम, जो मोहे माया चित लाएं दे मेरी जिंदड़िए, से मनमुख मूड बिताले राम, जन त्राहे त्राहे शरणागति मेरी जिंदड़िए, गुरु नानक हर रखवाले राम, हर जानो हर लिव उबरे मेरी जिंदड़िए, तुर भाग वड्डे हर पाया राम, हर हर नाम पोत है मेरी जिंदड़िए, गुर खेवड़ सब तराया राम, हर हर पुरख दयाल है मेरी जिंदड़िए, गुर सतगुर मीठ लगाया राम, कर कृपा सुन बेनती हर हर, जन नानक नाम ते आया राम, बिहागड़ा महला चौथा, जग सुकृत कीर्त नाम है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्त हर मन तारे राम, हर हर नाम पवित है मेरी जिंदड़िए, जप हर हर नाम उधारे राम, सब किल विख पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़िए, मल गुरमुख नाम उतारे राम, वड पुन्नी हर त्याया जन नानक, हम मूर्ख मुग्ध निस्तारे राम, जो हर नाम ते आए दे मेरी जिंदड़िए, तिन्ना पंचे वसगत आए राम, अंतर नाम निद नाम है मेरी जिंदड़िए, गुर सतगुर लख लखाए राम, गुर आसा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़िए, हर मिलिया भुख सब जाए राम, तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया मेरी जिंदड़िए, जन नानक हर गुण गाए राम, हम पापी बलवंचिया मेरी जिंदड़िए, पर द्रोही ठग माया राम, वडभागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए, गुरपुरै गतमित पाया राम, गुर अमृत हर मुख चोया मेरी जिंदड़िए, फिर मरदा बहुड़ जीवाया राम, जन नानक सतगुर जो मिले मेरी जिंदड़िए, तिनके शब्दो गवाया राम, आति उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए, जित जपिया पाप गवाते राम, पतत पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए, चहो कुंडी चहो जुग जाते राम, हम मैं महल सब उत्तरी मेरी जिंदड़िए, हर अमृत हर सर नाते राम, अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए, जन नानक खिन हर राते राम। बिहागड़ा महला चौथा, हाँ बलिहारी तिन को मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम अधारो राम, गुर सदगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़िए, बिख पौजल तारन हारो राम, जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़िए, तिन संत जना जयकारो राम, नानक हर जप सुख पाया मेरी जिंदड़िए, सब दुख निवारण हारो राम, सार रसना तन तन है मेरी जिंदड़िए, गुण गावे हर प्रभ केरे राम, ते सरवण भले सो बनीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने हर तेरे राम, सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगे गुर पैरे राम, गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम च तेरे राम, ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुर देखे राम, ते हस्त पुनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जो हर जसो हर हर लेखे राम, तिस जन के पग नित पूजिए मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चलेसै राम, नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए, हर सुन हर नाम नेसै राम, धरत पताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम त्यावै राम, पौन पानी बै संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावै राम, वाण त्रैण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम ते आवै राम, नानक ते हर दर पै नाया मेरी जिंदड़िए,
जो गुरमुख भगत मन लावे राम। बिहागड़ा महला चौथा, जिन हर हर नाम ना चेते ओ मेरी जिंदड़ीए, ते मन मखमूड आने राम। जो मोहे माया चित लाएं दे मेरी जिंदड़ीए, से अंत गए पछताने राम। हर दर गए टोई ना लहन मेरी जिंदड़ीए, जो मनमुख पाप लुभाने राम। जन नानक गुरमिल उबरे मेरी जिंदड़ीए, हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलहो सतगुरु को मेरी जिंदड़ीए, जो हर हर नाम दृढ़ावे राम। हर जपद्या खेन ढिल ना की जाई मेरी जिंदड़ीए, मत के जापे साहो आवे के ना आवे राम। सा वेला सो मूर्त सा घड़ी, सो मोहत सफल है मेरी जिंदड़ीए। जित हर मेरा चित आवे राम, जन नानक नाम ते आया मेरी जिंदड़ीए, जम कंकर नेड़ ना आवे राम। हर वेख है सुने नित सब किश मेरी जिंदड़ीए, सो डरे जिन पाप कमते राम। जिस अंतर हिरदा सुध है मेरी जिंदड़ीए, तिन जन सब डर सुट कते राम। हर निरपव नाम पतीजिया मेरी जिंदड़ीए, सब चख मारन दुष्ट कुपते राम। गुरपुरा नानक सेविया मेरी जिंदड़ीए, जिन पैरी आन सब कते राम। सो ऐसा हर नित सेवी है मेरी जिंदड़ीए, जो सबदू साहेब वड्डा राम। जिनी एक मन एक आरा दिया मेरी जिंदड़ीए, तिन्ना नाही किसे दी के चड्डा राम। गुर सेवे है हर महल पाया मेरी जिंदड़ीए, चख मारन सब निंदक कंडा राम। जन नानक नाम ते आया मेरी जिंदड़ीए, तुर मस्तक हर लिख छड्डा राम। बिहागड़ा महला चौथा, सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ, तू जाने जो जिए कमाईए राम। हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़ीए, सब वेखे मन मुकराईए राम। मन मुखानो हर दूर है मेरी जिंदड़ीए, सब बिरथी काल गवाईए राम। जन नानक गुरमुख ते आया मेरी जिंदड़ीए, हर हाजर नदरी आईए राम। से भगत से सेवक मेरी जिंदड़ीए, जो प्रभ मेरे मन पाने राम। से हर दर गए पहनाया मेरी जिंदड़ीए, अहनिस साज समाने राम। तिनके संग मल उतर मेरी जिंदड़ीए, रंग राते नदर नी साने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़ीए, मिल साधु संगया गाने राम। हे रसना जप गोबिंदो मेरी जिंदड़ीए, जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़ीए, तिस मन नाम वसाए राम। जिस पेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़ीए, सो हर तानो निध पाए राम। वड़ भागी संगत मिले मेरी जिंदड़ीए, नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर रव रहे आ मेरी जिंदड़ीए, पार ब्रह्म प्रभदाता राम। ताका अंत ना पाई है मेरी जिंदड़ीए, पूरन पुरख विधाता राम। सर्व जिया प्रतपालदा मेरी जिंदड़ीए, ज्यो बालक पित माता राम। सहस सियाणप नह मिले मेरी जिंदड़ीए, जन नानक गुरमुख जाता राम। शका एक बिहागड़ा महला पंजवा, संत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर काय का चंभव देखिया मेरे लाल जीओ, जो करे सो धर्म ने आए राम। हर रंग अखाड़ा पायोन मेरे लाल जीओ, आवन जान सवाए राम। आवन ता जाना तिने किया, जिन मेदन सिर जिया। एक ना मेल सतगुर महल बुलाए, एक परम पूले फिर दिया। अंत तेरा तू है जाने, तू समय रहा समाए। सच कह नानक सुनो संतो, हर वरतै धर्म ने आए। आवो मिलो सहेली हो मेरे लाल जीओ, हर हर नाम अरा दे राम।
कर सेवा पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो। जमका मार्ग साधे राम, मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख, हर दरगह शोभा पाई है। जिनको विधाता है तरो लिखिया, तिन्ना रहन दिन लिवलाई है। हम मैं ममता मोह छुट्टा, जा संग मिले आसा दे। जन कह नानक मुक्त होवा, हर हर नाम आरा दे। कर जोड़ो संते कत्र होए मेरे लाल जियो। अबनासी पुरख पूजे हा राम, बहुविध पूजा खोजी है मेरे लाल जियो। एहो मन तन सब अर्पे हा राम, मन तन धन सब प्रभु केरा। क्या को पूछड़ावे, जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे। भाग मस्तक होए जिसकै, तिस गुर नाल सनेहा। जन कह नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजेहा। दह दिस खोज तहां फिरे मेरे लाल जियो। हर पायाड़ा कर आए राम, हर मंदिर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो। हर तिसमै रिया समाए राम, सर्वे समाना आप स्वामी। गुरमुख प्रगट होया, मिटिया देरा दुख नाठा, आम्यो आरा चोया। जहां देखा तहां स्वामी, पार ब्रह्म सब ठाए। जन कह नानक सतगुर मिलाया, हर पायाड़ा कर आए। राग बिहागड़ा महला पंजवा, अत प्रीतम मन मोहना, कट सोहना प्राण आधारा राम। सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की, अपरिया पारा राम। गोपाल दयाल गोविंद लालन, मिलो कंत निमाणिया। नैन तरसन दर्श परसन, नैन नींद रहन विहानिया। ज्ञान अंजन नाम बिंजन, पै सगल सिंगारा। नानक पयंपै संत जंपै, मेल कंत हमारा। लाख उलाहने मोहे हर जब, लगन है मिले राम। मिलन को करो अपाव, किश हमारा न चले राम। चल चित बेत्या नित प्रे बिनो, कवन विधि ना तीजी है। खान पान सिंगार बिरथे, हर कंत बिन क्यों जीजी है। आसा प्यासी रहन दिन यार, रह ना सकिया एक तले। नानक पयंपै संत दासी, तो प्रसाद मेरा पिर मिले। सेज एक प्रयो संग, दर्शना पाई है राम। अवगन मोहे अनेक, कत महल बुलाई है राम। निर्गुण निमाणी अनाथ बिनवे, मिलहो प्रभ कृपा निदे। प्रम पीत खोई है, सहज सोई है, प्रपलक पेखत नमन दे। गृह लाल आवै महल पावै, मिल संग मंगल गाई है। नानक पयंपै संत सरणी, मोहे दर्श दिखाई है। संतन कै प्रसाद, हर हर पाया राम। इश्पनी मन सांत, तप्त बुझाया राम। सफला सोजन सरहणे सुहावी, अंत मंगल रसकना। प्रगटे गोपाल गोबिंद लालन, कवन रसना गुणपना। प्रम लोभ मोह बेकार थाके, मिल सखी मंगल गाया। नानक पयंपै संत जंपै, जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा, कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे, अंधन नाम वखाणा राम। अमृत बाणी उचरा हर जस, मिठा लगे तेरा पाणा राम। कर दया मया गोपाल गोबिंद, कोय नाही तुझ बिना। समराथिया गाथिया पार पूर्ण, जियो तन तन तुम मना। मूर्ख मुग्ध अनाथ चंचल, बलहीन नीच जाना। बिनवंत नानक सरन तेरी, रख ले ओ आवन जाना। साधे सरनी पाई है हर जियो, गुण गाव है हर नीता राम। तूर भगतन की मंतन लगो, हर जियो सब पद पुनीता राम। पथता पुनीता होहे तिन संग, जिन बिदाता पाया। नाम राते जी दाते, नित दे चढ़े सवाया।
ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਹਰ ਜਪ ਜਿਨੀ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸਾਜਨ ਮੀਤਾ ਜਿਨੀ ਸਚ ਵਣੰਜਿਆ ਹਰ ਜੀਓ

एक जन एक मन राम कै रंग मातिया, लग संत चरणी पड़े सरणी, मंत ना ओ महा, बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै सही सच्चे सहा। नानक सोई सिमरिय हर जियो, जा की कल तारी राम, गुरमुख मनो न विसरै हर जियो, करता पुरख मुरारी राम। दुख रोग ना पौ ब्यापै, जिनी हर हर त्याया, संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया। वजी वधाई मन सांत आई, मिलिया पुरख्या पारी, बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी। बिहागड़ा महला पंजवां, कर दूजा एको अंकार, सतनाम गुरप्रसाद, वद सुख रह निड़िए, प्रे प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए, परसौ सदा पगा पग तूर बांछो, सदा जाचो, नाम रस बैरागनी, प्रेरंग राती सहज माती, महा दुर्मत त्यागनी। गह पुजा लीनी प्रेम पीनी, मिलन प्रीतम सच मगा, बिनवंत नानक तार कृपा रहो चरण संग लगा। मेरी सखी सहेलड़ियो, प्रभ कै चरण लगे, मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंगे, हर भगत पाईए प्रभ ते आईए, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना। बड पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण, प्रभ प्रीत हर हर मिल पगै, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जपै। हर नार सुहागणे सब रंग माणे, रांड ना बैसई प्रभ पुरख चराणे, न दुख पावै प्रभ ते आवै, तन ते वट पागिया, सुख सहज सोवै, किल बिख खोवै, नाम रस रंग जागिया। मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रे बचन मीठे पाणे, बिनवंत नानक मने छपाई, हर मिले पुरख चराणे। तित ग्रह सोहलड़े कोड नंदा, मन तन रव रहया प्रभ परमानंदा, हर कंत अनंत दयाल श्री तर, गोविंद भक्त उदारणो, प्रभ कृपा तारी हर मुरारी, पै सिंध सागर तारणो। जो सरन आवै तिस कंठ लावै, एहो बिरद स्वामी संदा, बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा। बिहागड़ा महला पंजवां, हर चरण सरोवण तै करो निवास मना, कर मज्जन हर सरे सब किल विख नास मना, कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नासे। जन्म मरण ना होए तिस कौ, कट्टै जमके फासे, मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो। बिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो, तह आनंद बिनोद सदा अनहद चुनकारो राम। मिल गावै संत जना प्रभ का जय करो राम, मिल संत गावै खसम पावै हर प्रेम रस रंग पिनिया। हर लाभ पाया आप मिटाया, मिले चिरी विछुनिया, गह पुजा लीने दया कीने, प्रभ एक अगम्या पारो, बिनवंत नानक सदा निर्मलो, सच शब्द रुण चुनकारो। सुन वड भागिया हरे अमृत बाणी राम, जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमाणी राम। अकथ कहानी तिन्नी जानी, जसिया प्रभ कृपा करे, अमृतिया फिर ना मुआ, कल कले साधुख हरे। हर सरन पाई तज ना जाई, प्रभ प्रीत मंतन पाणी, बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी। मन तन गलत पए किश कहन ना जाई राम, जिसते उपजियाड़ा तिन लिया समाई राम। मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती, उदक उदक समाया, जल थल महियल एक रविया, न दूजा दृष्टाया।
ਬਾਣ ਤ੍ਰੈਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪੂਰ ਪੂਰਨ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਆਪ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਇਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣਿਆ ਧਾਰੋ ਰਾਮ, ਤਾਣ ਤਨ ਖੀਨ ਪਿਆ ਬਿਨ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੇ ਕਰ ਦਇਆ ਲੜ ਲਾਏ ਲੀਜੀਐ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜਪੋ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਜੀਜੀਐ, ਸਮਰੱਥ ਪੂਰਨ

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरनाराम तपत न कतै बुझै बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना अमै सरोवर पियो, अमै सरोवरो पियो हर हर नामा राम, संत संग मिले जप पूर्ण कामा राम, सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरै, आनंद अंदन सदा साचा, सर्वगुण जगदीशर। अगणत ऊच अपार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकि महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सदमना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवां शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया, तेरा कोई ना बेली राम, कोई ना बेली होए तेरा, सदा पछोता वहे, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से देह आवे। तार वार विशुन्ने न पाप जुड़ते, जम्बा गौनिया केली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूक करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम, किरत कमाणे दुख सहो प्राणी, अनक जोन परमाया महामोहनी संग राता, रतन जन्म गवाया एक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी, बीच ना कोई करे अकिरत कान विछड़

गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया तप तो थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा बिनवंत नानक कर दे राखो गोबिंद दीन दयारा सो दिन सफल गणया हर प्रभु मिलाया राम सब सुख प्रगटया दुख दूर पराया राम सुख सहज आनंद विनोद सदी गुण गोपाल नित गाई भज साध संगे मिले रंगे बहुड़ जोन ना ताई है गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया बिनवंत नानक आप मिलया बहुड़ कतू ना जाया बिहागड़ा महला पंजवां संत सुनो बिनंतिया स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे तू समर्थ सदा हम दीन पिखारी राम माया मोहे मगन कड लिहो मुरारी राम लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने कार अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोधिया पार करते मोहे नीच कछु ना जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी नानक शरण समर्थ स्वामी पैज रख मोरी जां ते विछड़िया तिन्हां मिलाया राम साधु संग में हर गुण गाया राम गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण मैं प्रगट पए सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया नानक दर्स पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया बिहागड़ा महला पंजवां संत बोल सो तरमीड़िया मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया माया ब्योहारी राम संग तेरा कश ना चले बिना गोविंद नामा देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी राजन क्यों सोया तू नींद भरे जागत कत नाही राम माया झूठ रुदन केते बिललाही राम बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कटकट आही बिनवंत नानक जिन साध संगम से

हर चंद दौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हां हां करत ना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने। बिनवंत नानक बिन नाम हर के त्या पछताने। तार अनुग्रह अपना कर लीना राम। पूजा गह काढ लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले। महाधर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले। रसना अराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना। नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्व गुण परबीना। बिहागड़े की वार महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला तीजा। गुरसेवा ते सुख पाई है होर थे सुख ना पाल। गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिना कौ मिलै जिन हर वेखै नजर निहाल। महला तीजा सिफत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए। सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए। नानक मनमुख जगत तनहीन है अगै भुखा के खाए। पौड़ी

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाह हो हर सब नाते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जगजीता, जगजीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है सहजे होए सो होए, गुरमत मत अचल है चलाए न सके कोए, भगता का हर अंगीकार करे कार्ज सुहावा होए, मन मुख मूलों भुलाए अन विच लब लोभ अंकार, झगड़ा कर दिया अंदन गुदरे शब्द न करे विचार, शुद्ध मत करता हिरले बोलन सब विकार, दिता कितै ना संतोखिया न अंतर तृष्णा बहुत अग्ञान आधार, नानक मनमुखा नालों टुटिया भली जिन्ना माया मोहे प्यार। महला तीजा। तिन पौ संसार क्या करे जिन सतगुर सिर करतार, तुर तिन की पैज रखदा आपे रखण हार, मिल प्रीतम सुख पाया सच्चा शब्द विचार, नानक सुखदाता सेवया आपे परखण हार। पौड़ी। जी जंत सब तेरिया तू सब नारास, जिसनो तू देहे तिस सब किश मिले, कोई होर शरीक नाही तुद पास, तू एको दाता सब सदा हर पै अरदास, जिस दी तुद पावे तिस दी तू मन लह, सो जन साबास सब तेरा चोज वरतदा, दुख सुख तुद पास। श्लोक महला तीजा। गुरमुख सच्चे पावंदे दर सच्चे सच्चियार, साजन मन आनंद है गुर का शब्द विचार, अंतर शब्द वसाया दुख कटिया चानन किया करतार, नानक रखन हारा रखसी अपनी कृपा तार। महला तीजा। गुर की सेवा चाकरी पै रचकार कमाए, जिहा सेवै ते हो होवै जे चलै तसर जाए, नानक सब किश आप है अवरना दूजी जाए। पौड़ी। तेरी वड्याई तू है जानदा, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जेवड़ होर शरीक होवै ता आखी है, तू जेवड़ तू है होई, जिन तू सेव्या तिन सुख पाया, होर तिस जी रिस करे क्या कोई, तू पनन करन समर्थ दातार है, तुद अगै मंगण हाथ जोड़ खली सब होई, तुद जेवड़ दा तार मैं कोई नजर ना आवई, तुद सबसे नो दान दिता खंडी वरपंडी पाताली पुरी सब लोई। श्लोक महला तीजा। मन पर दीत न आईया सहज न लगो पाओ, शब्द साध नाम पायो, मन अठ क्या गुण गाए, नान क्या आया सो प्रवान है, जे गुरमुख सच समाए। महला तीजा। अपना अपना पछाण है मूड़ा, अवरा

का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तै अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जा सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदों क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्द उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलायन आपे कृपा तार। महला तीजा कहे।

संध्या नानक संध्या करे मन मुखी जियो ना टिकै मर जमै होए खुवार महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए नानक सतगुर मिलया मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकर दास भया आपे दास अठ वर्ण उपाया नो आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बक्से करे दया आपा भुल ना भुले कभी सब सच तपावस सच थया आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भ्रम गया श्लोक महला पंजवां हर नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड़ै खेह जिन कीती तसै ना जानी नानक फेटा लूनी देहे महला पंजवां घट वसै चरणार बिंद रसना जपै गोपाल नानक सो प्रभ सिमरिया तिस देही कौपाल पौड़ी आपे आपे अड़सठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वर्तै स्वामी आप जपाए नाम आप दयाल हुए पौखंडनो आप करै सबदान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सद ही दरगै पाए मान जिस दी पैज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यो चेतना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिराए एहनस जलत बिहाए जो तिस भावे सो थीऐ कहना किछु ना जाए महला तीजा सतगुरु फरमाया कारिए करे हो गुरु द्वारे होए कै सब समाले हो साहिब सदा हजूर है परमे के छौड़ कट कै अंतर जो तरे हो हर का नाम अमृत है दारू ए लाए हो सतगुर का पाणा चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक हथ है सुख है अंदर रख सी अगे हर स्यों केल करे हो पौड़ी आपे पार अठार बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचै आपे ही मुए पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे दिवाए आपे साहेब आपे है राखा आपे रहा सुमाए जन नानक वड्याई आखे हर करते की जिसनो तिल ना तमाए श्लोक महला तीजा मानस परिया आणिया मानस परिया आए जित पीतै मत दूर होए बरल पवै विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जित पीतै खसम विसरै।

आपे मोनी वर्तदा आपे कथा ज्ञाना कौड़ा किसे न लगई सब ना ही पहना उस्तत बरना सकी है ससद कुरबाना। श्लोक महला पहला। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार पुत जनूरा ती जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। महला पहला। हिंदू मूले पूले अखुट्टी जाही नारद कया से पूज कराही अंधे गुंगे अंधे अंधार पाथर ले पूजे मुद गवार। ओहे जे आप डुबे तुम कहां तरन हार पौड़ी सब के हो तेरा वस है तुम सच्चा साहो भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो। अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहो सब पदार्थ पाईयन सिमरन सच लाहो संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगमागा हो। श्लोक महला तीजा। सब किश हुक्मे आमदा सब किश हुक्मे जाए जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बुझै जिसनो कृपा करे रजाए। महला तीजा। सो जोगी जुग सो पाए जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सब को वस है भेखी जोग ना होए नानक ऐसा विरला को जोगी जिसकट प्रगट होए।

आए ना सका तुझकर प्यारे भेज ना सका कोए। आओ सुभागी निंदड़िए मत सहो देखा सोए। तैं साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजै। सीस वड्डे कर बैसन दीजै विणसर सेव करीजै। क्यों ना मरीजै जी आला ना दीजै। जां सहो पया विडाणा वढांस महला तीजा। कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद। मन मैला सब किश मैला तन तोतै मन हच्छा ना होए। एह जगत परम भुलाया विरला बुझै कोए। जप मन मेरे तू एको नाम सतगुर दिया मोको एहो निधान रहाओ। सिद्धा के आसन जे सिखै इंद्री वस कर कमाए। मन की मैल ना उतरै हो मैं मैल ना जाए। इस मन का होर संजम को नाही मिन सतगुर की शरणाए। सतगुर मिले उल्टी पई कहना किशु ना जाए। भणत नानक सतगुर को मिल दो मरै। गुर कै शब्द फिर जीवै कोए। ममता की मल उतरै इहो मन हच्छा होए। वढांस महला तीजा। नदरी सतगुर सेवी है नदरी सेवा होए। नदरी एहो मन वस आवै नदरी मन निर्मल होए। मेरे मन चेत सच्चा सोए एको चेतै ता सुख पावै। फिर दुख न मूले होए रहाओ। नदरी मर कै जीवी है नदरी शब्द वसै मन आए। नदरी हुक्म बुझी है हुक्मे रह समाए। जिन जेवा हर रस ना चखियो सा जेवा जल जाओ। अन रस सादे लग रही दुख पाया दूजे पाए। सबना नदर एक है आपे फर्क करे। नानक सतगुर मिले फल पाया नाम वढाई दे। वढांस महला तीजा। माया मोह गुबार है गुरबिन ज्ञान ना होई। शब्द लगे तन बुझया दूजे परजवे गोई। मन मेरे गुरमत करनी सार सदा सदा हर प्रभ रवै ता पावै मुख द्वार रहाओ। गुणा का निदान एक है आपे देता को पाए। बिना मैं सब विछड़ी गुर कै शब्द मिलाए। मेरी मेरी कर दे कट गए इतना हथ के हो ना आया। सतगुर मिलै सच मिलै सच नाम समाया। आसा मनसा एहो शरीर है अंतर जो जगाए। नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए। वढांस महला तीजा। सुहागणी सदा मुखी उजला गुर कै सहज सुभाए।

गुर का शब्द कमाए। हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विचों हमें जाए रहाओ। हमें सब शरीर है, हमें उपत होए, हमें वड्डा गुबार है। हमें विच बुझ ना सके कोए, हमें विच भगत ना हो वही। हुक्म ना बुझिया जाए, हमें विच जियो बंद है, नाम वसै मन आए। नानक सतगुर मिले हमें गई ता सच वसया मन आए। सच कमावे सच रहे, सच्चे सेव समाए। वडहंस महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेज एक एको प्रभ ठाकर, गुरमुख हर रावे सुख सागर। मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा, गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम। हाँ वार वार अपने गुरु कौ जासा रहाओ। मैं अवगण भरपूर शरीरे, हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया, से मैं गुण नाही। हाँ क्यों मिला मेरी माया, हाँ कर कर थाका उपाप बहुतेरे। नानक गरीब राखो हर मेरे। वढ़ंस महला चौथा, मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी। हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी, हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयानी। जो पिर भावे सा सुहागण, साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ। मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा, तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चित ना आवा। जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण, से मैं गुण नाही। हाँ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा।

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वरदाता अंतर जामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उरतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर

रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जात कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

जह चित आवै सो थान सुहावा, जित वेला विसरै ता लागै हवा। तेरे जी तू सधी साथी, संसार सागर ते कढ़ दे हाथी। आवन जाना तुम ही किया, जिस तू राखै तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब।

पूरे। जे सौ खेल खिलाइए बालक रह ना सके बिन खीरे। मेरा अंतर पुखना उतरे अमाली जे सौ भोजन मैं नीरे। मेरा मंत्र प्रेम परम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई मैं मेलो मित्र सुखदाता। ओ जी की मेरी सब बेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हाँ एक खेन तिस बिन रह ना सका ज्यो चात्रक जल कहो बिललाता। हाँ क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण कहो रख लेता। हाँ पही उड़ीनी कंत कहो अमाली सो पिर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे बिन पिर कितए ना लेखा। एहो कापड़ ताना सुखा वही कर ना सको हों वेसा। जिनी सखी लाल रावया प्यारा तेन आ गए हम आदेसा। मैं सब सिंगार बनाया अमाली बिन पिर काम न आए। जा सह बात न पुछिया अमाली ता बिरथा जो मन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली जिन सौ रिया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली तिनके तोमा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया प्रभ दूरे। जा मिलिया पूरा सतगुरु अमाली ता आसा मनसा सा पूरे। मैं सर्व सुखा सुख पाया अमाली फिर सर्व रहा पर पूरे। जन नानक हर रंग माणिया अमाली गुर सतगुर कह लग पैरे। वडहंस महला तीजा अष्टपदियां एको अंकार सतगुर प्रसाद। सच्ची बाणी सच तुहन सच शब्द विचारा अंधन सच सलाहना तन तन वडपाग हमारा। मन मेरे सचे ना मिटो बल जाओ दासन दासा होए रहै ता पावे सच्चा नाम रहाओ। जेवा सच्ची सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए। सच खेती सच बीजना साचा वापारा आंदन लाहा सच नाम तन भगत भरे पंडारा। सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनों बख्से तिस मिले। मैली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जोनी मूल ना पाहे। गुरमुख दर साचा सचिया रह साचे माए समाए। अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए। सच्चे थान सच सलाहना सदगुर बलिहार जाओ। सच वेला मूर्त सच जित सच्चे नाल प्यार। सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार। नानक सच्चा मिले ता मिले आपे ले मिलाए। ज्यो पावे त्यों रखसी आपे करे रजाए। वडहंस महला तीजा मनुआ दे दिस्तामदा ओ कैसे हर गुण गावे। इंद्री व्याप रही अधकाई काम क्रोध नित संतावे। वाह वाह सहजे गुण रवीजे राम नाम इस युग में दुलभ है। गुरमत हर रस पीजे रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे। गुरमति आपे आप पछाणे ता निकर वासा पावे। ए मन मेरे सदा रंगराते सदा हर के गुण गाओ। हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ। हम नीच से उत्तम पहे हर की सरनाई पाथर डुबदा काढ लिया साची वड़ियाई। बिकसे अमृत पहे गुरमत बुद्ध पाई। अको परमल पहे अंतर वासना वसाई। मानस जन्म दुलंब है जग में खटिया आए। पूरे भाग सतगुर मिले हर नाम ते आए। मनमुख पूले बिख लगे अहला जन्म गवाया। हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया। मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया। नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुक्त तिन पाया। वडहंस महला

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझे कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप मजावना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आखिया आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना साबियो पाईया ने आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होवा तुर कदे सब उपाईया ने आप आपे नजर करे वडहंस महला पहला करहो दया तेरा नाम वखाना सब उपाईया आप आपे सरबे समाना सरबे समाना आप तू है उपाय तंदे लाईया एक तुझी की है राजे एक ना पिख पवाईया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत परम पुलाना सदा दया करो अपनी ता नाम खाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाना गावन सुर नर सुगण सुजाना सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेता नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेता मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा सौ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जामना एक पछाणी वक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावै राज तेरा कबो ना जावै राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावै चाकर ता तेरा सोए होवै जोए सह समावै दुश्मन ता दुख ना लगै मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावै जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करे स्वामी तेरे द्वारे जपै ता

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सिमर लिया माण सदा रंग राती सहजे माती अंधन नाम वखाणे कामन वड भागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर के पाए हर वर रावे सदा मुइये निकर वासा पाए निकर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी परली आला जुबन बाला अंधन कंध सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब

मनमुख खेती वणज कर थाके, तृष्णा भुख न जाए। नानक नाम बीज मन अंतर, सच्चा सब सुवाए। हर व्यापार से जन लागे, जिन्ना मस्तक मणि वड भागो राम। गुरमति मन निज कर वसिया, सच्चा शब्द बैरागो राम। मुख मस्तक पागो सच बैरागो, साच रते विचारी। नाम बिना सब जग बौराना, सबदे हमें मारी। सच्चा शब्द लाग मत उपजै, गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिलै पौ पंजन, हर रावे मस्तक पागो। खेती वणज सब हुक्म है, हुक्मे मन वढाई राम। गुरमति हुक्म बुझिऐ, हुक्मे मिल मिलाई राम। हुक्म मिलाई सहज समाई, गुर का शब्द अपारा। सच्ची वढाई गुर ते पाई, सच सवरन हारा। पौ पंजन पाया आप गवाया, गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन, अगम्या गोचर हुक्मे रहा समाई। वढांस महला तीजा, मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो। अपने घर तू सुख वसै, पोहे ना सकै जमकाल जियो। काल जाल जम जोहे ना सकै, सचै शब्द लिवलाए। सदा सच रता मन निर्मल, आवन जान रहाए। दूजे पाए परम विगुति, मनमुख जोही जमकाल। कह नानक सुन मन मेरे, तू सदा सच संभाल। मन मेरे आ अंतर तेरा निदान है, बाहर वस्त ना पाल। जो पावे सो पुंच तू, गुरमुख नदर निहाल।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे व्यापारा सतगुर सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया।

शरण आई राम, अरदास करी गुर पूरे आगे। रख ले वो देहो बढ़ाई राम, रख ले वो शरण आई हर नाम बढ़ाई। तो जेवड़े अवरना दाता, सेवा लागे सेवड़ भागे, जुजगु एको जाता। जत सत संयम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवै हर शरणाई। जो हर मत दे साई उपजै, होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम, आपे देह बुझाई अवरना भाई। गुरमुख हर चाखिया, दर सचै सदा है साचा। सचै शब्द सुपाखिया, घर मैं निज कर पाया सतगुर दे वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पायन, मत प्रवान सच साई। वडांस महला चौथा शंत, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम। हर हर हर हर नाम मेरा मन वसाई राम। हर हर नाम मेरा मन वसाई, सब दुख विसार नहारा। वडभागी गुर दर्शन पाया, तन तन सतगुरु हमारा। उठत बैठत सतगुर सेवो, जित सेव ऐ सांत पाई। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई। हौ जीवा हौ जीवा सतगुर देख सर से राम। हर नाम दृढ़ाए, जप हर हर नाम विगसे राम। जप हर हर नाम कमल परगासे, हर नाम नवंग निद पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सह समाध लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसे। हौ जीवा सतगुर देख सर से। कोई आन मिलावे, मेरा सतगुर पूरा राम। हौ मन तन देवा, तिस काट शरीर राम। हौ मन तन काट काट तिस देई, जो सतगुर बचन सुनाए। मेरा मन बैराग भया बैरागी, मिल गुर दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो सुखदाते, देहो सतगुर चरण हम धूरा। कोई आन मिलावे, मेरा सतगुर पूरा। गुर जेवड़ दाता, मैं अवर ना कोई राम। हर दानो हर दान देवे, हर पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम जिनी आराध्या, तिनका दुख परम पौ भागा। सेवक पाए मिले वडभागी, जिन गुर चरनी मन लागा। कहो नानक हरिया मिलाए, मिल सतगुर पुरख सुख होई। गुर जेवड़ दाता, मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा, हाँ गुरबिन खरी निमाणी राम। जग जीवन दाता, गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम ते आया। जिस कारण हाँ टूंडेंदी, सो सज्जन हर कर पाया। एक दृढ़ हर एको जाता, हर आत्म राम पछाणी। हाँ गुरबिन खरी निमाणी। जिन सतगुर पाया, तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम। तिन चरण सिरेवे, हम लागे तिन कै पाए राम। हर हर चरण सिरेवे तिन के, जिन सतगुर पुरख प्रभ ते आया। तू वडदाता अंतर जामी, मेरी सरदा पूए हर राया। गुर सिख मेल मेरी सरदा पूरी, आंदन राम गुण गाए। जिन सतगुर पाया, तिन हर प्रभ मेल मिलाए। हौ वारी गुरसिख मीत प्यारे राम। हर नाम सुनाए, मेरा प्रीतम नामा दारू राम। हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, तिस बिन कड़ी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हौ वारी गुरसिख मीत प्यारे।
हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम। हरे आपे मेले करे सोई राम। जो हर प्रभु आवे सोई होवे अवर न करना जाई। बहुत सियाणप लया ना जाई कर था के सब चतराई। गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिने अवर न कोई। हरे आपे पुरख निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा। हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम। तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञाना देर बिनासे। सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरासे। जिन कौ हर प्रभु कृपा तारी ते सतगुर सेवा लाया। हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया। मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रह न जाई राम। हर नाम देवे मेरा अंत सिखाई राम। हर हर नाम मेरा अंत सिखाई गुर सतगुर नाम दृढ़ाया। जिथे पुत्र कलत्र कोई बेली नाही तिथे हर हर नाम छड़ाया। तन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल हर

हम चात्रक दीन हर पास बेनंती वड़हंस महला चौथा। हर कृपा कर सतगुर मिल सुदाता राम। हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया। पाए लगे नित करे बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता। हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम साबिर से हो मैं पापा राम। जप हर नाम लथे अड़े जगता पराम। हर हर नाम जिनी आराध्या तिनके दुख पाप निवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना जम कंकर मार बेदारे। हर हर हर प्रभ कृपा तारी सुखदाते दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम सब बिनसे हम मैं पापा। जप हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया अरुत पय शरीरा। अंदन सह समाध हर लागी हर जपया गैर गंभीरा। जात नाम जिनते आया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर नाम मेरे मन पाया। हर

तू दुख पंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे। हर तारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला।

तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो, छोड़ो वेस पेख चतराई, दुबदा एहो फल नाही जियो, मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै, कारे अमृत कट माही जियो, रहाओ अवगुण छोड़ गुणा को धावो, कर अवगुण पछताही जियो, सर अफसर की सार न जाने, फिर की चबुड़ाही जियो, अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर नामो काही जियो, निर्मल नाम जपो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो, पर हर लोभ निंदा कूड त्यागो, सच गुर बचनी फल पाही जियो, ज्यों पावै त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो, सोरठ महला पहला पंचपदे, अपना घर मुस्त राख ना सके, की पर कर जोहन लागा, घर दर राखै जे रस चाखै, जो गुरमुख सेवक लागा, मन रे समझ कवन मत लागा, नाम विसार अनरस लोबाने, फिर पछताहे अभागा, रहाओ आवत कौ हरख जात कौ रोवै, एहो दुख सुख नाले लागा, आपे दुख सुख भोग भोगावै, गुरमुख सो अनुरागा, हर रसी उपरे अवर क्या कही है, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहत जिन एहो रस खोया, जा

बिन गुर प्रीत ना उपजै भाई, मनमुख दूजै पाए, तोह कुटै मनमुख कर्म करै भाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै ना मन रव्या भाई, साची प्रीत प्यार, सदा हर के गुण रवै भाई, गुर कै हित अपार। आया सो प्रमाण है भाई, जे गुर सेवा चित लाए, नानक नाम हर पाई भाई, गुर सबदी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, तिही गुणी त्रिपवन व्यापिया पाई, गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छुटिया पाई, पूछो ज्ञानिया जाए। मन रे त्रै गुण छोड़, चौथे चित लाए, हर जियो तेरे मन वसै भाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजै भाई, नाए विसरिया मर जाए, अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे भाई, पवजल पार उतार, जग में लाहा हर नाम है भाई, हृदय रखिया उतार। गुर सरनाई उबरे भाई, राम नाम लिव लाए, नानक नाम बेड़ा नाव तुलहड़ा भाई, जित लग पार जन पाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया, मरजन मैं रोवै ताही। प्राणी सतगुर सेव सुख पाए, सतगुर सेवै ता सुख पावै, नाहे ता जाहेगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै, हर रा साधना आया, संध्या तर्पण करै गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सोवट भागी, जिसनो वाप मिलाए, हर रस पी जन सदा तृप्ता से, विचों वाप गवाए। एहो जग अंदा सब अंध कमावै, बिन गुर मग ना पाए, नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै, करै अंदर सच पाए। सोरठ महला तीजा बिन सतगुर से

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सहिष्मानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा के बिख कटणु हारा। शब्द मराओ फिर जीवो सद ही ता फिर मरण ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक ना वरते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजै। गत मातो तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखियन दा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन सरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम सुख होई। त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करै सो होई। नानक राम नाम निस्तारा सबदे हम मैं खोई। सोरठ

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हम मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरै बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी ने त्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरै सूझस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगै। जह कीर्तन तेरा साधु गावै तह मेरा मन लागै। सोरठ महला पंजवा। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्ब कुशल तब थिया। संतन बिनो अवर ना दाता बिया। जो जो शरण परे साधु की सो पार गरामी किया रहाओ। कोट प्राद मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संगवट भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी।

नीचे सोधना होइए काहूं जतना ओड़क को ना पहुंचे मेरे मन साध सरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रही फिर आवत बारो बारा रहाओ ओह जो परम पुलावा कहियत तिन मैं उर्जो सगल संसार।

जेह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जेह नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गरने जेह गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया जेह प्रभु बिसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मगन चरनारा सोरठ महल।

हर जन को ही सुहावे, पेख निकट कर सेवा सतगुरु, हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ। अमलन स्यों अमली लपटायो, पूमन पूम प्यारी, खीर संग बार कह लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या मैं विद्यंसी रचिया, नैन देख सुख पावै, जैसे रसना साध लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गावै। जैसी पूख तैसी का पूरक, सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलिया अंतर जामी। सोरठ महला पंजवां, हम मैले तुम यूजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर देसा रहाओ। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेरवाना। तुम करो भला हम पलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम एह हवाला, राख संतन कै पाछे। सोरठ महला पंजवां, कर दूजा। मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे, तह तुम रखन हारे, पावक सागर अथा

कीते कहो मेरे सम्मान करनहार तरन जाने, तू दाता मांगन कहो सगली दान देहे प्रभ पान। खिन मैं अवर खिन मैं अवरा, अचरज चलत तुम्हारे, रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीर, ऊंचो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद भया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बने आई, पूर्व लिखिया पाई, एहो मन तेरा पाई रहाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। संतन मौका पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहां करै गो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भय सुख पाया, संतन कह प्रसादे, कहो नानक हर स्यो मन मानिया, रंग रते बिस्मादे। सोरठ महला पंजवा, जेती समग

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर्विद जाने ताकि कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृत कौ पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पय स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ताकी कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा। मन बाइथ

जाय अपने सदगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम पागा। कहो नानक ताके पूर करमा जाका गुर चरणी मन लागा। सोरठ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाई है। पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याई है। सिमरो हर हर नाम परानी बिनसै काची देह अज्ञानी रहाओ। मृग तृष्णा यार सुपन मनोरथ ताकि कछ ना वडाई। राम भजन बिन कामना आवस संग न काहूं जाई। हाँ हाँ करत बिहाय अवरदा जी को कामना कीना। तावत तावत नह त्रिपतासिया राम नाम नहीं चीना। साध बेकार बिखै रस मातो असंख खते कर फेरे। नानक की प्रपाहे बिनंती काटो अवगुण मेरे। सोरठ महला पंजवा गुण गावो पूर्ण अबनासी काम क्रोध बिख जारे। महा बिखमो यगन को सागर साधु संग उदारे। पूरे गुर मेट्यो परमान देरा भज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ। हर हर नाम निधान रस पिया मंतन रहे अगाई। जत कत पूर रहे हो परमेश्वर कत आवै कत जाई। जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला। नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकि पूर्ण काला। काल कलेस मिटे दुख सगले काटी जमकी फासा। कहो नानक प्रभ कृपा धारी मंतन पय बिगासा। सोरठ महला पंजवा करण करावण हार प्रभ दाता। पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला। सो प्रभ अंतर जामी मेरा गुरु होवा आप सहाई। सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहाओ। गुर की शरण पए पै नासे साची दरगह माने। गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने। जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी। सद बलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूर्ण पै सवारी। गोष्ट ज्ञान

जन नानक कत ना तावो सोरठ महला पंजवा जा कै सिमरण सब कछ पाई है बिरथी काल ना जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचो जो समय रहा समाई हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग मिल नाम ते आवो पूर्ण हो वै काला रहाओ सार संभालै नित प्रतपालै प्रेम सहित गल लावै कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै सोरठ महला पंजवा अबनासी जियन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाई है बाहुड़ दुख ना होई रहाओ वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की तूर नानक दास बंश है जिन हर नाम हृदय परोई सोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम विचारै

जी जंत प्रभ सगले उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वड़ियाई नानक सदबलिहारे। सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलश विनोद आनंद सुख माणो। खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोयथ। चढ़ लंगो बिक संसार रहाओ पय कृपाल पूर्ण अविनाशी आपै कीनी सार। पेख पेख नानक बिकसानो नानक नाही सुमार सोरठ महला पंजवा। गुरपुरै अपनी कल तारी सब घट उपजी दया आपे मिल वडाई कीनी कुशल खेम सब भया। सतगुर पूरा मेरे नाल पार।

होई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन देह सुखाली रहाओ। पत ते उदाहरणो सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा, बख्श लए सब सच्चा साहेब, सुन नानक की अरदासा। सोरठ महला पंजवा, बख्शिया पार ब्रह्म परमेसर, सगले रोग बेदारे, गुरपूरे की सरनी उबरे, कार्य सगल सवारे। हर जन सिमरिया नाम आधार, तापो तारिया सतगुर पूरै, अपनी कृपा तार रहाओ। सदा आनंद करह मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर राखिया, वड्डी वड्याई नानक करते की, साच शब्द सतपाखिया। सोरठ महला पंजवा, पै कृपाल स्वामी मेरे, तित साचा दरबार, सतगुर ताप गवाया पाई, ठांड पई संसार। अपने जी जंत आपे राखे, जमै की ओ हटतार, हर के चरण हृदय उतार। सदा सदा प्रभ सिमरिया पाई, दुख किल बिख काटन हार रहाओ। तिसकी सरनी उबरै पाई, जन रचिया सब कोए, करण कारण समर्थ सो पाई, सच्चै सच्ची सोए। नानक प्रभु त्याई है पाई, मन तन शीतल होए, सोरठ महला पंजवा।

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ अवतराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया। होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभु त्याई है हर मंगल नानक गाई है। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा। पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी, हर की प्रेम भगत मन लीना। नित बाजे अनहत बीना रहाओ, हर चरण की ओट सतानी। सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया, हर रसक रसक गुण गाया। प्रभ काटिया जम का फासा, मन पूर्ण होई आसा। जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे। निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा। ठांड पाई करतारे ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरा है राखी सरण सचे की ताकी। परमेसर आप हो रखवाला, सांत सहज सुखन मैं उपजे मन हो।

मिल साधु दुर्मत होए पद तपुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाईए साध संग मिल त्याईए मन बाइत फल पाए गुर पूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर देश सिधायो हुण नहीं संदेसरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्ब गुणा सुखदायो मंदर चरक पंथ निहारो नै नीर भर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन पेखे दूर आयो पयो कृपाल सर्ब को ठाकरो सगरो दुख मिटायो कहो नानक हो मैं पीत गुर खोई तो दयार बीठ लो पायो सब रहो अंदेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मिलायो सर्ब गुणा निदरायो रहाओ दूजा सोरठ महला पंजवां गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी नाम पर्यो भगत गोविंद का।

जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावै, हरे अंतर जामी सब जाणै ता किस पै आख सुनाइयै। कहना कथन ना पीजै गोविंद हर भावै पैज रखाइयै, अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है। होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बेनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा, दुख कले सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले संठे। जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा, जा पौजल पार उतारा रहाओ।

नानक नाम ते आया आद पुरख प्रपाया सोरठ महला पंजवा जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दै वसाया सुख सागर गुर पाया तां सही सा सगल मिटाया हर के नाम की वड्याई आठ पहर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहाओ प्रभ किया कथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुर पूरे ते जानी सोरठ महला पंजवा आगे सुख गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्बनदान सुख पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सतगुर की वड्याई मन इच्छे फल पा

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवां, ऐथै उथै रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुभाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरैण सा सा सुमाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरणाई, सोरठ महला पंजवां, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण

अब है आठ पहरो हर का जस रमणा बखैठ गौरी लाथी संग मिलाए लिया मेरा करता है संत साध पए साथी कर कहली ने सर्बस दीने आप मिलाया कहो नानक सर्व थोक पूर्ण पूरा सतगुर पाया सोरठ महला पंजवा गरीबी गदा हमारी खन्ना सगले नशारी इस आगे को ना टिके बेकारी गुरपूरे एह गल सारी हर हर नाम संतन की ओटा जो सिमरै तिसकी गत होवे उधरै सगले कोटा रहाओ संत संग जस गाया एह पूर्ण हर तन पाया कहो नानक आ मिटाया सब पार ब्रह्म नदरी आया सोरठ महला पंजवा गुरपूरै पूरी कीनी बगस अपनी कर दीनी नित्यानंद सुख पाया थाव सगले सुखी वसाया हर की भगत फल दाती गुरपूरै कृपा कर दीनी विरलै किन्ही जाती रहाओ गुरबाणी गावो पाई गुरबाणी गावै पाई ओ सफल सदा सुखदाई नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया सोरठ महला पंजवा गुरपूरा आरा दे कारज सगले सादे सगल मनोरथ पूरे बाजे अनहद तूरे संतो राम जपत सुख पाया संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया रहाओ गुरपूरे की बाणी पार ब्रह्मन पाणी नानक दास बखाणी निर्मल कथ कहानी सोरठ महला पंजवा भूखे खावत ला भूखे खावत लाज ना आवै त्यों हर जन हर गुण गावै अपने काज को क्यों अलकाई है जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल सदा सदा सुख पाई है रहाओ ज्यों कामी काम लुभावै त्यों हर दास हर जस पावै ज्यों माता बाल लपटावै त्यों ज्ञानी नाम कमावै गुरपूरे ते पावै जन नानक नाम ते आवै सोरठ महला पंजवा सुख सांद घर आया निंद कै मुखशाया पूरे गुर पहराया बिनसे दुख सवाया संतो साचे की वड़ियाई जिन अचरज सो बनाई रहाओ बोले साहेब कै पहाणे दास बाणी ब्रह्म वखाणे नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोरठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय ते आए कर सही सलामत आए संतोख भया संसारे गुरपूरै लै तारे संतो प्रभ मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत न गणई राखै बाल गोपाला रहाओ हर नाम हृदय और तारे तन सबे थोक सवारे गुरपूरै तुस दिया फिर नानक दुख ना थिया सोरठ महला पंजवा हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई गुरपूरे की वड़ियाई ता की कीमत कही ना जाई हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम जिसनो बख्श लह मेरे प्यारे सो जस तेरा गावै रहाओ तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ शरण आई मुख निंदक कै शाई सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेसर बणत बनाई फिर डोलत कतहू नाही साचे साहेब स्यो मन मान्या हर सर्ब निरंतर जान्या रहाओ सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वड़ियाई नित नानक नाम ते आई सोरठ महला पंजवा
ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰਾ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰਾ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਖੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰੇ ਸਗਲੇ, ਦਾਸ ਕਉ

प्रभ सगले थान वसाए सुख सांझ फिर आए नानक प्रभ पहरा नानक प्रभ शरण आए जन सगले रोग मिटाए सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुरु ताकी सरणी पाई है दर्शन पेड़त होत आनंदा दुख गया हर गाई है हर रस पीवो पाई नाम जपो नामो आराधो गुरपुरे की सरनाई रहाओ तिसै प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूर्ण पाई नानकी बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई सोरठ महला पंजवा करण करावन हर अंतर जामी जन अपने की रखै जय जयकार होत जग पीतर शब्द गुरु रस चाखै।

आओ सुनी पुकार सम्रथ स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पारे उतारे।

आओ बैठ आदर सब थाई ऊ न कतहू बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ अर गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोलै मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जाते अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा।

मुकत पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन को ताया, अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया। ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो, नहीं उपजियो कछ ज्ञाना, कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तै हारे हो, अस्थिर मत नहीं पाई, मानस देह पाए पद हर भज, नानक बात बताई। सोरठ महला नावा, मन रे प्रभ की शरण बिचारो, जय सिमरत गण काशी उदरी, ताको जस उर तारो रहाओ। अटल भयो त्रुजा कै सिमरन, अर निरपै पद पाया, दुख हरता ए बिद को स्वामी, तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निद, गज ग्रह ते छूटा, महिमा नाम कहां लो बरना, राम कहत बंधन ते टूटा। अजा मल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन, तैं पी उतरै पारा।

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यन कौतावत कह बिदरो कौता है रहाओ। वेद पुराण सिमृत के मत सोनो निमख ना ही बसावै। पर तन पर दारा सिंह रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा हरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अज हूं समझ कश बिगड़ो नाहन पज ले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागेओ दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे। जब ही निरतन देखियो नरकओ संग छाड़ सब भागे।

मनुआ पौन बिंद सुख वासी नाम वसै सुख पाई जय बा नेत्र सोतर सच राते जल बूजी तुझै बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई पिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई।

होंगे मिठाई। अकथै का क्या कथिए पाई, चलो सुधार जाई। गुरदाता मेले ता मत होवै, निगुरे मत ना काई। ज्यों चलाए त्यों चालै पाई, होर क्या को करे चितराई। एक परम भुला एक भगती राते, तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए तिहा फल पाया, तू हुक्म चलावन हारा। सेवा करी जे किश होवै अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सतगुर मिलिया कृपा कीनी, एक अमृत नाम आधारा। गगनंतर वासिया गुण परगासिया, गुण में ज्ञान ध्यान। नाम मन पावै कह कहावै, तत्तो तत्त वखान। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बोरान। पूरा बैरागी सहज सुपागी, सच नानक मन मानं। सोरठ महला पहला, ते तुकी आसा मनसा बंदनी पाई। कर्म धर्म बंदकारी, पाप पुन जग जाया पाई। बिन सह नाम विसारी, ए माया जग मोहनी पाई। कर्म सबे बेकारी, सुन पंडित कर्माकारी। जित कर्म सुखी उपजै पाई, सो आत्म तत् बिचारी। रहाओ शास्त्र वेद बकै खड़ो पाई, कर्म करो संसारी। पाखंड मैल न चुकई पाई, अंतर मैल विकारी। इन बिद डूबी माकरी पाई, ऊंडी सिरकै भारी। दुरमत कणी में गुती पाई, दूजै पाए खुवाई। बिन सतगुर नाम ना पाईए पाई, बिन नाम परम ना जाई। सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आवन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजै पाई, मन निर्मल साज समाई। गुर सेवे सो बूझै पाई, गुर बिन मग ना पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावै पाई। कूड बोल बिख खाई, पंडित दही विलोइए पाई। विचो निकलै तथ, जल मथिए जल देखिए पाई। एहो जग एहावथ, गुरबिन परम विगुचिए पाई। कटकट देव अलख, एहो जग तागो सूत को पाई। दै दिस बांधो माए, बिन गुर गांठना छूटई पाई। थाके कर्म कमाए, एहो जग परम भुलाया पाई। कहना किछु ना जाए, गुर मिलिया पौ मन वसै पाई। पै मरना सच लेख, मजन दान चंगियाईया पाई। दरगह नाम सेख, गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई। मन वसिया चूखा पेख, एहो तन हाठ सराफ।

मेरे प्रभ सालहन से पले प्यारे शब्द रते रंग होए तिसकी संगत जे मिले प्यारे रस लै तत्व लोए पथ प्रवाना साच का प्यारे नाम सच्चा निशान आया लिख लै जावना प्यारे हुक्मी हुक्म पछाण गुरबिन हुक्म ना बूझिया प्यारे साचे साचा तान हुक्मे अंदर निम्या प्यारे हुक्मे उधर मजार हुक्मे अंदर जम्या प्यारे ऊंदो सिर कै पार गुरमुख दर गए जा।

बिख माया चित मोहया पाई चतराई पत खोए चित में ठाकर सच वसै पाई जे गुर ज्ञान समोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर स्यों बैरागी है पाई दर कर साचया पूल पाता लिया कास तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया पाई जूका मनो गुमान जल मल काया मांजिए पाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बुढ़े तेहे गुर बिन अलख ना लखिए पाई जग बूढ़े पत खोए मेरे ठाकर हाथ वड्याईया पाई जय पावे तें दे बैयर बोले मिठली पाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी पाई अदक रही हर नाए सब को आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो भी दे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईंधन अदक सकेलिए पाई पाव करन चक पाए खिन पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुभाए सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी एको अंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लै हर जियो हरनाक समार पजाया गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो मनमुख परम भुलाया हर जी एह तेरी वड्याई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरनाई रहाओ भगतां नूं जम जोहे ना साकै काल ना नेड़े जाई केवल राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई अरिद सिद सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुभाई मन मुखां नूं प्रतीत ना आवई अंतर लोभ सुवाओ गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो हर नाम ना लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मनमुख फीका या लाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी भगती हूं तू जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख विधाता हों मैं मार मन सामने समाणी गुर कै शब्द पछाता अचिंत कम करै प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवार नहारा ओना की रीस करे सो विगुचै जिन

जप यह भगवंता नाम दानो दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ। जा कै कार सब किश है पाई नौनिद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवै पाई ऊंचा गमया पार। जी जंत प्रतपालदा पाई नित नित करदा सार सतगुर पूरा पेटिया पाई शब्द मिलावनहार। सच्चे चरण सिरेविए पाई परंपा हो वै नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई हर कै नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवे प्रगास गुर बचनी सुखी उपजे पाई सफल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई होई है सब की तूर कट कट ब्रह्म पसारिया पाई पेखे सुने हजूर। जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिए चूर करण करावन समर्थो पाई सर्व कला भरपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल लय पाई हृदय नाम निवास। गुरमुख कमल प्रगासिय पाई हृदय होवै प्रगास। प्रगट भया प्रताप प्रपाई मौल्या तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई अहिंस लागा पाओ। रसना राम रवै सदा पाई साचा साध सुआओ। करनी सुन सुन जीविया पाई निचर पाया था ओ। जिस पर तीत न आवे पाई सो जीअड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहेब पाई हौ तिसके बल जाओ। ओ निर्गुणी आरे पालदा पाई दे निथा वे थाओ। रिजक संबाहे सास सास पाई गूड़ा जा का नाओ। जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करवाओ। तिस बिन कड़ी ना जीविए पाई सर्व कला भरपूर। सास ग्रास ना विसरे पाई पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई सर्व रहा भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई पौ जल दुख संसार कर किरपा नजर निहालिया पाई कीतो निहंग अपार। मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार। नानक ते सरनांग दी पाई जे किल बिख काटन हार। सोरठ महला पंजवा मात गर्भ दुख सागरो प्यारे तहे अपना नाम जपाया बाहर काड बिख पसरिया प्यारे माया मोह वधाया। जिसनो कीतो कर्म आप प्यारे तिस पूरा गुरु मिलाया सो आरा दे सास सास प्यारे राम नाम लिवलाया। मन तन तेरी

सबना का मां प्यो आप है आपे सार करे। नानक नाम ते आए नो ते निज कर वास है, जुग जुग सोभा होए पौड़ी तू करण कारण समरत है करते। मैं तुझ बिन अवर ना कोई, तुझे आपे सिरज सिरजिया आपे फन गोई। सब को शब्द वरतदा जो करे सो होई, वड्याई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई। गुरमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई। सुध आराग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बुत पूज पूज हिंदू मुवे, तुर्क मुवे सिर नाई। ओए ले जारे ओए ले गाडे, तेरी गत दुहू ना पाई। मन रे संसार अंध गहेरा, चहो दिस पसरियो है जम जेवरा रहाओ। कपत पड़े पड़ कपता मुवे, कपड़ के दार जाई। जटा तार तार जोगी मुवे, तेरी गत इन्हें ना पाई। दर्ब संच संच राजे मुवे, गडले कंचन पारी। वेद पड़े पड़ पंडित मुवे, रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबै बिगूते, देखो निरख शरीरा। हर के नाम बिन किन गत पाई, कहे उपदेश कबीरा। जब जरिए तब होए पसम तानो, रह किरम दल खाई। काची गागर नीर परत है, या तन की एह बड़ाई। काहे पहिया फिरतो फूलिया फूलिया, जब दस मास उर्द मुख रहता। सोदन कैसे फूलिया रहाओ, ज्यो मधमाखी त्यों सठोर रस। जोर जोर तन किया, मरती बार लेहो लेहो करिए। पूत रहन क्यों दिया, देहुरी लो बरी नार संग पई। आग है सजन सोहेला, मरकट लाओ सब लो कुटम पयो। आग है हंस्या केला, कहत कबीर सुनो।

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा। काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरे ना एक काजा भज्यो नारग पत राजा रहाओ। बन खंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया। भगत नार दी हृदय न आई काश पूछ तन दीना। राग राग नी डिंब होए बैठा उन हर पै क्या लीना। परे काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी। कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी। घर

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमा से आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला।

तू जम्बपरी है हेरी, प्रभ करन कराम नहारी, क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी, जतलाई ततलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जां ते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर जानिया, मेरो गुरप्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई, जो मिले ता काल अगाई, सद जीवन भलो कहां ही, मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा, रहाओ कस कुंकुम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जनदाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका, औरन पहजाना चूका, जो जीवन मरना जाने, सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िया क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई, जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा, रहाओ अंधेरे दीपक चाहिए, एक बस्ता गोचर लही है, बस्ता गोचर पाई, कट दीप करे आसमाई। कह कबीर।

हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बिलोव सपानी काया मांजस कौन गुना जौ कट पीतर है मलना रहाओ लौकी अड़सठ तीर्थ नाई कौरा पंतऊ ना जाई कह कबीर बिचारी पवसागर तार मुरारी सोरठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद बहु परपंच कर पर धन लियावै सुधारा बयान लुटावै मन मेरे पूले कपट ना कीजै अंत नबेरा तेरे जी पहली जह रहाओ छिन छिन तन छीजै जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावै कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जपै सवेरा संत हो मन पवने सुख बनया कि जोग प्राप्त गनया रहाओ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंदलिए दरवाजे बाजी आले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उबा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै यह माला अपनी लीजै हाउ मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ दोए शेर मांगो चूना पाओ की ओ संग लूना अध शेर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जिवाले खाट मांगो चौपाई सरहाना अवर तोलाई ऊपर कौ मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा मैं नाही कीता लबो एक नाव तेरा मैं फबो कह कबीर मन मानिया तो हर जानिया राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब देखा तब गावा तौ जन तीरज पावा नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ जह चिल मिलकार दिसंता तै अनहद शब्द बजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार बीजर तही नेरै नाही दूर निजात मैं रया भरपूर जय अनहत सूर उजियारा तह दीपक जलै शंशारा गुर प्रसादी जानिया जन नामा सहे समानिया कर चौथा सोरठ पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान शिवाई हो तो पै दुगनी मजूरी दहाओ मोको बेडी देहो बताई हो रिबाई बेडी देन न जाई देख बेडी रे उस

हम बाती, जाओ तुम तीर्थ तौ हम जाती, साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरी अवर संग तोरी, जह जह जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकरे और ना देवा, तुमरे भजन कटै जम फासा, भगत हेत गावै रवदासा, जल की पीत पवन का थंबा, रगत बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसै बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा, बंके बाल पाग सिर डेरी, एहो तन होए गो।

हर हर अगमय अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख परम पाव भागी। अपनी सेवा आप कराई गुरमते अंतर जागी। हर कै नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलक बुलागी। क्या हम किरम नानक कीरे तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मित कह ना सके प्रभ हम क्यों कर मिले पागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतकुरबानी। हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल। सब किलविख पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी। तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपयो से तृप्तानी। हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी। जिनके वडे भाग वड उच्चे तिन हर जपयो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दा दसानी। तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाल है गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे अपन पाली। गुरसिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानाओ। हर हर कथा निराली रहाओ। हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवो बेग बेगाली। सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साज जना पगराली। तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पय हर स्वामी हम चातरक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह ना सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है। त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत अगाह हम लह ना सके अंत माती। तू पर परे अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती। हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू लै राती। हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावै पाती। नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटै हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपयो तरै तराकी। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगते काकी रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जमकी बाकी। हर के संत जपयो मन हर हर
लग संगत साध जना की, दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चरियो चंद चंदा की। तुम वड पुरख वड अगम्या गोचर, तुम आपे आप्यापा की, जन नानक कहो प्रभ कृपा की, जय कर दस दाद साकी। तनासरी महला चौथा, कर पंजवा दोपद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उर धार विचार, मुरार रमो रम, मन मोहन नाम जपीने, अदृष्टा गोचर परंपर स्वामी, गुरपुरै प्रगट कर दीने। राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट, हर संग हरी सतसंग पहे, हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नाम शे खट बोलै मुख आगर, मेरा हर प्रभ इवना पतीने। जन नानक हर हृदय सत्यावो, इव हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी महला चौथा, गुण कहो हर लहो कर सेवा, सतगुर एव हर हर नाम ते आई। हर दर गै पावै, फिर जन्म ना आवै, हर हर हर ज्योत समाई। जप मन नाम हरी, होहे सर्व सुखी, हर जस ऊच सबना ते ऊपर, हर हर हर सेव छडाई रहाओ। हर कृपा निध कीनी, गुर भगत हर दीनी, तब हर स्यों प्रीत बने आई। बहु चिंत विसारी, हर नाम ओर तारी, नानक हर पय है सखाई। तनासरी महला चौथा, हर पढ़ हर लेख, हर जप हर गाओ, हर भोजन पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए, हर होए संतुष्ट, एव पण हर नाम मोरारी। मन जपिए हर जगदीश, मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होवे दिन राती, हर कीर्त कर बनवारी रहाओ। हर हर करी दृष्ट, तब भयो मन उद्यम, हर हर नाम जपियो गत ही पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी। तनासरी महला चौथा, चौरासी सिद्ध बोत तीस कोट, मुन जानो सब चाहे हर जियो तेरो नाओ। गुर प्रसाद को विरला पावै, जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ। जप मन रामै नाम, हर जस उत्तम काम, जो गावै सुनै तेरा जस स्वामी, हम तिनकै सद बलिहारै जाओ रहाओ। शरणांगत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देहो सोई हाँ पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजै, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी महला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवै, सब गावै हर हरि उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावै। जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी, बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ, हर दर तिन की उत्तम बात है संतो, हर कथा जिन जनो जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी, अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जां कै वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े, ता सर्व सुख पाव है मेरे मना। जप मानो सतनाम सदा सतनाम, हालत पलत मुखी उज्जल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ। जय हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी, वडपागी हर जपना। जन नानक कौ गुर एह मत दीनी, जप हर पवजल तरना। तनासरी महला चौथा।

सह सब तुझी महेश माहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे साह ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जां गुरमुख नाम सुमारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वासकीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहै दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रव्या सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करै सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे ज्यो पावै त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवां बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन सो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मान एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सदही संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी माया कौ लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उण छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवां कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए साध संग

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की कै ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानको निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजनियार भूमन ताकि तृष्ण ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मैं किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रप बिन हर कहां अगाई। रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटे ना भूखा। उद्यम कर सुवान की न्याई चारे कुंटा कोखा। कामवंत कामी बहु नारी पर गृह जोहन चूकै दिन प्रत करै करै पछतापै सोग लो मैं सूकै। हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना। सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना। तनासरी महला पंजवा लवै न लागन कहो है कशुवै जाको फिर एहो तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बन आवै। जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चितना बसा। रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन न साको उस ताकि कीमत कहन न जाई। काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए चिंता जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरै कमानो मंता। दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग रव्या जो माता बाल गोपाला। तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया। महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दे

प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सब ता कहो, बिख मना जाई लैन रहाओ। जाप ताप परम जाप ताप परमन बसदा कर, उर्द ताप लै गैन, एह बिदन है पतियानो ठाकर, जो जोत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल कहार जास, तिन पायो जिस कर पैन, साध संग रंग प्रपेटे, नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा, बंधन ते छुटकावै, प्रभु मिलावै, हर हर नाम सुनावै, अस्त्र करे निचल एहो मनुआ, बहुण ना कतहू तावै। है कोई ऐसो हमरा मीत, सगल समग्री जियो हियो देओ, अर्पो अपनो चीत रहाओ। पर तन पर की निंदा, इन स्यो प्रीत न लागे, संत संग संत संपाखन, हर कीर्तन मन जागे। गुण निदान दयाल पुरख प्रभ, सर्व सुख दय अल्ला, मांगे दान नाम तेरो नानक, जो माता बाल गोपाला। तनाश्री

वेद सिमरत कथा शास्त्र भगत करै विचार मुक्त पाई साध संगत बिनस जाए अंधार चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक तान मान दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। तनासरी महला पंजवा फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आन सगल बेद क्या मनाया वै हर हर नाम ते आया ताते मोहतारी ओट गोपाल शरण परे ओ पूर्ण परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल रहाओ स्वर्ग मृत पयाल भू मंडल सगल ब्यापे माए जी उदारण सब कुल तारण हर हर नाम ते आए नानक नाम निरंजन गाइये पाइये सर्व निधाना कर कृपा जे दे स्वामी बिरले काहू जाना। तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ जाहे से करे पराल कामना आवे से जंजाल संग न चले तिन सो हीत जो बैराई से ही मीत ऐसे परम भोले संसारा जन पदार्थ खोए गवारा रहाओ साच धर्म नहीं पावे डीठा झूठ तो हो स्योर च्यो मीठा दात प्यारी विसरिया दा तारा जाने नाही मरण विचारा वस्त पर आई।

सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस ताक जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरणी पावन नाम ते आवन सह समावन संग रहाओ जन के चरण वसै मेरे ही अरे संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध नानक कह सुख एही। तनाश्री महला पंजवा जतन करै मान खुडहै कावै ओह अंतर जामी जानै पाप करे कर मुकर पावै पेख करै निर्बानै जानत दूर तुमै प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेखै आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटै नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दी होय अपने जाके मस्त करमा नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मैं तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की मानै जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन कै पालै सेई पूरा सहा नाम ब्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा नेत्र पुनीत पए दर्श पेखे माथे परोरवाल रस रस गुण गाव।

महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन ने उपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला।

मंत्र राम नाम हितकारे। सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे। जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवां छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहूं जात। सतगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पई हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवां पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी। सागत किया वरदा जाय बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवां सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होवै। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवा जिसको बिसरै प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगेओ। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस छीज गया सब तंते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवा जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवै जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमर उदन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मद अंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेसर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी।

नाम गोबिंद का सदा लीजै, मिटै कमाणे पाप चराणे, साध संगत मिल मुआ जीजै रहाओ। राजोबन बिसरंत हर माया, महा दुख एहो महांत कह, आस प्यास रमण हर कीर्तन, एहो पदार्थ भागवंत लहै। सरण समराथो अकाथ्या गोचरा, पत ते उदारण नाम तेरा, अंतर जामी नानक के स्वामी, सरबत पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी

कोई ऐसो रे पेट संत मेरी लाह सगल चिंत ठाकर स्यों मेरा रंग लावे पड़े रे सगल बेद नह चूके मन भेद एक खेना धीरे मेरे करके पंचा।

मन कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन सनाना सगलिया शर्म कीने मनु अन है पतीने विवेकहीन देही तोए कोई पाई है रे पुरख विधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कही ना लेखै जिस भेटिए सफल मूर्त करै सदा कीर्त गुर प्रसाद को नेत्रों पेखै मन अठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल जो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखैदाई प्रभ की कथा सुनाई तिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरभय गोबिंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा रहाओ दूजा तनासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दसहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन ने साच तीर्थ मजना साचना लागे मैल क्या मल तोई है गुणे हर परोए किसको रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आ पारस परम त्यानी साच साचे पावे आनंद अंदर हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नावनो गावे गावन हार शब्द सुहावनो सालाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे बेणी ता संगम सत सते आराधे अकंकार साचा नित दे चढ़े सुवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कह सब कोए केवड़े आखी है हम मूर्ख नीचा जान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा कूच कर आवे बिखला दे शब्द सच्चे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी परपुर रहा सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई तनासरी महला पहला जी।

हमरा मन तानो राम को नामा, राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देहे ग्रहे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन प्रमे तउ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बेदन खेद राम नाम लेही, गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से पाई, बारह जो जन शत्र चल था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अदकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जने अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया ने लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, एत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देओ बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, बार्क कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डिठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचन ती नाचना, पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा रहाओ।

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुन रे मैं जी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारना पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दो कृष्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कुल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी, विश्व का दीपक स्वामी, तांचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ तांचे बादवा। कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी। तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पारदी, कर्म कर कपाल मफीट सरी। अमृत शशि तेन लक्ष्मी, कल्प तारो शिखर सुनागर नदी चे नाथं। कर्म कर खार मफीट सरी, दादी ले लंका गाड़, ओ पाड़ी ले रावण बाण। साल बिसाल आन तोखी ले हरी, कर्म कर कशौटी मफीट सरी। पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन, ताचे मोहे जापी आले राम चे राम। बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन, धूप दीप कृत साजे आरती, वारने जाओ कमलापति। मंगल

हर हर नाम सदा सुखदाता, हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मिलो, गुरु नानक नाम सुख होई राम। जय श्री महला चौथा, हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा लैलाहा। हर हर हर

गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग ओ महाराम, आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा, हर हर

मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अग्नासन जगदीश्वर पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़ साच पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई सलोक परचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सा सा स्मरंत नानक महायग्न ना विनाशन मुख तले पैर उपरे वसंदो कहोथड़ै थाए नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरे जिस दै नाए पौड़ी रगत बिंद कर निमया अग्न उदर मझार उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार हर सिमरत तू ना जलै मन तन उर धार बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण खंडन काल कलेसै प्रभ सिमर नानक ने दूरन हब रंग माण जिस संग तै स्यो लाई है ने हो सो सहो बिंदना विसरो नानक जिन सुंदर रचिया दे हो पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग गृह मंदिर रथ अस दिए रचपले संजोग सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमर तो तन मन हरिया लै जाए विजोग साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग सलोक कुटम जतन करण माया अनेक युद्ध में हर भगत पावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै तुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत साई से तीरतया पौड़ी जिस बिसरत तन पसम होए कहते सब प्रेत खिंगरे मैं बिसना देवही जिन स्यो सोई हेत कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत जैसा बीजै सो लुणै कर में हो खेत अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक कोटदान इस नानंग अनक सो दिन पवित्र तै उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ती मुपाहे मन वसंदड़ो सच सहो नानक हबो डुखड़े उलाहे पौड़ी कोट अगा सब नास होहे सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ जन मरण पै कटी है।

ਹੈ। ਨਾਦ ਕੁਰੰਕੈ ਬੇਦਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠਤਾਵੈ, ਪਵਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸੁਮ ਬਾਸਕਾ, ਮਿਲਿਆ ਬੰਧਾਵੈ, ਤਿਉਂ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਦਰਸ ਅਗਾਵੈ। ਸਲੋਕ ਚਿਤਵੰਤ ਚਰਨ ਕਮਲੰ ਸਾਹ ਸਾਸਿਆ ਰਾਧਨੈ, ਨੈ ਬਿਸਰੰਤ ਨਾਮ ਅਚਤ, ਨਾਨਕਿਆਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਸੀਤਲਾ ਮਨ ਮਜਾਹੇ ਪਲਕ ਨਾ ਥੀਵੈ ਬਾਹਰਾ, ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ ਨਿਭਾਹੇ ਸਦਾ ਪੇਖੰਦੋ ਸਚ ਧਨੀ ਪੌੜੀ। ਆਸਾਵੰਤੀ ਆਸ ਗੁਸਾਈ ਪੂਰੀ ਐ, ਮਿਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਕਬਹੂੰ ਝੂਰੀ ਐ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਲੈ ਜਾਏ ਵਿਸੂਰੀ ਐ। ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਚਰਨਾ ਧੂਰੀ ਐ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਹਜੂਰੀ ਐ। ਸਲੋਕ ਰਸਨਾ ਉਚਰੰਤ ਨਾਮੰ ਸ਼ਰਵਣੰ ਸੁਨੰਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤੈ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣੈ। ਹਬ ਕੂੜਾਵੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈ ਬਾਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਸਚ ਸਿਉਂ ਪੌੜੀ। ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾ ਜੇ ਸੁਨਤੇ ਹਰ ਕਥਾ, ਪੂਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਵਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਮੱਥਾ। ਹਰ ਜਸ ਲਿਖੈ ਬੇਅੰਤ ਸੋਹੈ ਸੇ ਹੱਥਾ, ਚਰਨ ਪੁਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਲੈ ਪ੍ਰਪਥਾ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਉਧਾਰ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਲੱਥਾ, ਸਲੋਕ ਭਾਵੀ ਉਦੋਤ ਕਰਨ ਹਰ ਰਮਣ ਸੰਯੋਗ ਪੂਰਨ, ਗੋਪਾਲ ਦਰਸ ਭੇਟੰ ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮਹੂਰਤੈ। ਕੀਮ ਨਾ ਸੱਕਾ ਪਾਏ ਸੁਖ ਮਿੱਤੀ ਹੂੰ ਬਾਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਵੇਲੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਤ ਮਿਲੰਦੜੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ ਪੌੜੀ। ਸਾ ਵੇਲਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਪਾਈ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਲਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਤ ਮਿਲੈ ਗੁਸਾਈ। ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਧਿਆਇ ਕਹਿ ਮਨ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਮ ਲਾਗਾ ਪਾਈ। ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬਲ ਜਾਈ। ਸਲੋਕ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਗੋਬਿੰਦੈ ਸਰਬ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣੈ, ਸਰਨ ਸੂਰ ਭਗਵਾਨੈ ਜਪੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ। ਛੱਡਿਓ ਹਬ ਆਪ ਲੱਗੜੋ ਚਰਨਾ ਪਾਸ, ਨੱਠੜੋ ਦੁਖ ਤਾਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਪੇ ਖੰਦਿਆ ਪੌੜੀ। ਮੇਲ ਲਹਿ ਦਿਆਲ ਟਹਿ ਪੈ ਦੁਆਰਿਆ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਰਮਤ ਬਵਹਾਰਿਆ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਹਰ ਪਤ ਤੇ ਉਧਾਰਿਆ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਬਿਨਾ ਮੋਏ ਸਾਰਿਆ। ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਦਿਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ। ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਉਦਰਨ ਦਿਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੈ, ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨ ਮਿਟਈ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਪੌੜੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਓਟ ਉਧਰੇ ਸਗਲ ਜਨ, ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਮਨ। ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ ਮੂਲ ਸੰਚਿਆ ਨਾਮ ਧਨ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਪਾਈਐ ਵੱਡੈ ਪੁੰਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਸ ਨਿਤ ਸੁਨ। ਸਲੋਕ ਦਇਆ ਕਰਨੰ ਦੁਖ ਹਰਨੰ ਉਚਰਣੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨੈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨੈ ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਪਾਹੇ ਬਲੰਦੜੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਰਖੰਦੜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਪੌੜੀ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ, ਕੋਟ ਅੱਗਾ ਗਏ ਨਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ ਜੰਤੂਰੀ ਨਾਇਆ, ਮੰਤਨ ਭਏ ਸੰਤੋਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਗ ਕੁਲ ਸਵਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ, ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ। ਪਾਉ ਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸਗਾਹੋ ਗੁਰ ਬੋਇਥੈ ਤਾਰਿਆਮ, ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਪੌੜੀ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਸ ਸੰਗ ਹਰ ਜਪੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਜਪ ਭਏ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਛਪੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਨੀਚੋ ਉੱਚ ਥਪੇ, ਕਾਠ ਸਿਲਕ ਦੁਖ ਮਾਇਆ ਕਰ ਲੀਨੇ ਆਪ ਦਸੇ।
गुण गाए बेअंत रसना हर जसे, सलोक दृष्टंते को सुनियंते को वर्तनते को नरहर है, नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करै, हिक सेवी हिक समला हर इक सपै अरदास, नाम वखर तन संचया नानक सच्ची रास पौड़ी, प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक एहो, सब किछ आपे आप दूजा कहां के हो, आप करो प्रभ दान आपे आप ले हो, आवन जाना हुक्म सब निश्चल तुद थे हो, नानक मंगे दान कर कृपा नाम दे हो, जय श्री बाणी भगता की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नाथ कछु ना जानो मन माया कै हाथ बिकानो, रहाओ तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल जो के कामी, इन पंचन मेरो मन जो बिगारियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो, जत देखो तत दुख की रासी, अजो ना पते आए निगम पहे साखी, गौतम नार उमा पत स्वामी, शीस तरन सहस पग गामी, इन दूतन खल बद कर मारियो, बड़ो निलाज अजू नहीं हारियो, कह रवदास कहां कैसे कीजै, बिन रघुनाथ शरण कां की लीजै, एको अंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्त वजूनी सह भंग गुरप्रसाद, राग टोडी महला चौथा कर पहला, हर बिन रह न सकै मन मेरा, मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले, बहुर न पवजल फेरा रहाओ, मेरा हीर है लोच लगी प्रभ केरी, हर नैनो हर प्रभ हेरा, सतगुर दयाल हर नाम दिरलाया, हर पादर हर प्रभ केरा, हर रंगी हर नाम प्रभ पाया, हर गोविंद हर प्रभ केरा, हर हृदय मंतन मीठा लागा, मुख मस्तक भाग चंगेरा, लोभ विकार जिन्ना मन लागा, हर विसरिया पुरख चंगेरा, पे मन मुख मूड अज्ञानी कहियै, तिन मस्तक भाग मंदेरा, विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा, जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुर मस्तक भाग लखेरा, टोडी महला पंजवा कर पहला, दुपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद, संतन अवर न काहू जानी, बेप्रवाह सदा रंग हर कै, जाको पाक स्वामी रहाओ, ऊच समाना ठाकर तेरो, अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलो भगतन को, राज रहे रंग ज्ञानी, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, निरपा होए रहे लवेक नानक हर मनमानी, टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुवारी, ताको तोखा कहां ब्यापै जाको ओढ़ तुहारी, रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी, नव खंडन को राज कमावै अंत चले गोहारी, गुण निदान गुण तिन्ही गाए, जा कौ कृपा तारी सो सुखिया तन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी, टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे को ओंकार सतगुर प्रसाद, तायो रे मंदै दिस तायो, माया मगन स्वाद लो मोहयो, तिन प्रभ आप भुलायो रहाओ, हर कथा हर जस साध संगत स्यो, एक मोहत नाहिं मन लायो, बिगस्यो पेख रंग कसुंभ को, पर गृह जोहन जायो, चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो, तावत कौ तावै बहु पाती, जो तेली बल्द परमायो, नाम दान इस नान ना कियो, एक निमख ना कीर्त गायो, नाना झूठ लाए मन तोखियो, नह बुझियो अपनायो, पारे उपकार ना कबहू किए,
नहीं सतगुर सेवते आयो, पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मदमायो, करो बेनती साध संगत हर भगत वच्छल सुन आयो, नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो, टोडी महला पंजवां मानुख बिन बूझे बिरथा आया, अनक सा सिंगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया रहाओ, ताए ताए किरपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया, दान पुन संतन सेवा कित ही काज ना आया, कर आपरन सवारी सेजा कामन थाट बनाया, संग न पायो अपने परते पेख बेख दुख पाया, सारो दिन समझूरी करता तो मुसले शराया, खेद पयो बेगारी न्याई कर कै काम न आया, पयो अनुग्रह जा को प्रभ को तिस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया, टोडी महला पंजवा किरपा निद बसुर हर नीत, तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ, दास तुम्हारे की पावो तूरा मस्तक ले ले लावो, महापत ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो, आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तहारो पावो, जो तू देहे तही एहो तृप्त या नकत हूं तावो, सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी सगले रण होए रही है, साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है, सदा सदा हम शोहरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा, नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा, टोडी महला पंजवां कर दूजा दुपदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद, मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरा संग न चल, मिले कृपा गुणगाम रहाओ, राज माला नेक भोग रस सगल तरवर की शाम, ताए ताए बहुबिद कौतावे सगल निरार्थ काम, बिन गोविंद अवर जे चाहो दिसे सगल बात है खाम, कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम, टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे, जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ, नाम जात नाम मेरी पत है नाम मेरा परिवार है, नाम सिखाई सदा मेरा संग हर नाम मुको निस्तार है, बिखे बिलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है, इष्ट मीत नाम नानको हर नाम मेरा पंडार है, टोडी महला पंजवा नीके गुण गाओ मिट ही रोग, मुखी उजल मन निर्मल होई है तेरो रह इहा उहा लोग रहाओ, चरण पखार करो गुर सेवा मने चरामो भोग, छोड़ आपत बाद हंकारा मान सोई जो होग, संत टहल सोई है लागा जिस मस्तक लिखिया लिखोग, कहो नानक एक बिन दूजा अवर ना करन है जोग, टोडी महला पंजवा सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोभा चिंता लाहे हमारी रहाओ, अवर ना सूजे दूजी ठाहर हार परयो तो द्वारी, लेखा छोड़ा लेखा छूटे हम निर्गुण लेहो उबारी, सदबख सिंधु सदा मेहरवाना सब ना दे आधारी, नानक दास संत पाछे परयो राख लेहो ए बारी, टोडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल निद गायण, सांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायण रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायण, जन्म मरण दोहूं ते छूटे पव जल जगत तरायण,
खोजत खोज तत बिचार्यो दास गोविंद परायण अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। टोडी

काल जाल जम जोहे न साकै सच का पंथा थाट्यो खात खर्चत किश निखुटत नाही राम रतन तन खाट्यो पसमा पूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखै लोक सुबाया टोडी महला पंजवां किरपनो तन मन किलवख भरे साध संग भजन कर स्वामी ठाकन कौ इक हरे रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस आराधे खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहै ओए ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजवां हर के चरण कमल मन त्याओ काढ़ कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगड़ न को लागे जा की प्रभ आगे अरदास संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवां हर हर नाम सदा सद जाप तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ जिसके से फिर तिन ही संभाले बिन से सोग संताप हाथ दे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ नानक शरण परे दुख पंजन जा कावड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी शरण परे दरबारे कोट पराध खंडन के दाते तुझबिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाई है माया रच बंध हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवां कर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद हां हां लपट्यो रे मूड़े कछु ना थोरी तेरो नहीं सोजानी मोरी रहाओ आपन राम ना चीनो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो सो संचयो जित भूख तसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो काम क्रोध

कह हरी हरी आन अवर सियाण न करी रहाओ। वड़े भाग गुर अपना पायो गुरमुखो हर नाम दृढ़ायो। हर हर जाप ताप व्रत नेमा हर हर त्याय कुशल सब खेमा। आचार व्यवहार जात हर गुनिया महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकर पाया।